नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस नजर को।

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
3: नमस्कार श्रोताओ, आज तेरणा की प्रेरणा इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू. इसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं मिस्टर विनय भारद्वाज जो प्रिंसिपल इंजीनियर है NXP सेमीकंडक्टर्स नेदरलैंड. इनके साथ है मन्नू कालरा जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है और फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी में काम किया करते हैं. 1980T बैच के है, CSE बैच के हैं. उनके साथ है मिस्टर वी रविकांत जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड अलायंस पार्टनर है जायोरा इनोवेशंस बेंगलुरु के. ये भी 1988 के CSE बैच के हैं. इनके साथ है मिस्टर संदीप गुप्ता जो डायरेक्टर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजर है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के. वो दिल्ली से है और USA ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं 1988 CSE बैच के. इनके साथ है मिस्टर प्रवीण महाजन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मैनेजर की ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो 1988 CSE बैच के हैं. मिस्टर संदीप लाहोटी जी है जो चीफ सेल्स ऑफिसर है जुलू डिफेंस के बैच 1988 CSE के. और इनके साथ है मिस्टर अमन सांगरा जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है

0: रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज नोएडा, नेहरू पैलेस, बैच 1988 ETC के। तो ये सभी है और ये बेसिकली ये दिल्ली जम्मू से बिलोंग करते हैं। तो आज तेरणा की प्रेरणा इस प्रोग्राम में हम इनका सबका इंटरव्यू सुनेंगे। नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। मित्रांनो, आपण नेहमी तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि त्यानंतर आता आयुष्यामध्ये अशा एका वळणावर असतात, आयुष्याच्या अशा एका टप्प्यावर असतात की ज्या ठिकाणी त्यांचं जे हे यश असतं, त्यांचा जो हा प्रवास असतो तो आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतो। आणि त्याच पद्धतीनं आज आपण या ठिकाणी 1988 म्हणजे खूप वर्ष झालेली आहेत, जवळपास 38 वर्ष झालेली आहेत। तर 38 वर्षापूर्वीची ही जी बॅच आहे ती आज आपल्या या ठिकाणी आलेली आहे आणि रेडिओ तेरणाला त्यांनी व्हिजिट केलेली आहे। जवळपास आता माझ्यासमोर 7-8-10 स्टुडंट 1988 बॅचचे बसलेले आहेत। खूप चांगल्या चांगल्या क्षेत्रामध्ये ते कार्यरत आहेत आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी आपलं स्वतःचं आता नाव कमावलेलंच आहे, पण त्यासोबत तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं सुद्धा नाव जे आहे ते खूप मोठं केलेलं आहे। अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा आपण जीवन प्रवास जो आहे तो आपण जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम रविकांत यांचा आपण पूर्ण एक तासाचा पॉडकास्ट ऐकलेलाच होता, पण रविकांत हे सर्वांचं इंट्रोडक्शन करून देतील आणि त्याच्यानंतर मग आपण एकेकांची जर्नी समजून घेऊयात। रविकांत जी, आप सबका इंट्रोडक्शन पहिले करवा की दीजिएगा।
1: तो मेरे बगल में बैठे मिस्टर मन्नू काला जी, हम साथ में पढ़े थे 1988 बैच के। आज ये अपना एक साइबर सिक्योरिटी का कंपनी चला रहे दिल्ली में। आगे अमन सांगरा है जो हमारे साथ जम्मू से आया है एंड सेटल्ड इन दिल्ली, बट उनका भी CCTV कैमरा और अदर प्रोकोर बिजनेसेस है नोएडा में भी। मिस्टर पंकज गोयल आई थिंक गल्फ में काम किया, ओमान में, लास्ट ईयर नोएडा आ गया और हेल्थ केयर कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर है बेसिकली। मिस्टर संदीप लाहोटी जी जो डिफेंस लाइन में था और अभी खुद का अपना एक स्टार्टअप हो रहा है। परवीन महाजन LED का बिजनेस, उनका एक खुद का कंपनी है कोर प्रोडक्ट्स करके एंड डेफिनेटली इज वेल एस्टेब्लिश एंड अपना बिजनेस एक्सपेंड कर ग्रो हो रहे। मिस्टर विनय भारद्वाज जी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस लेके आ रहे, कैडेंस एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था, अभी आई थिंक ही इज वन ऑफ द सेमी कंडक्टर कंपनीज। मिस्टर संदीप गुप्ता जी अलोबा टेक्नोलॉजीज नोएडा में डायरेक्टर है और आई एम फॉर्चुनेट मैं भी उनके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, कुछ कुछ साथ में काम करता हूँ, सो वी आर टुगेदर। मैं वैसे पिछले बार मिला था, अभी भी मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन था रविकांत, और मैं भी फ्रीलांस कंसल्टिंग करता हूँ 3-4 कंपनियों से। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे, सारे दिल्ली से आए हम सब और 33 ईयर्स के बाद हम बहुत एक्साइटेड है कैंपस को देख के। और हमारे साथ मैं तो पहले भी आ चुका हूँ तो मैं थोड़ा चेंजेस ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से सब अपने अपने राय बताएंगे कि उनको क्या लग रहा है, मतलब जो जब वे थे यहाँ 4 साल में उनका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद लाइफ जर्नी क्या हुआ है एंड डेफिनेटली आज वो इधर कैंपस आने के बाद उनको क्या महसूस हो रहा है। तो मैं पहले संदीप को दे
0: संदीप सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि इंट्रोडक्शन करवा के दिया है, आप जैसे कि दिल्ली नोएडा यानी सब नॉर्थ से आए हैं सब आप यहां पे, 1988 के बाद शायद आपने 1988 में एडमिशन लिया था पहली बार, आप लगभग उसको 38 ईयर बीत रहे, 38 साल का समय काफ़ी होता है, बहुत काफ़ी होता है, एक दो जनरेशन इसके अंदर निकल के जा सकती है अगर हम 10 ईयर का भी अगर एक देखा जाए तो। तो सबसे पहले आप 38 साल बाद आप सभी के सभी लोग पहली बार आ रहे हो या इसके पहले आए थे?
2: मैं पहली बार आ रहा हूँ 34 ईयर्स के बाद, 1992 में पास आउट किए थे, सो 1992 के बाद आज मैं पहली बार आया हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम शोलापुर से यहाँ उस्मानाबाद धाराशिव आने में हमें सिर्फ कैब में 1 hour 15 minutes लगे, राइट, जो कि उस टाइम में 2 घंटे से ज़्यादा लगता था। और हम याद कर रहे हैं अभी भी वो ST buses, बिल्कुल ST bus होती थी, ST bus भी एक सोर्स ऑफ ST bus ही एक सोर्स था। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन जो आपने बात किया, हम लोग रहते थे बैंक कॉलोनी में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, फर्स्ट ईयर हम हॉस्टल में ही रहते थे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम बैंक कॉलोनी रहते थे। सो कॉलेज से बैंक कॉलोनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, देयर इज कॉलेज बस जिस जो एक पर्टिकुलर टाइम था। सो जैसे आपको पता है कॉलेज लाइफ में कि हम उस वेट तक एंड टाइम तक वेट नहीं करते थे, सो तब हम यहाँ इस रोडवेज पे ट्रक्स चलते थे काफ़ी ज़्यादा।

0: उस समय बहुत ज़्यादा ट्रक थे क्योंकि हाईवे था और ये फ्लाईओवर वगैरह नहीं था, कॉलेज के आगे से ट्रक निकलते थे और हम नॉर्थ के ट्रक देखते थे और उसे हाथ देते थे और वो ट्रक रुक जाते थे, हम उन ट्रक पे बैठ के कॉलेज से यहाँ कॉलेज से बैंक कॉलोनी तक जाते थे और सुबह भी कई बार अगर कॉलेज की बस मिस हो जाए, लेट हो जाए, तो हम उन ट्रक के थ्रू बैठ के वहाँ से यहाँ आते थे। तो वो सब एक्सपीरियंस हमारा अपने टाइम का काफ़ी हमें, जब हम यहाँ आए और ये सब डेवलपमेंट देखा तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। रास्ते में हमने विंड मिल्स देखी आपका पूरा जो है, सो एक अच्छा डेवलपमेंट हमें लगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। कॉलेज के अंदर भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, उस समय जब हम थे तो कॉलेज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कॉलेज हमें याद है एक मेन बिल्डिंग से लैब तक जाने के लिए देयर इज़ अ डीप खाई होती थी, खाई के बीच से हम जाते थे। अब वो पूरा रोड बन गया है, पूरा सब कुछ, इतना अच्छा डेवलपमेंट है, तो देख के बहुत अच्छा लगा हमें इन सब चीज़ों को।
1: मैं आपसे फिर से एक बार एक राउंड लेके आऊँगा, मैं पहले तो विनय भारद्वाज जी। तो विनय भारद्वाज जी, जैसे कि अभी संदीप सर ने कहा कि 1988 का आपका एडमिशन था, जैसे आपने फर्स्ट जर्नी आया तो आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो चेंज दिखाई दिया, लेकिन मैं वो जानकारी जानना चाहूँगा कि जब आप पहली बार यहाँ पे लैंड किए थे एडमिशन लेने के लिए 1988 में, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी और आज जब आप इतने सालों से आ रहे हो तो आपकी आज की फीलिंग कैसी है, बोलिए।
2: मेरी फीलिंग एक्चुअली ज़्यादा कुछ चेंज हुई नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया था एडमिशन के लिए तो उस समय मौसम बहुत ही शानदार था, मई का महीना और बारिश और चारों तरफ ग्रीनरी, तो ऐसी फीलिंग आई थी कि बस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है। और मैं बिल्कुल अकेला आया था एडमिशन कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को भी साथ में नहीं लाया था, तो मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया था और उसके बाद दो महीने बाद फिर मौसम चेंज हो गया। लेकिन कितने भी मौसम ख़राब भी आए, बहुत हीट भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे यूनिक चीज़ जो पहले भी थी और आज भी है, हम लोगों की आपस में जो 88 बैच की बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग इतनी अमेजिंग है कि मतलब लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए ये सब लोग साथ खड़े, ये एक मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। और मैं लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस मैंने किए, लेकिन सब लोग ये मेरे साथ खड़े हुए थे और मैं दोबारा से मतलब एक रीबर्थ कह सकता हूँ कि दोबारा से जन्म हुआ और फिर से मैं अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में आया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ दिस डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अलाइव एंड किकिंग हूँ।
1: तो प्रवीण महाजन जी, जैसे कि अभी विनय सर ने भी कहा कि 1988 में जब यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त का माहौल था, लेकिन 38 ईयर्स के बाद जब आप यहाँ पे पहली बार लैंड करते हो, देखते हो, तो दिल के अंदर क्या हो रहा था ये पहले बोलिए। आप ट्रांस में उस चले गए वो 38 ईयर पहले, या क्या क्या आपकी फीलिंग क्या थी पहली यहाँ पे जब आ गए आज के दिन में?
3: एक्चुअली उस टाइम के और आज के टाइम में सबसे बड़ी वी मतलब द डेवलपमेंट वी सी, वी फील दिस इज़ आवर सेकंड होम। हम इतने साल यहाँ पे रहे, हमारी लोगों से एक दूसरे से क्लोजनेस और विच वी स्टिल कॉन्टिन्यू लाइक विनय टोल्ड। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो हमने यहाँ पे आन की वो थी हमारी दोस्ती, जो हमने जो आज भी कंटिन्यू करती है। और बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। वर्स्ट पार्ट मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे संदीप और मैं आए, हम भी अकेले आए, देर इज़ अ संदूक था हमारे पास एंड नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट अस, कोई यहाँ पे कुछ नहीं था, बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया एंड वी हैव टू कम से कम 1.5 किलोमीटर हमें वो बॉक्स उठा के लेके जाना पड़ा एंड उसका वज़न कम से कम 30 किलो होगा, लोहे का बॉक्स था एंड अदर बैग्स। और उसके देर वॉज ओनली टू रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। तो जो हम दिल्ली से आए थे तो शायद हमें आदत नहीं थी, तो जब वो कैरोसिन के स्टोव पे बन के आया ना ऑमलेट फर्स्ट टाइम, तो इट वाज स्मेलिंग लाइक कि ये कैरोसिन में बन के आया है। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, सो आई नेवर, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ,
4: यादें बहुत जरूरी है सर।
3: बट आज तो मैं कहूँगा कि जो कल्चर है या सब कुछ है, मतलब आप तो आप पूरा हार्मोनाइज हो गया है। मतलब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आज मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी डेवलपमेंट हो गई। लोग पहले मराठी मतलब हिंदी समझना नहीं चाहते थे, सो वेरी गुड, नाउ दे आर वेरी ओपन। और एक और लगा कि मतलब यहाँ की आज जैसे मैंने क्लास ली तो जितनी मतलब गर्ल्स को मुझे देख के खुशी हुई कि भाई इतने लड़कियां एफर्ट डाल रही हैं इंजीनियरिंग में, कि हमारे टाइम तो वेरी फ्यू, और उनको वाकई बहुत मुश्किल था इंजीनियरिंग करना।

0: अभी प्रवीण ने कहा महाजन ने कि लड़कियां नहीं थी, बहुत कम थी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं हमने कितने डिमोटिवेटिंग एनवायरमेंट में किया पढ़े
1: ठीक है। लेकिन उस वक्त तो लेडीज हॉस्टल होगा ही
0: नहीं, वहां पर भी जाना अलाउड नहीं था।
1: तो मैं सर फिर से एक बार आपके पास आ जाऊंगा। आपका नाम सर?
2: पंकज गोयल।
1: अच्छा पंकज जी, जैसे कि प्रवीण सर ने कहा, संदीप सर ने भी कहा कि जैसे कि वो उनकी यादें बोल रहे, तो जैसे हर एक कोई अकेला आया था यहाँ पे, तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप हो गई, फिर बाद में आपके एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कैसे हो गया, ये बोलिए।
2: सर जब हम यहाँ आए थे, फॉर्चुनेटली जब मैं आया था तो संदीप और मैं दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, और कहीं कॉमन सोर्स के थ्रू हमारे फादर्स कनेक्ट हो गए थे, तो एटलीस्ट हम लोग उस समय कनेक्ट हुए थे। एक बार एडमिशन के लिए मैं आया था, संदीप तो नहीं आए थे, तो उस समय उनसे जान पहचान हो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ आए तो हॉस्टल में रुके, तो पहले मैं जैसे महाजन बता रहे थे हॉस्टल हमारा 10-12 किलोमीटर था, तो मैं दूर उस हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ कुछ लोग रूममेट्स थे आसपास और हमारे कुलीग्स थे, तो उनसे जान पहचान हुई, फ्रेंडशिप हुई। ये यहाँ पर थे तो इनसे जान पहचान थी, तो यहाँ पर बाकी सबसे जान पहचान बढ़ती चली गई। तो धीरे धीरे कॉलेज अटेंड किया, हॉस्टल में रहे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ और वहीं से जान पहचान और दोस्ती शुरू हो गई।
3: इसमें एक चीज में ऐड करना, जैसे इन्होंने कहा संदीप ने, कोई आगे पीछे कोई नहीं था, हम एक दूसरे की देखभाल करते थे। देर वॉज नो, ना कोई आ सकता था, हमें फोन करने के लिए 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। देर इज नो फोन, अगर घर से फोन करवाना है तो वो हम लेटर पे फिक्स करते थे टाइम कि इतने बजे इस जगह पे हम आपका फोन अटेंड करेंगे।
2: हाँ वही था, यहाँ पर क्या था कि कहीं भी सुख दुख है, सब कुछ है, आपस में ही बांटना है, तो वो जो बॉन्डिंग है वो जो हुई थी, तो वो अभी तक है, क्योंकि घर से एक बार आ गए तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ एक कनेक्शन होता था कभी हफ्ते 10 दिन में एक फ़ोन कर लिया, और फ़ोन भी सब घर पे उस समय होते नहीं थे, मोबाइल्स तो थे ही नहीं, लैंडलाइन भी नहीं होती थी, तो कभी कभी फ़ोन होता था, और तो इसलिए आपस में ही एक दूसरे के सुख दुख में सब एक साथ थे, और वही साथ चलता रहा।
1: सर जम्मू से है, मुझे जम्मू से इसलिए कहा कि आपका नाम सर?
4: अमन सर।
1: तो अमन जी ये मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे विनय सर ने कहा था कि यहाँ की बहुत सारी ग्रीनरी है, ये है, अभी थोड़ा सा माहौल आपको अलग लग रहा होगा, आप तो जम्मू से आ गए जहाँ पे तो स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ से आप आए थे, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आप रेगिस्तान में यहाँ पे आए?
4: ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि मेरी पेरेंट्स उस समय मेरे साथ ही आए थे, तो ग्रीनरी थी वहाँ पे, अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए कि इतनी ग्रीनरी है, कि तुम अच्छी जगह पहुँच गए हो, तो बहुत खुश हुए थे। फिर हम एक आते ही मेरे पेरेंट्स साथ में एक होटल में रहे थे हम लोग, तो उनके जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि जब हम खाना खाते थे किसी होटल में जाके ना, तो भाई घर की याद आती, घर की रोटी की याद आती थी कि हम खा रहे हैं, और आँखों में आंसू आते थे। तो ठीक है, आस्ते आस्ते दोस्ती बढ़ती गई, होता गया, मेरी पहली था नगोरी निवास में, मेरा स्टे था जो हॉस्टल मिला था मेरे नगोरी निवास में, उसके बाद फर्स्ट ईयर नगोरी निवास था, उसके बाद मेरा संभाजी नगर जो रामनगर के नाम से है, वहाँ पर हम लोग रहना शुरू कर दिया था। तो अच्छा लगा कि साथ में दोस्ती बढ़ती गई, होती गई, बाकी रही फ़ोन कॉल की बात, फ़ोन कॉल तो होते नहीं है, अगर लेटर होता था, अगर हमें कुछ पैसा घर से मंगवाना होता था, हम करते थे टेलीग्राम, तो हम लिखते थे एंड मनी सेंड मनी, तो क्योंकि उसमें हैंड मनी सेंड मनी,
1: अच्छा,
4: तो चार्जेस पैसे भेजो, क्योंकि टेलीग्राम के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे
1: जी।
4: तो घर में पहुंचता था वो मैसेज आ गया, तो फिर वो डीडी हमें भेजते थे, उससे पेमेंट हमें मिल जाती थी, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे उस समय।
1: तो मैं अभी कालरा सर के पास आना चाहूँगा, आप तो थोड़ा सा अलग सा वाइब आ रहा है आपको देख के, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बीच में आप एक ऐसा कोई तो एक पर्सन थे जो कि वो चिंगारी डालना और फिर सेकते रहना, ऐसा कुछ है आपके अंदर?
5: पता नहीं यार, अब याद नहीं है ऐसी बातें।
1: तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है बोलिए
5: यार? एक्सपीरियंस इन लोगों ने शेयर कर दिया, इन्होंने बता दिया कि
1: आपका बताइए ना आप इनके,
5: अरे कोई अलग नहीं है हमारा एक्सपीरियंस, कोई इनसे अलग नहीं है, ये है कि शायद सबसे ज्यादा दूर कॉलेज से मैं ही रहता था।
1: अच्छा।
5: जो शेरखाने पेट्रोल पंप होता था पहले आगे, बस उसके पास मैं वहां रहता था, और कई बार ऐसा हुआ है कि चाहे पानी पड़ा हो सड़क पे, पानी जाम हो, जैसे भी हो, पैदल चल के पहले बस स्टैंड तक और फिर बस स्टैंड से कॉलेज ट्रक पकड़ गए या कैसे भी, वही

0: आया तो अब जर्नी जैसी थी वैसी थी। ये उस टाइम तो दिन गिनते थे कि यार अच्छा फर्स्ट ईयर निकल गया, अब सेकंड ईयर निकल गया, दो साल बचे हैं, थर्ड ईयर निकल गया, एक साल बचा है, फाइनल ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, चार महीने यार हंसी खुशी बिता लो। और फाइनल ईयर में तो आते आते हालत ये हो गई थी कि एग्जाम से पहले पिक्चर हॉल ज्यादा जाते थे और बुक्स कम देखते थे। और उसके बाद जब फाइनल ईयर क्लियर किया तो ये था कि यार कुछ बनेंगे तो वापस आएंगे, अब वो वापस आने का मौका मिला ही नहीं कभी दोबारा।
1: अच्छा, लेकिन बन तो गए हो ना आप, लाइफ की जर्नी तो यहाँ तक आई।
0: लाइफ की जर्नी में आदमी शादी होती है तो शौहर बन जाता है, उसके बाद बच्चे होते हैं तो बाप बन जाता है, और फिर शादी के बाद तो फिर वो बैचलर्स को मैं यही कहता हूँ यार, हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग, यू मस्ट गेट मैरिड।
1: तो मैं आऊंगा वापस आपसे।
2: अमन ने कहा दो बातें, अमन के मैंने नोट की ऑब्जर्वेशन, अमन ने कहा कि जब मम्मी डैडी आए छोड़ने, ग्रीनरी देख के खुश हुए, उसमें तो हमारे भैया फादर खुश हुए, मदर रो रही थी, एक जना खुश था एक जना रो रहा था, उनका बेटा दूर जा रहा था वो खुश थे कि बेटा चलो दूर जा रहा है, दो एक दोनों इसी वजह से, वो उससे दुखी थे कि बेटा जा रहा है, वो भी इस वजह से खुश थे कि बेटा जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू इन्होंने कहा कि एंड मनी सेंड मनी, हमारे घर से आता था स्पेंडिंग टू मच मनी सो नो मनी।
3: अच्छा,
2: बस उसमें मैंने फर्दर ऐड कर दिया, बाकी आप आए।
4: कुछ लोग घर में फोन करते थे कि दैट इज स्मोकिंग फंड भी होता था।
1: अच्छा,
4: स्मोकिंग फंड।
1: अच्छा,
4: उसके पैसे भेजो हमें।
1: अच्छा,
4: वो भी था उस समय उस स्टेट में स्मोकिंग
1: स्मोकिंग फंड, वो क्या होता था स्मोकिंग फंड,
2: सुट्टा फंड।
1: अच्छा, वो ग्राउंड को पता था ऐसा कुछ?
2: वो
4: पता नहीं था, बस नो स्मोकिंग फंड, नॉट स्मोकिंग, नो स्मोकिंग फंड भी है कॉलेज में, वो देना पड़ता है।
1: तर आता आपल्या समोर ह्याच बॅचचे आपल्याच धाराशिवचे ॲडव्होकेट मनीष वाघमारे जे आहेत। तर मनीष जी, तुम्ही आता ॲडव्होकेट आहेत म्हणजे वकिली करता, इंजिनिअरिंग करून वकिली करणं, आणि ह्या सर्व लोकांसोबत तुमचा रेपो कसा, कारण आपले महाराष्ट्रातले पुन्हा त्यानंतर नॉर्थमधले उत्तर प्रदेश किंवा इतर स्टेटमधले आले म्हणले की मराठवाड्यातलं आपलं असं असतं की थोडंसं न्यूनगंड असतो की इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स येतो मनामध्ये की अरे ह्यांच्यासोबत कसं ॲडजस्ट व्हायचं, तर तुमचा अनुभव कसा होता ते सांगा एक लोकल स्टुडंट म्हणून, का तुम्ही यांच्यावर राज्य करायचं हे पण सांगा।
5: राज्य करायचा हा विषय नाही आहे, त्यांना जेवढं कॉपरेट, हा उनको जितना कॉपरेट करने का था भाई, जितना कर सकते थे उतना उनको कॉपरेट कर दिया, क्योंकि वो इतने दूर से यहाँ पे आए, अपने मम्मी डैडी को पूरा फैमिली को छोड़ के आए, तो अपना भी एक लोकल बोल के कोई अपना भी फर्ज है कि भाई इनको जितना कॉपरेट करे उतना कर सके।
1: इंजिनियरिंग नंतर वकिली तुमचा असा काय विषय
5: नाही? इंजिनियरिंग नंतर थोडंसं सॅच्युरेशन पिरियड असल्यामुळे आणि मिसेस पण ॲडव्होकेट असल्यामुळे मी ह्या फील्डमध्ये उळालो, आणि माझी सामाजिक संस्था आहे माता अहिल्या देवी होळकर संस्था, मला पहिल्यापासून आवड आहे की सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करायचं, तर आता आमचं पुढचं टार्गेट आहे की आपले जे कॉलेजचे स्टुडंट आहेत ॲल्युमिनी असोसिएशन फॉर्म करायचा आमचा विचार आहे, जेणेकरून जे नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांना ह्या जुन्या विद्यार्थ्याचं त्यांच्या अनुभवाचं ज्ञानाचा फायदा ह्या नवीन विद्यार्थ्यांना हवा।
1: तो मैं संदीप जी एक सेकंड राउंड में ऐसा पूछना चाहूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि मैंने आप जैसे एल्युमिनियम का बहुत सारा इंटरव्यू किया हुआ था जम्मू से है, अच्छा तो मेरे दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये इंटरव्यू लेना यानी आपकी जर्नी तो लेना ही है, लेकिन साथ में आपने जो स्ट्रगल किया, साथ में आपने जो एक दुनिया देखी हुई है, और अभी के जो स्टूडेंट है जो ये इंटरव्यू सुनते हैं तो उनको भी पता रहना चाहिए कि स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्सपोजर की वजह से उसमें थोड़ा सा कम आ गया, और जो बॉन्डिंग भी दिखाई देती है आपकी सब फ्रेंडशिप में तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा तो आजकल के स्टूडेंट में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मोबाइल हैंड में रहने की वजह से उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है और जो लाइवनेस रहता है वो कम हो गया है। तो मैं ये दोनों तीनों सवाल एक साथ ही पूछना चाहूँगा ताकि आप उसका आंसर कर सके। तो आपकी जर्नी कैसे रही, आज आप क्या काम करते हो, वो काम में आपको कितना सक्सेस मिला हुआ है, और साथ में ऐसा अगर कुछ करना है जर्नी में आगे चलना है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये फ्रेंडशिप का ये जो बॉन्ड है जो कि जो आपके जनरेशन में है, हमारे जनरेशन में भी हमने देखा हुआ है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना उनके अंदर वो बॉन्ड नहीं है, माता पिता के लिए हो दोस्तों के साथ भी हो वो कम दिखाई देता है थोड़ा सा, तो ये जो अंदर का जो एक है कहते हैं ना वो, ये अंदर की एक रिश्तेदारी, आज भी आप जितने 38 से ईयर के बाद भी आप जितने एक दूसरे के साथ खुल के मिल रहे हो, तो उसके हिसाब से एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि आप लाइफ में अभी क्या कर रहे हो, आपके आपकी प्रोफाइल क्या है, ये भी समझना चाहेंगे, और मैंने जो सवाल पूछे उसके बारे में भी।
3: सो अभी मैं जो हूँ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. सो आई एम अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजर इन दैट अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. और उन्हीं का एक और डिवीजन है आशा अकेडमी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए है, इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं. सो इस जर्नी तक आने के लिए 34 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है टोटल. तो स्टार्ट से नहीं होता, स्टार्ट में हमारे टाइम पे कोई कैंपस नहीं होता था, देयर इज नो कैंपस प्लेसमेंट. तो पास आउट होने के बाद खुद ही जॉब देखना होता था. उस समय कैंपस प्लेसमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, राइट. एंड कंप्यूटर साइंस उस समय एक नई ब्रांच थी. सो पास आउट होने के बाद, जैसे मैं जम्मू से हूँ तो हम जम्मू वापस गए. शुरुआत मैंने एक छोटे से पॉलिटेक्निक कॉलेज से की. सो अबाउट 3-4 मंथ्स उस कॉलेज में मैंने टीचिंग किया. उसके बाद मेरे को दिल्ली में, स्पेसिफिकली फरीदाबाद में, एक अपॉर्चुनिटी मिली विच इज़ रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री. सो वहाँ पे मैं आया, राइट. सो हमने जो जर्नी स्टार्ट किया, अगर मेरे को अभी भी याद है, हमें मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 1750 रुपीज़ थी. तो और उसके बाद वो जो जम्मू में थी, और उसके बाद 2250 था जो मेरे को फरीदाबाद में जो फर्स्ट सैलरी थी, 2250 रुपीज़ थी जिससे हमने स्टार्ट किया. आज ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छा, सब चीज़ें अच्छी हैं. तो मेरा सबके लिए यही है कि स्टार्ट आपको करना है, कहीं से भी स्टार्ट करिए. डू नॉट लुक कि आज क्या मिल रहा है. आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली आगे जाएंगे. आप किसी भी कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को अगर आप अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे, अगर आप एफर्ट्स डाल के काम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर एरिया में. जो हमारी बाउंडिंग और आपने सोशल मीडिया का बात किया, डेफिनेटली आई एग्री कि सोशल मीडिया के आने से वो जो पर्सनल बॉन्डिंग टच है वो थोड़ा सा कम हो गया है. सो उसके लिए यही है कि जैसे अभी भी हम जैसे है, अभी भी मंथ में नहीं, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हम डेली में ही गेट टुगेदर करते हैं जहां हम सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ में डेली हम सब नहीं मिल सकते. सो ठीक है, फ़ोन पे बात हो गया या व्हाट्सएप पे बात हो गया, लेकिन हम मैनेज करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कहीं कुछ रख लें जहां पे हम सब दोबारा मिल जाएं. तो आपको कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा जहाँ फिजिकल मिलना पड़ेगा, राइट. अब आज की जनरेशन में जो है कि वो फिजिकल टच कम होता जा रहा है, राइट. तो फिजिकल टच को किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले फैमिली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे हमारे टाइम में जो अब भी क्या है कि कम से कम डिनर हम लोग फैमिली साथ ही करते हैं, राइट. तो उस कंसेप्ट से अगर स्टार्ट करें कि फैमिली में सब लोग डिनर साथ में करें, और उस टाइम पे नो मोबाइल कंसेप्ट रखें कि डिनर के टाइम पे मोबाइल साइड पे रख के डिनर कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपने फैमिली में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि जब आप इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं और फ़ोन डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन आपस में होगी कि आज का दिन कैसा रहा, क्या है. तो उसी से ही चीज़ें निकल के आती हैं. तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर हम लेके चलें, और आज की जनरेशन के लिए ये कहना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं. काफ़ी लोगों का ये कहना है कि AI के आने से क्या होगा. सो हम सबका यही मानना है कि एक AI के आने से जॉब की पोजीशनिंग चेंज हो सकती है, स्किल सेट चेंज हो सकता है, लेकिन जॉब खत्म नहीं होंगी. इंजीनियर्स की जॉब आज भी है, कल भी रहेगी, फ्यूचर में भी रहेगी. इंजीनियर्स की जॉब नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि AI को जो ड्राइव करेगा वो इंजीनियर्स ही करेंगे, राइट. रोबोटिक्स को जो ड्राइव करेगा वो इंजीनियर्स ही करेंगे. तो जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है, स्किल सेट चेंज हो सकता है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. सो यही मेरा है.
1: तो जैसे कि आपके लाइफ की जर्नी, जैसे कहा कि जॉब खत्म नहीं होंगे, सिर्फ हमको ओपन माइंडेड रहना है, उसके तरफ उस तरीके से देखना है. तो जैसे दूसरी एक बात ऐसी है कि आपके लाइफ के गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या है कि जो सक्सेस पाने के लिए जरूरी है, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या कहना चाहोगे?
3: कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा. जो भी आप काम करें, कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर. अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप कम टेक्निकल स्किल्स के साथ भी अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू उस टेक्निकल स्किल्स को ओवरकम कर सकते हैं. तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़रूरी है आज की डेट में. एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो भी कभी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके लेवल पे एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि अगले को लगे कि हाँ, जो ये बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं. तो ये दो स्किल्स मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है.
1: बहुत बढ़िया. देखिए, ये जो वर्ड्स रहते हैं ये हमारे लिए जरूर रहते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि कैसा है कि एक लाइफ की जर्नी पूरी कंप्लीट करने के बाद जो सामने आता है ना, तो ये जरूरी रहता है. इसलिए तो हम इंटरव्यू जब करते हैं, ज्यादा पॉडकास्ट करते हैं, तो इसीलिए करते हैं.
2: सी, अभी जब लेक्चर सेशन हो रहा था तो दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग विद दी स्टूडेंट्स कि इंजीनियर मींस आप बन के क्यों निकल रहे हो. इट इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ 9-to-5 जॉब, राइट. वो तो कोई भी 12वीं पास या BSc पास भी करता है. नेशन फर्स्ट, वर्क फॉर द नेशन, यू नो, वर्क फॉर द सोसाइटी. think of, you know, ki how can you address the pain of the common areas, right? You will be successful. Because engineer will be coming out with new innovations once he identifies the pain area and the, you know, the what the common man wants. So then probably you will be a successful engineer.
1: लेकिन आप क्या करते हो आपके पर्सनल लाइफ में, आप आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब क्या है, ये भी बोलिए।
2: मैं शुरू से डिफेंस सेक्टर में रहा हूँ, डिफेंस के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हो गए, साइबर प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रोन प्रोडक्ट्स हो गए, वो डिफेंस में मेरा काम है।
1: तो जैसे आप डिफेंस में हो, जैसे कि हमने भी वीपी सुब्रमण्यन सर का इंटरव्यू किया, तो एयरफोर्स में आई थिंक ग्रुप कैप्टन है वो, जैसे कि मराठवाड़ा है, तबका उस्मानाबाद है, आपका धाराशिव है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट है जो काफ़ी विलेज से आते हैं, क्योंकि आप तो तब नॉर्थ से या पूरे साउथ से भी बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र आते थे, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से यहाँ उस्मानाबाद धाराशिव डिस्ट्रिक्ट होगा, लातूर डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ नियर बाई के ज़्यादा स्टूडेंट है। तो जैसे आप डिफेंस में काम करते हो सर, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, उनको क्या किस तरीके से अपनी स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए।
2: आई डोंट थिंक एनी एक्स्ट्रा यू नो स्किल्स आर रिक्वायर्ड, द ओनली थिंग इज इट इज योर एक्यूमेंट, राइट? यू आर एन इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर है, ही नोज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट? सो द ओनली थिंग इज यू नीड टू वर्क अराउंड योर स्ट्रेंथ्स, फॉरगेट अबाउट योर वीकनेसेस, ट्राई टू ओवरकम दोज वीकनेसेस, आई वुड से। और यू नो यू गेट योर ओन आइडियाज़ यार, जब आप इंजीनियर, व्हाट आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स आर पर्सन हैविंग न्यू आइडियाज़, सो देर इज़ नो एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड टू गिव यू आइडियाज़। इंजीनियर अपने आइडियाज़ खुद बनाता है, दैट इज़ व्हाई ही इज़ एन इंजीनियर, दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।
1: तर मित्रांनो बघा, आता संदीप सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की आपल्याला स्वतःचं कौशल्य ओळखणं खूप गरजेचं आहे, तो विनय जी आपसे मैं बात करना चाहूंगा की जैसे संदीप सरने जे कहा, ये संदीप सरने दोनों ने भी कहा, तो आपका क्या कहना है कि आपका प्रोफाइल क्या है, और आज के स्टूडेंट को जो 38 ईयर का बहुत सारा वक्त इसमें गया है, तो काफ़ी चेंजेस आ गए, सिलेबस में चेंजेस आ गए होंगे, पढ़ाई के फील्ड में चेंजेस आ गए होंगे, जैसे कि लेक्चरर आप खुद प्रैक्टिकली किया करते थे लाइब्रेरी में और लेबोरेटरी में जाके भी बैठा करते थे, लेकिन आजकल कैसा हाथ में स्मार्टफोन आने की वजह से फिजिकली क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट कम दिखाई देते हैं, तो आप इस पूरे जर्नी को, आपके जर्नी के और आपके प्रोफाइल को भी इसको कैसा मैच करना चाहेंगे?
6: मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पहले जो चीज़ें थी, आज की जो सुविधाएं हैं वो अलग हैं, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा, लेकिन अपना एक गोल जीवन में करना क्या चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने जिस फील्ड में सोचा था, ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे जाके उसी फील्ड में काम करूँगा, तो जहाँ सीखने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ले लेना चाहिए और अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी खामियाँ भी हैं, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आपका डेटा लीक हो सकता है, आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो एक तरह से आपका को पायलट है, मेन पायलट तो आप ही हैं, जैसे आप उसको ड्राइव करेंगे वैसे वो आपको रिजल्ट दे देगा, तो इसलिए पता होना चाहिए कि उससे रिजल्ट निकलवाना कैसे है। तो ये हम तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर 3-4 साल के बाद चेंज हो रही है, तो हम अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। और अभी किसी स्टूडेंट ने क्लास इंटरेक्शन में भी मेरे से पूछा था कि क्या आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जो हमें नहीं करनी चाहिए आगे जाके, तो मैंने बोला कि मिस्टेक्स करना बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक्स करना चाहिए, और सेम मिस्टेक अगर बार बार हो रही है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, हर मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, तो मेरा ये मानना है।
1: तो आप क्या करते हो?
6: मैं अभी मिस्टेक्स करता हूँ और इंडस्ट्री बदलती रहती है। मैं अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हूँ, एक कंपनी है NXP सेमीकंडक्टर्स नोएडा में, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। और अभी इससे पहले मैं टेलीकॉम में भी मैंने काम किया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में भी काम किया, और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ को मैंने सीखा।
1: तो और एक दूसरी बात ऐसे है कि जैसे आप नॉर्थ से आ गए, दिल्ली से आ गए, कोई जम्मू से आ गए यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको होमसिकनेस बहुत है, तो यहाँ से बाहर जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि जितना ग्लोबली चेंज हो रहा है तो हमको चाहिए कि हम हमारे इस चौकट से बाहर निकल सके?
6: जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अकेले ही आया था अपना एडमिशन कराने के लिए, तो मेरे अंदर भी होमसिकनेस तो थी, लेकिन साथ जो मिला इतने अच्छे लोगों का साथ मिला और एनकरेजमेंट मिला. मुझे पता था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल एक्टिविटीज़ में कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, उसमें मुझे इंटरेस्ट आता था, मेरा पैशन था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ वो भी करूँ. और फिर प्रोफेसर्स का कुछ सपोर्ट मिला, उनको पता चला कि ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि एक एनुअल फंक्शन 4.5 घंटे का होता था, उसमें मुझे बोला कि यू विल बी द एंकर ऑफ द शो. वो मेरा काम मेन लोगों को हंसाने का था. तो वो जब मैंने वो किया तो स्टेज प्रेजेंस की वजह से सब लोग मुझे जानने लगे कॉलेज में, और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ती चली गई लोगों से. तो आज भी मेरे से 2 साल जूनियर, मेरे से 2 साल सीनियर, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं. रवि कांत जी.
7: हाँ जी, विनय हमारे साथ थे.
8: हाँ.
7: हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट भी थे.
8: हाँ.
7: जनरल सेक्रेटरी.
8: अच्छा.
7: और क्रिकेट कॉमेंट्री बढ़िया करते हैं.
8: अच्छा.
7: आप उसका क्रिकेट कॉमेडी सुनना ही चाहिए आज पॉडकास्ट में.
8: अच्छा.
7: आई थिंक उसका व्यूज भी बहुत आ जाएंगे. देन और एंकर का प्रोग्राम्स के लिए, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, एंड आई थिंक ऑलराउंडर गाना गाते हैं.
8: अच्छा.
7: लवली सॉन्ग्स. अच्छा. आज भी आप सोशल मीडिया सोशल मीडिया में भी देखिए, स्मूल है और दूसरा एप्स में है ना.
8: हाँ जी.
7: इनके काफी बढ़िया ड्यूएट सॉन्ग्स भी आती है.
8: अच्छा अच्छा.
7: सो दिस इज वन थिंग आई नो मोर अबाउट विनय.
8: अच्छा सर,
9: मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या यहाँ लोकल में रहते हैं, क्या ओपन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. देखिए, आज की दुनिया या दुनिया हमेशा ही ग्लोबल रही है. तो या तो आप ग्लोबल, आप अपने पास यहीं रहेंगे तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बाहर का देश में दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है. तो मैं तो ये कहूँगा ना लोकल होना चाहिए ना ग्लोबल होना चाहिए. बेसिकली आपको ग्लोकल होना चाहिए, जो आप ग्लोबली भी देखें क्या हो रहा है, लोकली भी देखें क्या हो रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस लें. और फिर आप अपने को क्यों लिमिट करते हैं कि मेरा यही जगह है. ईश्वर ने बनाया है, सब कुछ आपका है, पूरा जहाँ आपका है. आप जाइए अलग अलग जगह देखिए, अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करिए, अलग अलग एक्सपीरियंस लीजिए. बट हाँ, अपनी रूट्स मत भूलिए. जब भी आप कुछ सीखें कुछ हो तो अपने वापस आकर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं कोशिश कीजिए और समाज को कुछ वापस दिया जाए.
1: साथ में ही आप ये बोल दीजिए कि आप क्या करते हो. और जैसे अब्रॉड में कौन, आप थे क्या अब्रॉड में? हाँ, तो जो अब्रॉड में ज़्यादा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स पड़ते हैं जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ ईयर, तो पांचवे ईयर से सीधा हम कहीं तो बाहर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ हम बर्फबारी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स आते रहते. तो अब्रॉड जाना आपके ज़माने में कितना ईजी था या हार्ड था, आज के ज़माने में कितना ईजी या हार्ड है, ये भी बोल दीजिएगा.
9: सर देखिए, मेरा ऑब्वियसली काफ़ी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मुझे अब्रॉड जाना है. जब मैं करके निकला था तो मैंने इंडिया में ही जॉब किया था 92 से 2000 तक थे. तो जो भी कुछ सीखा उसके बाद वो काम आया. जब हम 2000 में मैंने जॉब चेंज किया तो मैंने HCL से विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में ज्वाइन किया था, और वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला कि आपको डोमेस्टिक बिजनेस से ग्लोबल बिजनेस में जाना है. तब मेरा जर्नी शुरू हुई ग्लोबलाइजेशन की. तो मेरा मोस्टली पहले इनिशियली वेस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड, वहाँ मेरा एक्सपोजर था. जो मेरा एक्सपोजर रहा वो US, यूरोप वगैरह रहा. बट मेरा कभी ये नहीं रहा कि मुझे बाहर ही रहना है. तो मैं गया, US भी रहा था, मैं UK में भी रहा कुछ टाइम, बट हमेशा मैं वापस आ गया इंडिया. और बीच में उसके बाद फिर मैं मिडिल ईस्ट भी गया, वहाँ भी कुछ साल रहा, बट हमेशा मेरे को यह रहा कि नहीं मुझे वापस आना है. तो जहाँ भी एक्सपोजर मिला मैंने वहाँ काम किया. अपने को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मुझे इस जगह पर रहना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, ये काम करना है. जस्ट जो मिल रहा है, जो विंड के साथ चल रहा है, जस्ट फ्लो विद द विंड. एंड उसके बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा. आप अलग अलग टेक्निकली आप सीखते हो एज वेल एज पर्सनली सीखते हो. अलग अलग कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और ये समझ में आया कि हर कल्चर के लिए पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड्स हैं, और हर एक की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, या कहीं और कुछ हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है. इवन आप देखेंगे कि यहाँ हम बैठे हैं धाराशिव में, यहाँ से अगर 400 किलोमीटर दूर चले जाएं महाराष्ट्र के अंदर ही, तो कुछ चीज़ें कल्चरली चेंज हो जाती हैं, बट वो वहाँ की एनवायरनमेंट और कंडीशंस के हिसाब से होता है. तो ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ सही है या गलत है. हर जगह सब कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से अडॉप्ट की जाती हैं. तो मैं ये तो यही कहूँगा कि आज भी जब आप कुछ भी कर रहे हैं अपने को ना तो रेस्ट्रिक्ट करिए, ना कभी आप ये सोचिए कि कुछ आपको जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स ऑब्वियसली आप काम करो उसके ऊपर, बट आपको ये सोचो कि नहीं मिला तो नहीं, कुछ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होता, आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो जैसे मुझे रास्ते मिलते चले गए, आप सोचें या ना सोचें, जब आप उसके करीब पहुँचते हैं तब आप सोचने लगते हैं कि अब मैं ऐसा कर लेता हूँ या ये प्लान कर लेता हूँ, बट उसके लिए कुछ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि अगर उस रास्ते पे जाना आपको दिखाई दे रहा है लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, कोई आपको लेकर नहीं जाएगा। तो वो एफर्ट्स करते रहिए, सीखते रहिए कंसिस्टेंटली, जो आपको मिलता है आप उससे गाइडेंस लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, और मैंने तो कई बार अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो मुझसे जूनियर्स हैं या जो मुझसे छोटे हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सीखने के लिए तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, अपनों से, बड़ों से, अपनों के बराबर वालों से, और अपने नीचे वालों से भी जो आपसे छोटे हैं, तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप लर्निंग करते रहेंगे, अपना विजन क्लियर रखिए आपको क्या करना है, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि नहीं मुझे 5 साल बाद बाहर ही जाना है, तो एफर्ट करिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और आज की डेट में तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके एल्यूमिनी नेटवर्क है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और आपको ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी, बट आपको ऑब्वियसली उसके लिए नॉलेज और स्किल्स, वो सब चीज़ें चाहिए होंगे।
1: नहीं नहीं, हम प्रवीण सर से भी, और सर का नाम बोल रहा हूँ, आमन आमन सर से भी बात करेंगे, लेकिन जैसे रविकांत ने कहा था कि आप क्रिकेट कमेंट्री बहुत बढ़िया करते हो और गाने भी गाते हो, तो थोड़ा सा इसमें एक फ्लेवर डाल दीजिएगा, एक तो गाने का या फिर क्रिकेट कमेंट्री का, जो आपके दोस्त कहेंगे। वो
6: एक्चुअली वो फ्लेवर डालने के लिए ना, मतलब वो कुछ एक ऐसी लैंग्वेज भी है जो कि हर किसी को समझ में नहीं आती है, जो हरियाणवी लैंग्वेज है, तो उसका फ्लेवर दोनों का डालते हैं तभी मज़ा आता है उसमें। तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कमेंट्री, जिस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया में लाइव टेलीकास्ट नया नया आया था, तो हम लोगों को बहुत क्रेज़ हुआ था कि ये कितना ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं, तो हमें इसका सीखना चाहिए। मैं नकल करना शुरू किया उनकी। तो बेंसन एंड हेजिस कप एक हुआ था जिसमें रवि शास्त्री को टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो उनको ऑडी कार मिली थी, तब से वो अट्रैक्शन आया था। और यन चैपल वहाँ पे अभी उन्होंने माइक लिया है रिची बेनॉट से, तो मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है, कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सो थैंक्स रिची, कंडीशंस परफेक्ट, दिस मेलबर्न क्राउड इज रियली परफेक्ट, इंडिया प्ले न्यूजीलैंड द सेमीफाइनल्स ऑफ द बेंसन हेजिस कप बीइंग प्लेड हियर टुनाइट, परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट आउटफील्ड, एंड द न्यूज़ इज दैट इंडियन कैप्टन केपल डेविस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल, एंड केपल डेविस फॉर द फर्स्ट टाइम टू न्यूजीलैंड कैप्टन जॉन राइट, नाइसली प्लेड क्वाइटली इन द कवर स्टेट टू रवि शास्त्री, शास्त्री पिक्स इट अप एंड रिटर्न्स टू केपल डेविस, केपल डेविस फॉर द सेकंड टाइम एट अ ब्यूटीफुल यॉर्कर, जॉन राइट्स मिडल स्टंप इज नॉक्ड डाउन द ग्राउंड, बट अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर इंडिया, न्यूजीलैंड स्ट्रगलिंग नॉट फॉर वन, एंड फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ कमेंट्री इट्स ओवर Tony Greig. Well, thank you, Ian. What a fine performance. What a brilliant performance. Kapil Dev is a brilliant kicker. He's been falling all the way. And Krishnamachari Srikan. Three consecutive sixes of Roger Harper in the last match. And these two have been the heroes of the day. And further description of commentary, it's over to Ben Lawrie. Well, thank you, Tony Greig. Well, Pletchard and Chaman. Well, Ravi Shastri. These two have been the heroes of the day. So, yeah, Australian style of cricket. Ab India mein ek gaon hai, Haryana. में वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें थोड़ी वैरायटी कैसे आती है, कमेंट्री उनकी स्टाइल में कैसे होती है। वहाँ पे मिस्टर कमेंटेटर जो हैं उनका नाम है मिस्टर मोलर, और हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं तावरसाल सिंह जी, और गांव लाखन माजरा और गांव कलावड़ के बीच में मैच हो रहा है, तो ओवर टू मिस्टर मोलर। तो गाँव लाखन माजरा मोलर बोलने लग रहे, और मैच गाँव लाखन माजरा और गाँव कलावड़ के बीच होने लग रहा है। भाई सबसे पहले मोटे बिट्टी मास्टर ने अपनी जेब में तो खोटी चोर निकाल दिया और टॉस करने लग गया भाई, और टॉस जीत गया भाई लाखन माजरा। लाखन माजरा पहले बैटिंग करेगा, लाखन हरिजय की तरफ से आ रहे हैं भाई भरतू और कालू दर्जी का छोरा, या पैर के पलस्तर बांधे और हाथा में कपड़े धोने की मोगरी ठाए आने लग रहे हैं भाई, और भाई मैदान का मुआयना कर ले, मैदान में 6 खूटे गट रहे हैं, 3 न्यूंगे ने और 3 न्यूंगे ने, और इन खूटे के पीछे जो छोरा बैठा है ना वो स्त्रियाँ बैठा है जना गए बरताओ, और भाई नायिका चला नायिका गेंद करेगा पहले, और भाई पजामे में गेंद में रगड़ने लग रहा है खाजी कुतिया की ढाल, और नायिका चल रहा भाई आँख बीच के दांत बीच का, उसने बॉल फेंक के मारी सारा भाई गणेश जोर का शॉट मार दिया भाई, इतनी देर में विकेट के पीछे खड़े छोरे के पास गेंद आई, छोरे 2 चक्कर काट के तो 2 रन बिना किसी नुकसान के, और भाई नायिका फिर चले आँख बीच के दांत बीच का, उसने बॉल फेंक के मारी सारे भाई छक्का, अरे भाई धानी आँख लगवा ले छक्का ना से चौका से, अरे भाई क्यों झगड़ा करे है, बीच बिचाड़ा कर लेना, तेरी न मेरी ये पंजा से सात रन बिना किसी नुकसान के। और भाई ये जो शॉट था इस पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर तौर साल सिंह जी के एक्सपर्ट कमेंट्स। अरे भाई यो के क्रिकेट, क्रिकेट तो हमारे जमाने में होया करते, एक बार मैंने 5 सैकड़े मार दिए, 2 घंटे में आउट ही ना होया, तो सरकार मैंने विदेश भेजन लगी इंग्लैंड, पर तेरी ताई ने सरनाश मार दिया, कहने लगी कि डांगरा का दाना पानी कौन करेगा भाई, पशुओं का भी ख्याल रखना था तो इंडिया में ही रह गए भाई। और अब खिलाड़ियों के लासी पीने का टाइम हो गया भाई, मैदान का मुआयना कर ले, मैच फिर शुरू होने लग गया, नीलू

0: तू बने नानू और बेरण के भाई चाले और नायका चाले भाई और आंख मीच के दांत बीच के बॉल फेंक के मारी सारे फूट गया भाई। अरे भाई भरतू का खोपड़ा फूट गया भाई। अरे मैदान में तीन चार लुगाई आने लग रही है जिनमें एक भरतू की लुगाई भी सर वो जूती लेके नायका के पीछे भाजने लग रही है भाई और नायका आगे जूती पीछे भाई फेंक के मार दी जूती और नायका बैठ गया भाई मोटे पिट्टी मास्टर के भाज गई भाई। अरे भाई भाज लौड़ते हो तो जूत भाज गया भाई मैच समाप्त।
1: क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। मैंने तो ऐसा पहली बार सुना लेकिन वो जो पहले आपने मिमिक किया था वो यान चापल का और वो तो बहुत बढ़िया लगा सही। तो प्रवीण सर के पास आप जाना चाहूँगा कि प्रवीण सर आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या करते हो? जैसे मैंने सवाल संदीप सर से भी किया था वैसे आप इसके अंदर सब स्टूडेंट आने वाले स्टूडेंट को भी क्या क्या गाइडेंस करना चाहोगे और साथ में आपकी जो 38 ईयर की जर्नी वो भी हमें थोड़ा सा एक आप बोल दीजिएगा।
2: आई स्टार्टेड मतलब मैंने अपनी जर्नी 92 में मुझे ज़बरदस्ती किसी कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया गया। मैंने इसलिए कि मैं काम नहीं करना चाहता था एक साल। आई वांट टू एंजॉय, मतलब कि चार साल की बहुत तपस्या कर ली हमने उस्मानाबाद में, आई डोंट वांट टू वर्क। तो घर वालों ने ज़बरदस्ती तू जाके देख ले भाई ठीक लगे। तो स्टार्टेड जैसे संदीप ने कहा उस समय मेरी 2800 रुपये पे सैलरी लगी थी। आई स्टार्टेड विद हनीवेल, हनीवेल इज़ यू एस एंड जापान बेस्ड कंपनी। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट, फिर चेरी एक अलग कंपनी आई, फिर सैमसंग आई वर्क फॉर 6 ईयर। 2009 आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस विद माई एक्सपीरियंस इन टू LED बिजनेस। LED जितनी आज आप देख रहे हैं उस समय ये लाइटें नहीं हुआ करती थी। ये इकोसिस्टम लाए हम और पीपल वर थिंकिंग ओनली ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड जो इंडिकेशन में लगते थे। तो ये हमने इको स्ट्रीट लाइट ये सब डिज़ाइनिंग किया हमने और इंडस्ट्री को सिखाया। बट मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस सेमीकंडक्टर में था। द क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की नीचे आने लगी तो हम सेमीकंडक्टर में, बिकॉज हम उन चीज़ों पर ज़्यादा काम करते थे जिस पर टेक्निकल एस्पेक्ट हो। इस बिजनेस में वो लोग आ गए जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी। तो हम आई स्टार्टेड विद माय जॉब अर्निंग, तो मेरे पास फंड्स एक लिमिटेड थे। तो ग्रेजुअली जर्नी स्टार्ट एंड फिर हम सेमीकंडक्टर में आए। आज वी आर डूइंग टुडे वी आर ए 50 करोड़ कंपनी एंड वी हैव 40 पीपल वर्किंग विद अस। So we are more into designing and semiconductor training. But जैसे इन सब ने बोला, मैं ये कहूँगा कि important learning तो हमेशा कभी stop नहीं होती। It should not stop. But learning is not the end. Implementation should be there. हम लोग जो मैंने जर्नी में देखा, बहुत लोगों को इतना ज्ञान है, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, मतलब उनको मैं घंटों बैठा दूं तो वो किसी भी सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर सकते। तो हमारे जहाँ जो बच्चे और जो कनेक्ट नहीं हो पाते, और मैं जैसे चाइना और मेरा भी छोटा मोटा एक्सपोजर है, ज़्यादा नहीं, बट मैंने जो देखा इंडस्ट्री, चाइना इंडस्ट्री में द डिसकनेक्ट इज कि वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट, जितनी भी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देयर जैसे कंपनीज हैं उनको हर साल प्रोजेक्ट देना ही देना है। वॉट एवर द, मुझे पता नहीं उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे देती है या क्या देती है। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे करता है विद देयर प्रोफेसर्स, दे लर्न मच बेटर। हमारे यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं, जब हम निकले, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी की बात क्यों कहूँ, जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि ये कंपोनेंट का काम मतलब दिखता कैसे है। काम तो पता था, आई नो द सिंबल्स डिजाइनिंग, कि इस प्रोडक्ट को मैं कैपेसिटर बोलूं, इसको ट्रांजिस्टर बोलूं, इसको मतलब कैपेसिटर तो थोड़ा बहुत आइडिया, मतलब कैपेसिटर 5 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पॉलीमर कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर, सो मेनी कैपेसिटर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई। मोस्ट ऑफ द मतलब जो इस फील्ड में नहीं है, आज भी हमारे में से बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को, तो कनेक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर द इंडियन इंजीनियर।

0: कॉलेजेस कि उनको कनेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स लेके आए इंडस्ट्री से और कनेक्ट करें बस. थैंक यू सो मच.
1: प्रवीण सर, जैसे आपने कहा कि आप लगभग एक 40 लोगों की टीम जो है उसको लीड करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो आज के स्टूडेंट है उनके तरफ से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उनके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से आप उनको चूज करोगे आपके कंपनी में काम करने के लिए?
0: आज की डेट में जो मैं IIT और NIT की बात है, आज की डेट में हमारी यही एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये कितने टाइम में सीख पाएगा. आज की डेट में हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि एक साल के अंदर ये हमें कुछ रिटर्न दे पाएगा. देर इज़ नो RI ऑन फ्रॉम द न्यू इंजीनियर. हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है. दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री.
2: कितने कम वक्त में वो सीख सकता
0: है? व्हाट इज़ द सिंसियरिटी लेवल ही हैज़ टू लर्न द थिंग्स, लर्न एंड इम्प्लीमेंट. मैंने उसको बता दिया बट उसने उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो लर्निंग क्या रही?
1: तो अमन सर, आप क्या करते हो ये बोलिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन किए थे बस उसी के मैं इसे आंसर चाहूँगा आपका भी.
3: वाई इंजीनियर्स? एक्चुअली हमारे स्टेट में, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एक ही मोटिव था कि हम लोग इंजीनियर बन के, एक टैग था कि इंजीनियर बनने से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हम ये था हमारा बोटी. तो इसलिए हम लोग सारे भीड़ चाल होती ना, एक बंदा गया उसके पीछे दूसरे बंदे चले गए. हमारा भी ऐसी था सिस्टम. मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए यहाँ पे इंजीनियर करने के लिए, हम भी उसके पीछे आ गए क्योंकि इंजीनियर बने का टैग लगेगा और हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. इंजीनियर करके आ गए, गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं. एक बार इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू ने पूछा कि क्यों करना चाहते हो, तो मैंने उसका आंसर दिया. कह रहा है वक्त से पहले किस्मत से किसी को कुछ नहीं मिला. मैं उसे एप्लीकेबल हो गया, अप्लाई ठीक है ओके. फिर 1994 को मेरे कुछ मल्टीप्लाई रिलेशन में एक थे, वो एक जापानीज कंपनी से मेरा इंटरेक्शन हो गया जी. तो 94 में उन्हें जापान की फुजित्सु कंपनी थी, उसके थ्रू मैं जापान चला गया. दैट 2 इयर्स 10 मंथ्स मैं वहाँ रहा जॉब की, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया. तो इंडिया वापस आने का मेरी पहली जॉब थी पटनी कंप्यूटर्स एज ए कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर. तो मेरी सैलरी थी 3300 क्योंकि मेरे साथ एक टैग लगा होता, मेरे एक जापान का टैग लगा होता फुजित्सु कंपनी का, उसके रिगार्डिंग मेरा इतनी जॉब मिल गई. चलता रहा उसके मैंने 5 और 6 ईयर काम किया. फिर मैंने एस सी एल इंफोर्स सिस्टम ज्वाइन की एज ए इंजीनियर. फिर मैंने वो छोड़ दी. उसके बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मेरे बंद कर दिया. अभी मैं एक कंपनी के साथ, नोएडा की कंपनी रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज, उसमें एक डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं थ्रू जेम पोर्टल के थ्रू टेंडरिंग करके, वीडिंग करके हम उससे पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी उनके सप्लाई ऑर्डर होते हैं हम उसको करते हैं.
1: जैसे आप नोएडा कंपनी में अभी आप ज्वाइनिंग किए हो, तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस वक्त फिजिकली क्लासेस अटेंड किया करते थे, लेबोरेटरी में जाया करते थे, लाइब्रेरी में जाया करते थे, पढ़ाई का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है अब. तो उसके हिसाब से आजकल के स्टूडेंट में, आज की जो जनरेशन है उनके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, क्योंकि उतना पेशेंट भी नहीं है, उनको बहुत जल्दी सक्सेस भी चाहिए, बहुत जल्दी बाहर भी जाना है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्ट्रगल कितना गहरा रहता है और कितना हमको उसके अंदर जाना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता.
3: स्ट्रगल तो बहुत किया था क्योंकि उस समय बुक्स पे डिपेंडेंट थे, लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स लेते थे. आज की डेट में बिल्कुल स्नैरियो चेंज हो गया है, सबके पास मोबाइल्स आ गया है, मोबाइल्स पे इंट्रैक्शन करते हैं वो. लाइब्रेरी में कोई भी स्टूडेंट अभी जाता नहीं आज की डेट में, सिर्फ मोबाइल से ही वो लोग सारे रीड करते हैं. तो हमारे ज़माने में उस समय नहीं था. जो सोशल मीडिया में मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी रविकांत के थ्रू, मिस्टर रविकांत के थ्रू, मेरे विनय भारद्वाज से, ये 2000 कितने की बात है, 18th की बात होगी, 2018 जो मेरे आपसे पहले इंटरेक्शन हुई थी. मैंने फर्स्ट इंटरेक्शन मेरी सोशल मीडिया के थ्रू विनय भारद्वाज से. तो मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं भाई स्टूडेंट से ये है कि आप मेहनत करो है. मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का मेरा एक वो है कि ड्रीम्स सपने लो, सपने वो नहीं तो जो लोग देखते हैं, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते. तो ड्रीम्स लेना चाहिए, स्टडी करो, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज की कोई एज नहीं होती है, यू कैन लर्न.
4: सर ए अंबाला के पास शाहबाद करके टाउन में रहते हैं, दिल्ली में भी इसका होम टाउन है. तो इनका खुद का एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है. सो साइबर सिक्योरिटी कंपनी का एक फाउंडर या को फाउंडर है, और उसी गवर्नमेंट रिलेटेड सम अदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आई थिंक उनके होम टाउन शाहबाद में भी एक स्कूल है जहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड बेसिकली मल्टीटास्किंग भी करते हैं। सो मल्टीटास्किंग भी करते हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। सो अभी मनु इज वन पर्सन हु वॉन्ट्स टू रिमेन अलूफ, थोड़ा इंट्रैक्शन में थोड़ा कम होना चाहते, फोटोग्राफ लेगा तो हालात खराब होगी और उसमें से स्पॉटलाइट से बाहर आना चाहते। ये नेगेटिव नहीं है बट इनका एक शायद
2: दूर है थोड़ा,
4: हाँ, लेकिन बेसिकली इनका एक व्यू पॉइंट है कि मैं स्पॉटलाइट में क्यों आऊँ। ये साइलेंट स्पेक्टेटर है लेकिन आसमान में चलते रहते हैं।
2: जी जी जी,
4: ये मेरा जब भी मैं इनसे मिलता हूँ दिल्ली में, सर जब भी मैं दिल्ली में चलता हूँ मैं इतना समझता हूँ कि एक तो पर्सनली मुझे एंटरटेन करते हैं कहीं भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं भी वॉटर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं इतना समझता हूँ कि देखिए कुछ सक्सेसफुल पीपल जैसे बिल गेट्स ये सब है, दे डू थिंग्स साइलेंटली, सो आई सी हिम एज वन अमॉन्ग देम बेसिकली। सो साइलेंटली ही डजंट वॉन्ट टू कम इन टू द स्पॉटलाइट सेइंग आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी, द कंपनी स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ व्हेन बिहाइंड द सीन इज मनु कालरा। दिस ए मेरा व्यू पॉइंट है, बातें कम करते हैं लेकिन वो ग्लोबल नॉलेज अच्छा है इनके पास। सो ये मेरा व्यू पॉइंट है। अभी आई डोंट नो हाउ मच मुझे क्रिटिसाइज करेगा लेकिन ए, मुझे लगा यही बोलना सही है। व्हाट डू यू से
5: सर? आई से नथिंग।
4: ओके,
1: तो मनु जी जो है वैसे मैं चाहूँगा उनका वन टू वन इंटरव्यू करूँ ताकि जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं उनसे बात करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
4: वन एक एग्जांपल था जब हम 80s में जब इंजीनियरिंग के लिए सर्च करें क्योंकि सब लोग 12th स्टैंडर्ड और सब ग्रेजुएट हो गए, सबके एस्पिरेशन थे कि टॉप कॉलेजेस में जाए, बिट्स पिलानी, IIT, REC, दो तीनों का ब्रांड नेम्स थे उस समय। प्राइवेट कॉलेजेस तो थे बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि ज़्यादा लोग की जानकारी हो। मैं चेन्नई से, उस समय चेन्नई में मेरा 12th स्टैंडर्ड हो गया बेसिकली। मैं IIT पढ़ा लेकिन फ्लंक किया क्योंकि उसका स्पेशल कोचिंग लिया। बिट्स पिलानी 3% से मेरा मार्क्स कम हो गया कट ऑफ में, सो फ्रस्ट्रेशन हो गया। वहाँ एक पंजाबी कॉलेज था चेन्नई में कॉल गुरु नानक कॉलेज, उसमें मुझे BSc एडमिशन मिला फिजिक्स में। एक दिन गया कैंपस में, पता नहीं कहीं से एक स्मॉल अपना चेयरमैन पदम सिंह पाटिल उस्मानाबाद करके एक जगह इतना बढ़िया बूस्ट किया, एक स्मॉल कैप्शन ऑफ एडवर्टाइज पूरा इंडिया स्प्रेड कर दिया कि वी डू नॉट टेक कैपिटेशन और डोनेशन फीस, सेलेक्टेड टू मेरिट और वी कम विथ फीस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। मेरे फादर ने देखा था ये पेपर, मेरे बिना नॉलेज उन्होंने अप्लाई किया था और बाद में आई थिंक 1 week टाइम उनको टेलीग्राम आया सन सेलेक्ट, क्योंकि हमने जेरोक्स कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो सेलेक्टेड टू मेरिट प्लीज़ कम विथ फीस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। अभी ही वॉज सरप्राइज बिकॉज उस समय गेटिंग एन इंजीनियरिंग सीट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, किसी ने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेशन। तो मेरे पापा भी मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैं एक डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज में एक कॉलेज में पढ़ रहा जो BSc ज्वाइन किया था, रवि तुमको एक इंजीनियरिंग सीट मिल गया, क्योंकि वहाँ चेन्नई में कैपिटेशन फी 80,000 rupees उस समय, मेरे पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यू कुड नॉट एफोर्ड। मैंने बोला आप डोंट वेस्ट मनी ऑन मी, तो और इधर बोला कम विथ फीस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फीस था अराउंड 8,500 समथिंग लाइक दैट। तो हाँ इसमें क्या है, मेरा पापा का एक सेक्रेटरी उसका भाई इस कॉलेज में मेरा सीनियर था, तो उसने बोला सर विच प्लेस सर, उस्मानाबाद, माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग देयर। तो मैं पापा बोले चलो मिल लेते हैं उनसे, उनका नाम था सैमुअल रॉबर्ट ज्ञानमुतु, चेन्नई से था, 86 बैच का था, तो सैमुअल रॉबर्ट ज्ञानमुतु, तो उस शाम को उससे मिले थे हम। तो मैंने उसको पूछा ए, सर मैंने इसको पूछा व्हाट इज़ दिस कैंपस, क्या कैंपस के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। वो बोला दिस कैंपस इज स्प्रेड इन 210 acres। तब मैंने एक्चुअली बिट्स पिलानी का ब्रोशर देखा तो 180 acres लिखा, मैंने सोचा तो बिट्स पिलानी से बहुत बढ़िया कैंपस। पापा डैडी लेट्स गो, आई थिंक दिस इज बिगर देन बिट्स, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने खुद बोला। और बाद में नेक्स्ट डे सोलापुर का ट्रेन पकड़ लिया या आगे, एक्चुअली ST बस स्टैंड में हमने ड्राइवर और कंडक्टर को बोला उस्मानाबाद इन सिटी से थोड़ा आगे वहाँ हमको रुकवा दो, तो या हाईवे में रुकवा दिया। हम नीचे

0: देखा तो हम सोचा कहीं बोर्ड और कैंपस और एंट्रेंस होकर कुछ भी नहीं दिखाया, खाली हरियाली, बारिश और एक कैटल जा रहे थे वो आदमी लेके जा। मैंने बोला भैया इधर एक इंजीनियरिंग कॉलेज किधर है, उसने वो बिल्डिंग देखा वो कॉलेज है। मैंने बोला वो कॉलेज है, मुझे तो ऐसे नहीं लगा। बेसिकली मतलब एक साइड मौसम देख के बड़ा खुश हो गया, लेकिन कैंपस देख के मैं सोचा इसको कॉलेज कैसे बोलते। तो उस समय सैम भी इधर आया था, आपने बोला 210 एकर्स, हाँ दिस एंटायर जंगल कॉलेज का ही कैंपस है, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड अ कॉलेज, उसने बोला। तो ये अच्छी बात है। बट जब मैं कैंपस में एंटर किया, देखा हमारे मेरे जैसे सब लोग फ्रेशर्स एडमिशन्स हो रही थी और सब लोग अपना एनरोलमेंट कर रहे थे, तो एक न्यू एटमॉस्फेयर, न्यू एनवायरनमेंट हो गया। मेरे पापा बोले तुम 4 साल पढ़ाई करोगे, मैं बोला यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको मजबूर नहीं करना चाहते थे, मैं फॉर वॉट एवर रीजन्स बेस्ट नोन, सो फाइनेंशियली वॉट एवर में भी, तो मैंने बोला ओके ठीक है जैसा आप बोलते हैं। ओल्ड हॉस्टल में एडमिशन हो गया मेरा, और उसी दिन से मेरा न्यू सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो गया। फर्स्ट टाइम मैं मेरे नेबर्स जम्मू थे, पंजाब थे, हरियाणा थे, साउथ में थे, सब जगह, तो एक इट्स अ न्यू बिगिनिंग था बेसिकली। लेकिन हमने यही सोचा 4 साल यहाँ कैसे रहेंगे जब तक हम यहाँ रहे थे, बट किसी हालत में 4 साल या 5 साल हम डिग्री ख़त्म करके बेसिकली गए। जब हम यहाँ रहते थे हम यहाँ से कैसे निकलेंगे सोचे, बट हम यहाँ से जाने के बाद हम हमेशा सोचते थे 4 साल इधर बीते हमें वापस आना है। मैं अभी डिग्री होने के बाद भी आई थिंक दिस इज़ माई 3rd or 4th विजिट टू द कैंपस। सो द ग्रेटनेस अबाउट दिस प्लेस इज कि पदम सिंह पाटिल बूस्टेड दिस प्लेस विच वॉज अननोन टू मेनी ऑफ अस, प्लेस कॉल्ड उस्मानाबाद, which makes us to think about this even today after 4 decades, you know, यही बात है।
1: आमन सर कुछ तो बात करना
2: चाहिए। सर जब हम एक इसके ऐड आती थी कॉलेज इंजीनियर उस्मानाबाद की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हाँ उसी ऐड को देखे कल मैं यस्टरडे यहाँ पर 5:30 को पहुँच गया, क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन जो 36 ईयर्स के बाद आ रहा था हमारे ग्रुप से, आज के ग्रुप में। तो मैंने जैसे पहुँचा होटल में अपना सामान रखा, वो मैंने एक ऑटो हायर किया कि जहाँ हम लोग रहते थे उसको देख लें, तो सारा घूम लिया, पर मेरे को ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ मैं कहाँ पे हूँ, क्या चीज़ है, एवरीथिंग इज चेंज। अच्छा लगा, एक्सप्लोर किया।
1: तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट इस पे जाना चाहूँगा, जैसे कि हमने बहुत सारी बातचीत की है कि आप क्या काम करते हो, आपने कैसे कैसे आपकी जर्नी ये की, लेकिन उस टाइम जैसे आप एंकरिंग ज़्यादा किया करते थे प्रोग्राम में बहुत सारे, तो आप मूवी कौन से देखा करते थे, जैसे वहाँ पे आप गर्ल्स भी ज़्यादा नहीं थी कॉलेज में, लेकिन फिर आपने कैसे सर्वाइव किया तो कैसे सर्वाइव किया, तो सबके तरफ से आप ही बोल दीजिएगा, और ये सब बाकी कैसे लोग मतलब एंजॉय किया करते थे, मूवीज़ कैसे देखा किया करते थे, आजकल तो कैसे कंप्यूटर मोबाइल में भी देखते हैं, लेकिन उस वक्त कैसे मूवी देखने जाया करते थे, और आपको खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या किया करते थे, और जैसे आप सब दोस्त यहाँ पे एक साथ मिल गए तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा पहला गाना चल गया कि उस ज़माने की याद दिला दी आपको, कि ऐसा कौन सा, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो हम हमारे दिमाग में एक बिल्कुल गाना आ जाता है उस वक्त का। अगर मैं मेरे स्कूल के पीरियड में जाऊंगा 1990 के जमाने में तो मुझे वो गाने याद आ जाएंगे। तो वैसे आपको कौन सा गाना यहाँ पे आने के बाद दिमाग में आ गया, आपके जर्नी को भी वो डिफाइन कर सके, तो इस तरीके से कुछ तो बोलिए विनय जी।
3: हमारे टाइम में एक मूवी आई थी तो उसमें जो गाना था रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग गाया करते थे, तो वो गाना मैं थोड़ा सा गा के बताता हूँ आपको।
4: सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
1: तर ॲडवोकेट मनीष वाघमारे जी, आपण ह्या सर्व आत्ताच्या इंटरव्ह्यूला, खरं तर मला हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो 1-to-1 करता आला असता तर खूप मला अजून जर्नी घेता आली असती यांची सगळ्यांचीच, पण एनी वे आता कारण 38 वर्षानंतर तुम्ही पहिल्यांदा आप सभी यहाँ पे आहे 36-38 इयर के बाद, आगे न जाने कब मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे कभी इधर तो हम 1-to-1 फिर से एक बार सब एक्सपीरियंस हम करेंगे। लेकिन ॲडवोकेट मनीष वाघमारे जे आहेत ते यांच्या सर्वांच्या सोबत इथं राहिलेले आहेत त्यावेळेसच्या, तर त्यावेळेसच्या तुम्ही थोड्याशा आठवणी पण सांगा आणि ह्या सर्व जर्नीला कन्क्लूड करा।
5: रिस्पेक्टेड डॉक्टर पदमसिंह पाटील साहेब ने जो कॉलेज यहाँ पे चालू किया तो उसके वजह से उस्मानाबाद का बहुत ही डेवलपमेंट हो गया, और वो टाइम पे जो बाहर से ज़्यादा आउटसाइडर स्टूडेंट

0: थे, तो यहाँ पे माहौल ऐसा था कि भाई सब एक अपने फैमिली मेंबर जैसे हम काम करते थे, हम एज अ लोकल बोल के थोड़ा सा हमारा डिमांड था कि भाई आप लोकल है तो थोड़ा सा ये भी था, लेकिन उसका हमने कभी मिसयूज़ नहीं करके लिया। और जो यहाँ पे डेवलपमेंट उस्मान का हो गया वो टाइम उस्मान था, तो ये उस्मान के लिए अच्छा है। और दूसरी बात कि आज जो मौका मिला यहाँ पे आके कॉलेज में आके बात करने का कि भाई मैं बहुत इमोशनल हो गया कि भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि भाई यहाँ पे जो पहले माहौल था कॉलेज का कि ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, वो तो कुछ जो वीक पॉइंट ऑफ कॉलेज वो तो अंडर डेवलप उस्मानाबाद था वो टाइम, तो अभी तो बहुत ही डेवलप हो गया। और ऐसे ही स्टूडेंट जो कॉलेज एलुमनी यहाँ पे कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, जो कि कॉलेज के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है। यही बोलूँ।
1: थैंक यू सरवन सर।

0: तो आज के प्रोग्राम में हमने इन सभी का इंटरव्यू सुना। मिस्टर विनय भारद्वाज जो प्रिंसिपल इंजीनियर है NXP सेमीकंडक्टर्स नेदरलैंड, इनके साथ है मन्नू कालरा जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है और फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी में काम किया करते हैं, 1980T बैच के हैं, CSE बैच के हैं। उनके साथ है मिस्टर वी रविकांत जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड अलायंस पार्टनर है ज़ायोरा इनोवेशंस बेंगलुरु के, ये भी 1988 के CSE बैच के हैं। इनके साथ है मिस्टर संदीप गुप्ता जो डायरेक्टर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजर है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के, वो दिल्ली से है और USA ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं 1988 CSE बैच के। इनके साथ है मिस्टर प्रवीण महाजन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मैनेजर की ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो 1988 CSE बैच के हैं। मिस्टर संदीप लाहुटी जी है जो चीफ सेल्स ऑफिसर है जुलू डिफेंस के बैच 1988 CSE के, और इनके साथ है मिस्टर अमन सांगरा जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज नोएडा नेहरू पैलेस बैच 1988 ETC के।
1: हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हैदराबाद मुक्ति संग्राम। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील धकधकता कालखंड म्हणजे हैदराबाद मुक्ति संग्राम, आणि या मुक्ति संग्रामातील 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंतच्या कालावधीतील मराठवाड्यातील अनगिनत स्वातंत्र्य सेनानी स्वातंत्र्य वीरांगणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, आपलं संपूर्ण अस्तित्व पणाला लावलं, तेव्हा कुठे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर 13 महिन्यांनी हैदराबाद मुक्त होऊन भारतात विलीन झाला, तो दिवस म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948। आज आपण हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत। या धगधगत्या संग्रामात आहुती दिलेल्या सर्व स्वातंत्र्य सेनानींना रेडिओ तेरणाच्या वतीने कोटी कोटी प्रणाम। आपल्या बलिदानाचं स्फुरण अनेकांसाठी असेल देशभक्तीचा स्त्रोत आणि देशरक्षणासाठी ठेवेल कार्यप्रवण। हैदराबाद मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाच्या आपल्या सर्वांना मनस्वी शुभेच्छा। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।
2: आपली पसंत, आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज़।

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोते हो, मराठी गाणी म्हणजे मायबोलीतील भावनेची हाक, हृदयस्पर्शी मराठी गाण्यांचं व्यासपीठ म्हणजे रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: हैदराबाद मुक्ति संग्राम। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील धगधगता कालखंड म्हणजे हैदराबाद मुक्ति संग्राम, आणि या मुक्ति संग्रामातील 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंतच्या कालावधीत मराठवाड्यातील अनगिनत स्वातंत्र्य सेनानी, स्वातंत्र्य वीरांगनांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपलं संपूर्ण अस्तित्व पणाला लावलं। तेव्हा कुठे, भारतीय स्वातंत्र्यानंतर 13 महिन्यांनी हैदराबाद मुक्त होऊन भारतात विलीन झाला। तो दिवस म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948। आज आपण हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत। या धगधगत्या संग्रामात आहुती दिलेल्या सर्व स्वातंत्र्य सेनानींना रेडिओ तेरणाच्या वतीनं कोटी कोटी प्रणाम। आपल्या बलिदानाचं स्फुरण अनेकांसाठी असेल, देशभक्तीचा स्रोत आणि देशरक्षणासाठी ठेवेल कार्यप्रवण। हैदराबाद मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाच्या आपल्या सर्वांना मनस्वी शुभेच्छा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज़।

जिस पर आपका गम, ये तन्हाई

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

यहाँ खड़े हैं। माई बाप, ये खेल कोई मामूली खेल नहीं, ये तमाशा कोई मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पृथ्वी दृष्टि पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप, एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पे चलना पड़े। लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
0: हैदराबाद मुक्ती संग्राम. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील धगधगता कालखंड म्हणजे हैदराबाद मुक्ती संग्राम. आणि या मुक्ती संग्रामातील 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंतच्या कालावधीत मराठवाड्यातील अनगिनत स्वातंत्र्य सेनानी स्वातंत्र्य वीरांगनांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपलं संपूर्ण अस्तित्व पणाला लावलं. तेव्हा कुठे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर 13 महिन्यांनी हैदराबाद मुक्त होऊन भारतात विलीन झाला, तो दिवस म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948. आज आपण हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. या धगधगत्या संग्रामात आहुती दिलेल्या सर्व स्वातंत्र्य सेनानींना रेडिओ तेरणाच्या वतीनं कोटी कोटी प्रणाम. आपल्या बलिदानाचं स्फुरण अनेकांसाठी असेल, देशभक्तीचा स्रोत आणि देशरक्षणासाठी ठेवेल कार्यप्रवण. हैदराबाद मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाच्या आपल्या सर्वांना मनस्वी शुभेच्छा. ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.
3: नमस्कार श्रोता हूँ, आज तेरणा की प्रेरणा इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू. इसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं मिस्टर विनय भारद्वाज, जो प्रिंसिपल इंजीनियर है NXP सेमीकंडक्टर्स नेदरलैंड. इनके साथ है मन्नू कालरा, जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है और फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी में काम किया करते हैं. 1980T बैच के है, CSE बैच के है. उनके साथ है मिस्टर वी रविकांत, जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड अलायंस पार्टनर है जायोरा इनोवेशंस बेंगलुरु के, ये भी 1988 के CSE बैच के हैं. इनके साथ है मिस्टर संदीप गुप्ता, जो डायरेक्टर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजर है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के. वो दिल्ली से है और USA ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं 1988 CSE बैच के. इनके साथ है मिस्टर प्रवीण महाजन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मैनेजर की ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के, जो 1988 CSE बैच के हैं. मिस्टर संदीप लाहुटी जी है, जो चीफ सेल्स ऑफिसर है जुलू डिफेंस के, बैच 1988 CSE के. और इनके साथ है मिस्टर अमन सांगरा, जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज नोएडा नेहरू पैलेस, बैच 1988 ETC के. तो ये सभी है और ये बेसिकली ये दिल्ली जम्मू से बिलोंग करते हैं. तो आज तेरणा की प्रेरणा इस प्रोग्राम में हम इनका सबका इंटरव्यू सुनेंगे. नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. मित्रांनो, आपण नेहमी तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि त्यानंतर आता आयुष्यामध्ये अशा एका वळणावर असतात, आयुष्याच्या अशा एका टप्प्यावर असतात की ज्या ठिकाणी त्यांचं जे हे यश असतं, त्यांचा जो हा प्रवास असतो तो आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतो. आणि त्याच पद्धतीनं आज आपण या ठिकाणी 1988 म्हणजे खूप वर्ष झालेली आहेत, जवळपास 38 वर्ष झालेली आहेत. तर 38 वर्षापूर्वीची ही जी बॅच आहे ती आज आपल्या या ठिकाणी आलेली आहे आणि रेडिओ तेरणाला त्यांनी व्हिजिट केलेली आहे. जवळपास आता माझ्यासमोर 7-8-10 स्टुडंट 1988 बॅचचे बसलेले आहेत. खूप चांगल्या चांगल्या क्षेत्रामध्ये ते कार्यरत आहेत आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी आपलं स्वतःचं आता नाव कमावलेलंच आहे, पण त्यासोबत तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं सुद्धा नाव जे आहे ते खूप मोठं केलेलं आहे. तर अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा आपण जीवन प्रवास जो आहे तो आपण जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम रविकांत यांचा आपण पूर्ण 1 तासाचा पॉडकास्ट ऐकलेलाच होता, पण रविकांत हे सर्वांचं इंट्रोडक्शन करून देतील आणि त्याच्यानंतर मग आपण एकेकांची जर्नी समजून घेऊयात. रविकांत जी, आप सबका इंट्रोडक्शन पहिले करवा की दीजिएगा.
4: तो मेरे बगल में बैठे मिस्टर मन्नू कालरा जी, हम साथ में पढ़े थे 1988 बैच के. आज ये अपना एक साइबर सिक्योरिटी का कंपनी चला रहे दिल्ली में. आगे अमन सांगरा है जो हमारे साथ जम्मू से आया है एंड सेटल्ड इन दिल्ली, बट उनका भी CCTV कैमरा और अदर प्रोकोर बिजनेसेस है नोएडा में भी. मिस्टर पंकज गोयल आई थिंक गल्फ में काम किया, ओमान में, लास्ट ईयर नोएडा आ गया और हेल्थ केयर कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर है बेसिकली. मिस्टर संदीप लाहोटी जी जो डिफेंस लाइन में था और अभी खुद का अपना एक स्टार्टअप हो रहा है. परवीन महाजन LED का बिजनेस, उनका एक खुद का कंपनी है कोर प्रोडक्ट्स करके एंड डेफिनेटली इज वेल एस्टैब्लिश एंड अपना बिजनेस एक्सपेंड कर ग्रो हो रहा है. मिस्टर विनय भारद्वाज जी एक्सेलेंट एक्सपीरियंस लेके आ रहे. कैडेंस एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था, अभी आई थिंक ही इज वन ऑफ द सेमी कंडक्टर कंपनीज. मिस्टर संदीप गुप्ता जी अलोबा टेक्नोलॉजीज नोएडा में डायरेक्टर है और आई एम फॉर्चुनेट मैं भी उनके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, कुछ कुछ साथ में काम करता हूँ. सो वी आर टुगेदर. मैं वैसे पिछले बार मिला था, अभी भी मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन था रविकांत और मैं भी फ्रीलांस कंसल्टिंग करता हूँ 3-4 कंपनियों से. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे. सारे दिल्ली से आए हम सब और 33 इयर्स के बाद हम बहुत एक्साइटेड है कैंपस को देख के. और हमारे साथ मैं तो पहले भी आ चुका हूँ तो मैं थोड़ा चेंजेस ऑब्जर्व कर सकता हूँ. मेरे ख्याल से सब अपने अपने राय बताएंगे कि उनको क्या लग रहा है, मतलब जो जब वे थे यहाँ 4 साल में उनका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद लाइफ जर्नी क्या हुआ है एंड डेफिनेटली आज वो इधर कैंपस आने के बाद उनको क्या महसूस हो रहे है. तो मैं पहले संदीप को दे दूं.
3: जी संदीप से. जी संदीप सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ. जैसे कि इंट्रोडक्शन करवा के दिया है, आप जैसे कि दिल्ली नोएडा यानी सब नॉर्थ से आए हैं सब आप यहाँ पे. 1988 के बाद शायद आपने 1988 में एडमिशन लिया था पहली बार. अब लगभग उसको 38 ईयर बीत रहे. 38 साल का समय काफ़ी होता है, बहुत काफ़ी होता है. एक दो जनरेशन इसके अंदर निकल के जा सकती है अगर हम 10 ईयर का भी अगर एक देखा जाए तो. तो सबसे पहले आप 38 साल बाद आप सभी के सभी लोग पहली बार आ रहे हो या इसके पहले आए थे?
5: मैं पहली बार आ रहा हूँ 34 इयर्स के बाद. 1992 में पास आउट किए थे. सो 1992 के बाद आज मैं पहली बार आया हूँ. सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम शोलापुर से यहाँ उस्मानाबाद धाराशिव आने में हमें सिर्फ कैब में 1 hour 15 minutes लगे, राइट, जो कि उस टाइम में 2 घंटे से ज़्यादा लगता था. और हम याद कर रहे हैं अभी भी वो ST बसेस, बिल्कुल ST बस होती थी. ST बस भी एक सोर्स ऑफ ST बस ही एक सोर्स था. सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन जो आपने बात किया, हम लोग रहते थे बैंक कॉलोनी में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड. फर्स्ट ईयर हम हॉस्टल में ही रहते थे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम बैंक कॉलोनी रहते थे. सो कॉलेज से बैंक कॉलोनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. देयर इज कॉलेज बस जिस जो एक पर्टिकुलर टाइम था. सो जैसे आपको पता है कॉलेज लाइफ में कि हम उस वेट तक एंड टाइम तक वेट नहीं करते थे. सो तब हम यहाँ इस रोडवेज पे ट्रक्स चलते थे काफ़ी ज़्यादा. उस समय बहुत ज़्यादा ट्रक थे क्योंकि हाईवे था और ये फ्लाईओवर वगैरह नहीं था. कॉलेज के आगे से ट्रक निकलते थे और हम नॉर्थ के ट्रक देखते थे और उसे हाथ देते थे और वो ट्रक रुक जाते थे. हम उन ट्रक पे बैठ के कॉलेज से यहाँ कॉलेज से बैंक कॉलोनी तक जाते थे. और सुबह भी कई बार अगर कॉलेज की बस मिस हो जाए, लेट हो जाए, तो हम उन ट्रक के थ्रू बैठ के वहाँ से यहाँ आते थे. तो वो सब एक्सपीरियंस हमारा अपने टाइम का काफ़ी हमें, जब हम यहाँ आए और ये सब डेवलपमेंट देखा तो काफ़ी अच्छा लगा हमें. रास्ते में हमने विंड मिल्स देखी आपका पूरा जो है. सो एक अच्छा डेवलपमेंट हमें लगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे. कॉलेज के अंदर भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. हाँ, उस समय जब हम थे तो कॉलेज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. कॉलेज हमें याद है, एक मेन बिल्डिंग से लैब तक जाने के लिए देयर इज अ डीप खाई होती थी, खाई के बीच से हम जाते थे। अब वो पूरा रोड बन गया है, पूरा सब कुछ, इतना अच्छा डेवलपमेंट है, तो देख के बहुत अच्छा लगा हमें इन सब चीज़ों को।
3: मैं आपसे फिर से एक बार एक राउंड लेके आऊंगा, मैं पहले तो विनय भारद्वाज जी। तो विनय भारद्वाज जी, जैसे कि अभी संदीप सर ने कहा कि 1988 का आपका एडमिशन था, जैसे आपने फर्स्ट जर्नी आया तो आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो चेंज दिखाई दिया, लेकिन मैं वो जानकारी जानना चाहूँगा कि जब आप पहली बार यहाँ पे लैंड किए थे एडमिशन लेने के लिए 1988 में, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी, और आज जब आप इतने सालों से आ रहे हो तो आपकी आज की फीलिंग कैसी है, बोलिए।
6: मेरी फीलिंग एक्चुअली ज़्यादा कुछ चेंज हुई नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया था एडमिशन के लिए तो उस समय मौसम बहुत ही शानदार था, मई का महीना और बारिश और चारों तरफ ग्रीनरी, तो ऐसी फीलिंग आई थी कि बस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है। और मैं बिल्कुल अकेला आया था एडमिशन कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को भी साथ में नहीं लाया था, तो मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया था। और उसके बाद दो महीने बाद फिर मौसम चेंज हो गया, लेकिन कितने भी मौसम ख़राब भी आए, बहुत हीट भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे यूनिक चीज़ जो पहले भी थी और आज भी है, हम लोगों की आपस में जो 88 बैच की बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग इतनी अमेजिंग है कि मतलब लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए ये सब लोग साथ खड़े, ये एक मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। और मैं लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस मैंने किए, लेकिन सब लोग ये मेरे साथ खड़े हुए थे, और मैं दोबारा से मतलब एक रीबर्थ कह सकता हूँ कि दोबारा से जन्म हुआ और फिर से मैं अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में आया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ दिस डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अलाइव एंड किकिंग हूँ।
3: तो प्रवीण महाजन जी, जैसे कि अभी विनय सर ने भी कहा कि 1988 में जब यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त का माहौल था, लेकिन 38 ईयर्स के बाद जब आप यहाँ पे पहली बार लैंड करते हो, देखते हो, तो दिल के अंदर क्या हो रहा था ये पहले बोलिए। आप ट्रांस में उस चले गए वो 38 ईयर पहले, या क्या क्या आपकी फीलिंग क्या थी पहली यहाँ पे जब आ गए आज के दिन में?
7: एक्चुअली उस टाइम के और आज के टाइम में सबसे बड़ी वी मतलब द डेवलपमेंट वी सी, वी फील दिस इज़ आवर सेकंड होम। हम इतने साल यहाँ पे रहे, हमारी लोगों से एक दूसरे से क्लोजनेस, और विच वी स्टिल कॉन्टिन्यू लाइक विनय टोल्ड। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो हमने यहाँ पे आन की वो थी हमारी दोस्ती, जो हमने जो आज भी कंटिन्यू करती है। और बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। वर्स्ट पार्ट मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे संदीप और मैं आए, हम भी अकेले आए, देर इज़ अ संदूक था हमारे पास एंड नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट अस, कोई यहाँ पे कुछ नहीं था, बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया एंड वी हैव टू कम से कम 1.5 किलोमीटर हमें वो बॉक्स उठा के लेके जाना पड़ा, एंड उसका वजन कम से कम 30 किलो होगा। अच्छा। लोहे का बॉक्स था एंड अदर बैग्स, और उसके देर वॉज ओनली टू रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। तो जो हम दिल्ली से आए थे तो शायद हमें आदत नहीं थी, तो जब वो कैरोसिन के स्टोव पे बन के आया ना ऑमलेट फर्स्ट टाइम, तो इट वाज स्मेलिंग लाइक कि ये कैरोसिन में बन के आया है। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, सो आई नेवर, मैं भूला नहीं हूँ।
8: वो यादें बहुत जरूरी है सर।
7: बट आज तो मैं कहूँगा कि जो कल्चर है या सब कुछ है, मतलब आप तो आप पूरा आर्गेनाइज हो गया है। मतलब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आज मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी डेवलपमेंट हो गई, लोग पहले मराठी मतलब हिंदी समझना नहीं चाहते थे, सो वेरी गुड, नाउ दे आर वेरी ओपन। और एक और लगा कि मतलब यहाँ की आज जैसे मैंने क्लास ली तो जितनी मतलब गर्ल्स को मुझे देख के खुशी हुई कि भाई इतने लड़कियां एफर्ट डाल रही हैं इंजीनियरिंग में, कि हमारे टाइम तो वेरी फ्यू, और उनको वाकई बहुत मुश्किल था इंजीनियरिंग करना, इट्स नॉट इजी। जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ से ट्रक पे आना, बस पे, देर कन्वेंस ही नहीं था यहाँ पे। समटाइम्स आई रिमेम्बर कुछ लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चल के वापस गए हैं। शालीमार में था, 10-10, 12-12 किलोमीटर दे हैव टू वॉक टू रीच दोस। तो इट वॉज अ टाइम, बट हमने हंसी खुशी निकाला द गुड पार्ट, चाहे मजाक करके, चाहे उसको गाली दे के, चाहे जैसे भी, बट वी हैड अ वेरी गुड टाइम।
3: सर आपका नाम? सेकंड संदीप सर, संदीप सर ने सर
9: संदीप लाहोटी। अभी प्रवीण ने कहा, महाजन ने, की लड़कियां नहीं थी, बहुत कम थी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं हमने कितने डीमोटिवेटिंग एनवायरमेंट में किया पढ़े
3: ठीक है। लेकिन उस वक्त तो लेडीज हॉस्टल होगा ही
9: नहीं, वहां पर भी जाना अलाउड नहीं था।
3: तो मैं सर फिर से एक बार आपके पास आ जाऊंगा। आपका नाम सर?
10: पंकज गोयल।
3: अच्छा पंकज जी, जैसे कि प्रवीण सर ने कहा, संदीप सर ने भी कहा कि जैसे कि वो उनकी यादें बोल रहे, तो जैसे हर एक कोई अकेला आया था यहाँ पे, तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप हो गई, फिर बाद में आपके एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कैसे होगा ये बोलिए।
10: सर जब हम यहाँ आए थे, फॉर्चुनेटली जब मैं आया था तो संदीप और मैं दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, और कहीं कॉमन सोर्स के थ्रू हमारे फादर्स कनेक्ट हो गए थे, तो एटलीस्ट हम लोग उस समय कनेक्ट हुए थे। एक बार एडमिशन के लिए मैं आया था, संदीप तो नहीं आए थे, तो उस समय उनसे जान पहचान हो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ आए तो हॉस्टल में रुके, तो पहले मैं जैसे महाजन बता रहे थे, हॉस्टल हमारा 10-12 किलोमीटर था, तो मैं दूर उस हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ कुछ लोग रूममेट्स थे आसपास और हमारे कुलीग्स थे, तो उनसे जान पहचान हुई, फ्रेंडशिप हुई। ये यहाँ पर थे तो इनसे जान पहचान थी, तो यहाँ पर बाकी सबसे जान पहचान बढ़ती चली गई। तो धीरे धीरे कॉलेज अटेंड किया, हॉस्टल में रहे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ और वहीं से जान पहचान और दोस्ती शुरू हो गई।
7: अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना, जैसे इन्होंने कहा संदीप ने, कोई आगे पीछे कोई नहीं था, हम एक दूसरे की देखभाल करते थे। देर वॉज नो, ना कोई आ सकता था, हमें फोन करने के लिए 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, देर इज नो फोन। अगर घर से फोन करवाना है तो वो हम लेटर पे फिक्स करते थे टाइम कि इतने बजे इस जगह पे हम आपका फोन अटेंड करेंगे।
10: हाँ। वही था, यहाँ पर क्या था कि कहीं भी सुख दुख है सब कुछ है, आपस में ही बांटना है, तो वो जो बॉन्डिंग है वो जो हुई थी, तो वो अभी तक है, क्योंकि घर से एक बार आ गए तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ एक कनेक्शन होता था कभी हफ्ते 10 दिन में एक फोन कर लिया, और फोन भी सब घर पे उस समय होते नहीं थे, मोबाइल्स तो थे ही नहीं, लैंडलाइन भी नहीं होती थी, तो कभी कभी फोन होता था, और तो इसलिए आपस में ही एक दूसरे के सुख दुख में सब एक साथ थे और वही साथ चलता रहा।
3: सर जम्मू से है, मुझे जम्मू से इसलिए कहा कि आपका नाम सर?
11: अमन सर।
3: तो अमन जी, ये मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे विनय सर ने कहा था कि यहाँ की बहुत सारी ग्रीनरी है, ये है, अभी थोड़ा सा माहौल आपको अलग लग रहा होगा, आप तो जम्मू से आ गए जहाँ पे तो स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ से आप आए थे, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आप रेगिस्तान में यहाँ पे आए?
11: ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि मेरी पेरेंट्स उस समय मेरे साथ ही आए थे, तो ग्रीनरी थी वहाँ पे, अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए कि इतनी ग्रीनरी है, कि तुम अच्छी जगह पहुँच गए हो, तो बहुत खुश हुए थे। फिर हम एक आते ही मेरे पेरेंट्स साथ में एक होटल में रहे थे हम लोग, तो उनके जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि जब हम खाना खाते थे किसी होटल में जाके ना, तो भाई घर की याद आती, घर की रोटी की याद आती थी कि हम खा रहे हैं, और आँखों में आंसू आते थे। तो ठीक है, आस्ते आस्ते दोस्ती बढ़ती गई, होता गया, मेरी पहली था नगोरी निवास में, मेरा स्टे था जो हॉस्टल मिला था मेरे नगोरी निवास में, उसके बाद फर्स्ट ईयर नगोरी निवास था, उसके बाद मेरा संभाजी नगर जो रामनगर के नाम से है, वहाँ पर हम लोग रहना शुरू कर दिया था। तो अच्छा लगा कि साथ में दोस्ती बढ़ती गई, होती गई, बाकी रही फ़ोन कॉल की बात, फ़ोन कॉल तो होते नहीं है, अगर लेटर होता था, अगर हमें कुछ पैसा घर से मंगवाना होता था, हम करते थे टेलीग्राम, तो हम लिखते थे एंड मनी सेंड मनी, तो क्योंकि उसमें हैंड मनी सेंड मनी,
3: अच्छा,
11: तो चार्जेस पैसे भेजो, क्योंकि टेलीग्राम के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे
3: जी।
11: तो घर में पहुंचता था वो मैसेज आ गया, तो फिर वो डीडी हमें भेजते थे, उस समय पेमेंट हमें मिल जाती थी, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे उस समय।
3: तो मैं अभी कालरा सर के पास आना चाहूँगा, आप तो थोड़ा सा अलग सा वाइब आ रहा है आपको देख के, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बीच में आप एक ऐसा कोई तो एक पर्सन थे जो कि वो चिंगारी डालना और फिर सेकते रहना, ऐसा कुछ है आपके अंदर?
12: पता नहीं यार, अब याद नहीं है ऐसी बातें।
3: तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है बोलिए
12: यार? एक्सपीरियंस इन लोगों ने शेयर कर दिया, इन्होंने बता दिया कि
3: आपका पता ही है ना, आप इनके
12: अरे कोई अलग नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस कोई इनसे अलग नहीं है, ये है कि शायद सबसे ज्यादा दूर कॉलेज से मैं ही रहता था।
3: अच्छा।
12: जो शेरखाने पेट्रोल पंप होता था पहले आगे, बस उसके पास मैं वहां रहता था, और कई बार ऐसा हुआ है कि चाहे पानी पड़ा हो सड़क पे, पानी जाम हो, जैसे भी हो, पैदल चल के पहले बस स्टैंड तक और फिर बस स्टैंड से कॉलेज ट्रक पकड़ गए या कैसे भी वही आए, तो अब जर्नी जैसी थी वैसी थी
3: जी।
12: ये उस टाइम तो दिन गिनते थे कि यार अच्छा फर्स्ट ईयर निकल गया, अब सेकंड ईयर निकल गया, दो साल बचे हैं, थर्ड ईयर निकल गया, एक साल बचा है, फाइनल ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, चार महीने यार हंसी खुशी बिता लो। और फाइनल ईयर में तो आते आते हालत ये हो गई थी कि एग्जाम से पहले पिक्चर हॉल ज्यादा जाते थे और बुक्स कम देखते थे। और उसके बाद जब फाइनल ईयर क्लियर किया तो ये था कि यार कुछ बनेंगे तो वापस आएंगे, अब वो वापस आने का मौका मिला ही नहीं कभी दोबारा।
3: अच्छा, लेकिन बन तो गए ना आप, लाइफ की जर्नी तो यहाँ तक आई।
12: लाइफ की जर्नी में आदमी शादी होती है तो शौहर बन जाता है, उसके बाद बच्चे होते हैं तो बाप बन जाता है, और फिर शादी के बाद तो फिर वो बैचलर्स को मैं यही कहता हूँ यार, हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग, यू मस्ट गेट मैरिड।
3: तो मैं आऊंगा वापस आपसे।
9: अमन ने कहा दो बातें, अमन के मैंने नोट की ऑब्जर्वेशन, अमन ने कहा कि जब मम्मी डैडी आए छोड़ने, ग्रीनरी देख के खुश हुए, उसमें तो हमारे भैया फादर खुश हुए, मदर रो रही थी, एक जना खुश था एक जना रो रहा था, उनका बेटा दूर जा रहा था वो खुश थे कि बेटा चलो दूर जा रहा है, दो एक खुश, दोनों इसी वजह से, वो उससे दुखी थे कि बेटा जा रहा है, वो भी इस वजह से खुश थे कि बेटा जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू इन्होंने कहा कि एंड मनी सेंड मनी, हमारे घर से आता था स्पेंडिंग टू मच मनी सो नो मनी। बस उसमें मैंने फर्दर ऐड कर दिया, बाकी आप आए।
11: कुछ लोग घर में फोन करते हैं कि दैट इज स्मोकिंग फंड भी होता था, स्मोकिंग फंड, उसके पैसे भेजो हमें, वो भी था उस समय उस स्टेट में स्मोकिंग,
3: स्मोकिंग फंड, वो क्या होता था स्मोकिंग फंड,
9: सुट्टा फंड,
3: वो पता था
9: वो
11: पता नहीं था, बस नो स्मोकिंग फंड, नॉट स्मोकिंग, नो स्मोकिंग फंड भी है कॉलेज में, वो देना पड़ता है।
3: तर आता आपल्या समोर ह्याच बॅचचे आपल्याच धाराशिवचे ॲडव्होकेट मनीष वाघमारे जे आहेत, तर मनीष जी तुम्ही आता ॲडव्होकेट आहेत म्हणून वकिली करता, इंजिनिअरिंग करून वकिली करणं, आणि ह्या सर्व लोकांसोबत तुमचा रेपो कसा, कारण आपले महाराष्ट्रातले पुन्हा त्यानंतर नॉर्थमधले उत्तर प्रदेश किंवा इतर स्टेटमधले आले म्हटले की मराठवाड्यातला आपला असं असतं की थोडंसं न्यूनगंड असतं की इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स येतो मनामध्ये की यार ह्यांच्यासोबत कसा ॲडजस्ट व्हायचं, तर तुमचा अनुभव कसा होता ते सांगा एक लोकल स्टुडंट म्हणून, का तुम्ही यांच्यावर राज्य करायचा हे पण सांगा।
13: राज्य करायचा हा विषय नाही आहे, त्यांना जेवढं कॉपरेट, हा उनको जितना कॉपरेट करने का था भाई, जितना कर सकते थे उतना उनको कॉपरेट कर दिया, क्योंकि वो इतने दूर से यहाँ पे आए, अपने मम्मी डैडी को पूरा फैमिली को छोड़ के आए, तो अपना भी एक लोकल बोल के कोई अपना भी फर्ज है कि भाई इनको कुछ जितना कॉपरेट करे उतना कर सके।
3: इंजिनियरिंग नंतर वकिली तुमचा असा काय विषय
13: नाही, इंजिनियरिंग नंतर थोडंसं सॅच्युरेशन पिरियड असल्यामुळे आणि मिसेस पण ॲडव्होकेट असल्यामुळं मी ह्या फील्डमध्ये वळालो, आणि माझी सामाजिक संस्था आहे माता अहिल्या देवी होळकर संस्था, मला पहिल्यापासून आवड आहे की सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करायचं, तर आता आमचं पुढचं टार्गेट आहे की आपले जे कॉलेजचे स्टुडंट आहेत ॲल्युमिनी असोसिएशन फॉर्म करायचा आमचा विचार आहे, जेणेकरून जे नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांना ह्या जुन्या विद्यार्थ्याचं त्यांच्या अनुभवाचं ज्ञानाचा फायदा ह्या नवीन विद्यार्थ्यांना हवा।
3: तो मैं संदीप जी एक सेकंड राउंड में ऐसा पूछना चाहूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि मैंने आप जैसे एल्युमिनियम का बहुत सारा इंटरव्यू किया हुआ था जम्मू से, अच्छा तो मेरे दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये इंटरव्यू लेना यानी आपकी जर्नी तो लेना ही है, लेकिन साथ में आपने जो स्ट्रगल किया, साथ में आपने जो एक दुनिया देखी हुई है, और अभी के जो स्टूडेंट है जो ये इंटरव्यू सुनते हैं तो उनको भी पता रहना चाहिए कि स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्सपोजर की वजह से उसमें थोड़ा सा कम आ गया, और जो बॉन्डिंग भी दिखाई देती है आपकी सब फ्रेंडशिप में तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा तो आजकल के स्टूडेंट में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मोबाइल हैंड में रहने की वजह से उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है और जो लाइवनेस रहता वो कम हो गया है। तो मैं ये दोनों तीनों सवाल एक साथ ही पूछना चाहूँगा ताकि आप उसका आंसर कर सके। तो आपकी जर्नी कैसे रही, आज आप क्या काम करते हो, वो काम में आपको कितना सक्सेस मिला हुआ है, और साथ में ऐसा अगर कुछ करना है जर्नी में आगे चलना है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये फ्रेंडशिप का ये जो बॉन्ड है जो कि जो आपके जनरेशन में है, हमारे जनरेशन में भी हमने देखा हुआ है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना उनके अंदर वो बॉन्ड नहीं है, माता पिता के लिए हो दोस्तों के साथ भी हो वो कम दिखाई देता है थोड़ा सा, तो ये जो अंदर का जो एक है कहते हैं ना वो ये अंदर की एक रिश्तेदारी, आज भी आप जितने 38 ईयर के बाद भी आप जितने एक दूसरे के साथ खुल के मिल रहे हो, तो उसके हिसाब से एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि आप लाइफ में अभी क्या कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, ये भी समझना चाहेंगे, और मैंने जो सवाल पूछे उसके बारे में भी।
5: सो अभी मैं जो हूँ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. सो आई एम अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजर इन दैट अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. और उन्हीं का एक और डिवीजन है आशा अकेडमी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए है, इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं. सो इस जर्नी तक आने के लिए 34 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है टोटल. तो स्टार्ट से नहीं होता, स्टार्ट में हमारे टाइम पे कोई कैंपस नहीं होता था, देयर इज़ नो कैंपस प्लेसमेंट. तो पास आउट होने के बाद खुद ही जॉब देखना होता था. उस समय कैंपस प्लेसमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, राइट. एंड कंप्यूटर साइंस उस समय एक नई ब्रांच थी. सो पास आउट होने के बाद, जैसे मैं जम्मू से हूँ तो हम जम्मू वापस गए. शुरुआत मैंने एक छोटे से पॉलिटेक्निक कॉलेज से की. सो अबाउट 3-4 मंथ्स उस कॉलेज में मैंने टीचिंग किया. उसके बाद मेरे को दिल्ली में, स्पेसिफिकली फरीदाबाद में, एक अपॉर्चुनिटी मिली विच इज़ रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री. सो वहाँ पे मैं आया, राइट. सो हमने जो जर्नी स्टार्ट किया, अगर मेरे को अभी भी याद है, हमें मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 1750 रुपीज़ थी. अच्छा. और उसके बाद वो जो जम्मू में थी, और उसके बाद 2250 था जो मेरे को फरीदाबाद में जो फर्स्ट सैलरी थी, 2250 रुपीज़ थी जिससे हमने स्टार्ट किया. आज ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छा, सब चीज़ें अच्छी हैं. तो मेरा सबके लिए यही है कि स्टार्ट आपको करना है, कहीं से भी स्टार्ट करिए. डू नॉट लुक कि आज क्या मिल रहा है. आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली आगे जाएंगे. आप किसी भी कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को अगर आप अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे, अगर आप एफर्ट्स डाल के काम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर एरिया में. जो हमारी बाउंडिंग और आपने सोशल मीडिया का बात किया, डेफिनेटली आई एग्री कि सोशल मीडिया के आने से वो जो पर्सनल बाउंडिंग टच है वो थोड़ा सा कम हो गया है. सो उसके लिए यही है कि जैसे अभी भी हम जैसे हैं, अभी भी मंथ में नहीं, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हम डेली में ही गेट टुगेदर करते हैं जहां हम सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ में डेली हम सब नहीं मिल सकते. सो ठीक है, फ़ोन पे बात हो गया या व्हाट्सएप पे बात हो गया, लेकिन हम मैनेज करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कहीं कुछ रख लें जहां पे हम सब दोबारा मिल जाएं. तो आपको कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा जहां फिजिकल मिलना पड़ेगा, राइट. अब आज की जनरेशन में जो है कि वो फिजिकल टच कम होता जा रहा है, राइट. तो फिजिकल टच को किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले फैमिली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे हमारे टाइम में जब अब भी क्या है कि कम से कम डिनर हम लोग फैमिली साथ ही करते हैं, राइट. तो उस कंसेप्ट से अगर स्टार्ट करें कि फैमिली में सब लोग डिनर साथ में करें, और उस टाइम पे नो मोबाइल कंसेप्ट रखें कि डिनर के टाइम पे मोबाइल साइड पे रख के डिनर कर रहे हैं, तो वहाँ से अब अपने फैमिली में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि जब आप इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं और फ़ोन डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन आपस में होगी कि आज का दिन कैसा रहा, क्या है. तो उसी से ही चीज़ें निकल के आती हैं. तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर हम लेके चलें, और आज की जनरेशन के लिए ये कहना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं. काफ़ी लोगों का ये कहना है कि AI के आने से क्या होगा. सो हम सबका यही मानना है कि एक AI के आने से जॉब की पोजीशनिंग चेंज हो सकती है, स्किल सेट चेंज हो सकता है, लेकिन जॉब ख़त्म नहीं होंगी. इंजीनियर्स की जॉब आज भी है, कल भी रहेगी, फ्यूचर में भी रहेगी. इंजीनियर्स की जॉब नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि AI को जो ड्राइव करेगा वो इंजीनियर्स ही करेंगे, राइट. रोबोटिक्स को जो ड्राइव करेगा वो इंजीनियर्स ही करेंगे. तो जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है, स्किल सेट चेंज हो सकता है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. सो यही मेरा है.
3: तो जैसे कि आपके आपके लाइफ की जर्नी, जैसे कहा कि जॉब खत्म नहीं होंगे, सिर्फ हमको ओपन माइंडेड रहना है, उसके तरफ उस तरीके से देखना है. तो जैसे दूसरी एक बात ऐसी है कि आपके लाइफ के गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या है कि जो सक्सेस पाने के लिए जरूरी है, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या कहना चाहोगे?
5: कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा. जो भी आप काम करें, कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर. अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप कम टेक्निकल स्किल्स के साथ भी अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू उस टेक्निकल स्किल्स को ओवरकम कर सकते हैं. तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़रूरी है आज की डेट में. एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो भी कभी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके लेवल पे एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि अगले को लगे कि हाँ, जो ये बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं. तो ये दो स्किल्स मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है.
3: बहुत बढ़िया. देखिए, ये जो वर्ड्स रहते हैं ये हमारे लिए जरूर रहते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि कैसा है कि एक लाइफ की जर्नी पूरी कंप्लीट करने के बाद जो सामने आता है ना, तो ये जरूरी रहता है. इसलिए तो हम इंटरव्यू जब करते हैं, ज़्यादा पॉडकास्ट करते हैं, तो इसीलिए करते हैं.
9: सी, अभी जब लेक्चर सेशन हो रहा था तो दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स कि इंजीनियर मींस आप बन के क्यों निकल रहे हो. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ 9 to 5 जॉब, राइट. वो तो कोई भी या 12वीं पास या BSc पास भी करता है. नेशन फर्स्ट, वर्क फॉर द नेशन, यू नो, वर्क फॉर द सोसाइटी. थिंक ऑफ यू नो कि हाउ कैन यू एड्रेस द पेन ऑफ द कॉमन एरियाज राइट यू विल बी सक्सेसफुल बिकॉज इंजीनियर विल बी कमिंग आउट विद न्यू इनोवेशंस वंस ही आइडेंटिफाइज the pain area and the you know the what the common man wants so then probably you will be a successful engineer
3: lekin aap kya karte ho aapke personal life mein aap aapki profile kya hai aapka job kya hai ye bhi boli
9: main shuru se defense sector mein raha hu defense ke liye various products जैसे कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हो गए साइबर प्रोडक्ट्स हो गए ड्रोन प्रोडक्ट्स हो गए वो डिफेंस में मेरा काम है
3: तो जैसे आप डिफेंस में हो जैसे कि हमने भी वीपी सुब्रमण्यन सर का इंटरव्यू किया तो एयरफोर्स में आई थिंक ग्रुप कैप्टन है वो जैसे कि मराठवाड़ा है तबका उस्मानाबाद है आपका धाराशिव है जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट है जो काफ़ी विलेज से आते हैं क्योंकि आप तो तब नॉर्थ से या पूरे साउथ से भी बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र आते थे लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से यहाँ उस्मानाबाद धाराशिव डिस्ट्रिक्ट होगा लातूर डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ नियर बाई के ज़्यादा स्टूडेंट है तो जैसे आप डिफेंस में काम करते हो सर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए उनको क्या किस तरीके से अपने स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए
9: आई डोंट थिंक एनी एक्स्ट्रा यू नो स्किल्स आर रिक्वायर्ड द ओनली थिंग इज इट इज योर एक्विपमेंट राइट यू आर एन इंजीनियर कोई भी इंजीनियर है ही नोज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस राइट सो द ओनली थिंग इज यू नीड टू वर्क अराउंड योर स्ट्रेंथ्स फॉरगेट अबाउट योर वीकनेसेस ट्राई टू ओवरकम दोज वीकनेसेस आई वुड से और यू नो यू गेट योर ओन आइडियाज़ यार जब आप इंजीनियर व्हाट आर इंजीनियर्स इंजीनियर्स आर पर्सन हैविंग न्यू आइडियाज सो देर इज़ नो एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड टू गिव यू आइडियाज इंजीनियर अपने आइडियाज़ खुद बनाता है दैट इज़ व्हाई ही इज़ एन इंजीनियर दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट
3: तर मित्रांनो बघा आता संदीप सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की आपल्याला स्वतःचं कौशल्य ओळखणं खूप गरजेचं आहे तो विनय जी आपसे मैं बात करना चाहूंगा की जैसे संदीप सरने जे कहा ये संदीप सरने दोनों ने भी कहा तो आपका क्या कहना है कि आपका प्रोफाइल क्या है और आज के स्टूडेंट को जो 38th ईयर का बहुत सारा वक्त इसमें गया है तो काफ़ी चेंजेस आ गए सिलेबस में चेंजेस आ गए होंगे पढ़ाई के फील्ड में चेंजेस आ गए होंगे जैसे कि लेक्चरर आप खुद प्रैक्टिकली किया करते थे लाइब्रेरी में और लैबोरेटरी में जाके भी बैठा करते थे लेकिन आजकल कैसा हाथ में स्मार्टफोन आने की वजह से फिजिकली क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट कम दिखाई देते हैं तो आप इस पूरे जर्नी को आपके जर्नी के और आपके प्रोफाइल को भी इसको कैसा मैच करना चाहेंगे
6: मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि पहले जो चीज़ें थी आज की जो सुविधाएं हैं वो अलग हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा अपने आप को एडजस्ट करना होगा लेकिन अपना एक गोल जीवन में करना क्या चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और जो मैंने जिस फील्ड में सोचा था ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे जाके उसी फील्ड में काम करूँगा तो जहाँ सीखने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ले लेना चाहिए और अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसके खामियाँ हैं उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं तो अगर आपका डेटा लीक हो सकता है आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है तो ऐसी चीज़ें भी हैं लेकिन वो एक तरह से आपका को पायलट है मेन पायलट तो आप ही हैं जैसे आप उसको ड्राइव करेंगे वैसे वो आपको रिजल्ट दे देगा तो इसलिए पता होना चाहिए कि उससे रिजल्ट निकलवाना कैसे है तो ये हम तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर 3-4 साल के बाद चेंज हो रही है तो हम अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं और अभी किसी स्टूडेंट ने क्लास इंटरेक्शन में भी मेरे से पूछा था कि क्या आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जो हमें नहीं करनी चाहिए आगे जाके तो मैंने बोला कि मिस्टेक्स करना बहुत अच्छी बात है मिस्टेक्स करना चाहिए और सेम मिस्टेक अगर बार बार हो रही है तो उसको एड्रेस करना चाहिए हर मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में तो मेरा ये मानना है
3: तो आप क्या करते हो
6: मैं अभी मिस्टेक्स करता हूँ और इंडस्ट्री बदलती रहती है मैं अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हूँ एक कंपनी है NXP सेमीकंडक्टर्स नोएडा में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी और अभी इससे पहले मैं टेलीकॉम में भी मैंने काम किया फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में भी काम किया और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ को मैंने सीखा
3: तो और एक दूसरी बात ऐसे है कि जैसे आप नॉर्थ से आ गए दिल्ली से आ गए कोई जम्मू से आ गए यहाँ पे पढ़ने के लिए तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको होमसिकनेस बहुत है तो यहाँ से बाहर जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि जितना ग्लोबली चेंज हो रहा है तो हमको चाहिए कि हम हमारे इस चौकट से बाहर निकल सके
6: जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अकेले ही आया था अपना एडमिशन कराने के लिए तो मेरे अंदर भी होमसिकनेस तो थी लेकिन साथ जो मिला इतने अच्छे लोगों का साथ मिला और इनक्रेजमेंट मिला। मुझे पता था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर कुछ टैलेंट है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल एक्टिविटीज़ में कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसमें मुझे इंटरेस्ट आता था, मेरा पैशन था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ वो भी करूँ। और फिर प्रोफेसर्स का कुछ सपोर्ट मिला, उनको पता चला कि ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि एक एनुअल फंक्शन 4.5 घंटे का होता था, उसमें मुझे बोला कि यू विल बी द एंकर ऑफ द शो। वो मेरा काम मेन लोगों को हंसाने का था, तो वो जब मैंने वो किया तो स्टेज प्रेजेंस की वजह से सब लोग मुझे जानने लगे कॉलेज में, और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ती चली गई लोगों से। तो आज भी मेरे से 2 साल जूनियर, मेरे से 2 साल सीनियर, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। रविकांत जी,
4: हाँ जी, विनय हमारे साथ थे, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट भी थे, जनरल सेक्रेटरी, और क्रिकेट कॉमेंट्री बढ़िया करते हैं।
14: अच्छा,
4: आप उसका क्रिकेट कॉमेडी सुनना ही चाहिए आज पॉडकास्ट में।
14: अच्छा,
4: आई थिंक उसका व्यूज भी बहुत आ जाएंगे। देन और एंकर का प्रोग्राम्स के लिए, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, एंड आई थिंक ऑलराउंडर, गाना गाते हैं लवली सॉन्ग्स। आज भी आप सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में भी देखिए, स्मूल है और दूसरा एप्स में है ना, इनके काफी बढ़िया ड्यूएट सॉन्ग्स भी आती है।
14: अच्छा अच्छा,
4: सो दिस इज वन थिंग आई नो मोर अबाउट विनय।
14: अच्छा अच्छा सर,
10: मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या यहाँ लोकल में रहते हैं, क्या ओपन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, आज की दुनिया या दुनिया हमेशा ही ग्लोबल रही है, तो या तो आप ग्लोबल, आप अपने पास यहीं रहेंगे तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बाहर का देश में दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा ना लोकल होना चाहिए ना ग्लोबल होना चाहिए, बेसिकली आपको ग्लोकल होना चाहिए, जो आप ग्लोबली भी देखें क्या हो रहा है, लोकली भी देखें क्या हो रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस लें, और फिर आप अपने को क्यों लिमिट करते हैं कि मेरा यही जगह है। ईश्वर ने बनाया है, सब कुछ आपका है, पूरा जहाँ आपका है, आप जाइए अलग अलग जगह देखिए, अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करिए, अलग अलग एक्सपीरियंस लीजिए, बट हाँ अपनी रूट्स मत भूलिए। जब भी आप कुछ सीखें कुछ हो तो अपने वापस आकर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं कोशिश कीजिए और समाज को कुछ वापस दिया जाए।
14: साथ में ही आप ये बोल दीजिए कि आप क्या करते हो, और जैसे अब्रॉड में कौन आप थे क्या अब्रॉड में? हाँ, तो जो अब्रॉड में ज़्यादा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स पड़ते हैं जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ ईयर, तो पांचवे ईयर से सीधा हम कहीं तो बाहर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ हम बर्फबारी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स आते रहते। तो अब्रॉड जाना आपके ज़माने में कितना ईजी था या हार्ड था, आज के ज़माने में कितना ईजी या हार्ड है, ये भी बोल दीजिएगा।
10: सर देखिए, मेरा ऑब्वियसली काफ़ी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मुझे अब्रॉड जाना है। जब मैं करके निकला था तो मैंने इंडिया में ही जॉब किया था, 92 से 2000 तक थे, तो जो भी कुछ सीखा उसके बाद वो काम आया। जब हम 2000 में मैंने जॉब चेंज किया तो मैंने HCL से विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में ज्वाइन किया था, और वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला कि आपको डोमेस्टिक बिजनेस से ग्लोबल बिजनेस में जाना है। तब मेरा जर्नी शुरू हुई ग्लोबलाइजेशन की, तो मेरा मोस्टली पहले इनिशियली वेस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड, वहाँ मेरा एक्सपोजर था। जो मेरा एक्सपोजर रहा वो US, यूरोप वगैरह रहा, बट मेरा कभी ये नहीं रहा कि मुझे बाहर ही रहना है। तो मैं गया, US भी रहा था, मैं UK में भी रहा कुछ टाइम, बट हमेशा मैं वापस आ गया इंडिया, और बीच में उसके बाद फिर मैं मिडिल ईस्ट भी गया, वहाँ भी कुछ साल रहा, बट हमेशा मेरे को यह रहा कि नहीं मुझे वापस आना है। तो जहाँ भी एक्सपोजर मिला मैंने वहाँ काम किया, अपने को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मुझे इस जगह पर रहना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, ये काम करना है। जस्ट जो मिल रहा है, जो विन के साथ चल रहा है, जस्ट फ्लो विद द विंड, एंड उसके बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अलग अलग टेक्निकली आप सीखते हो एज वेल एज पर्सनली सीखते हो, अलग अलग कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और ये समझ में आया कि हर कल्चर के लिए पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड्स हैं, और हर एक की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, या कहीं और कुछ हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। इवन आप देखेंगे कि यहाँ हम बैठे हैं धाराशिव में, यहाँ से अगर 400 किलोमीटर दूर चले जाएं महाराष्ट्र के अंदर ही, तो कुछ चीज़ें कल्चरली चेंज हो जाती हैं, बट वो वहाँ की एनवायरनमेंट और कंडीशंस के हिसाब से होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ सही है या गलत है, हर जगह सब कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से अडॉप्ट की जाती हैं। तो मैं ये तो यही कहूँगा कि आज भी जब आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने को ना तो रेस्ट्रिक्ट करिए, ना कभी आप ये सोचिए कि कुछ आपको जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स ऑब्वियसली आप काम करो उसके ऊपर, बट आपको ये सोचो कि नहीं मिला तो नहीं, कुछ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता, आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो जैसे मुझे रास्ते मिलते चले गए, आप सोचें ना सोचें, जब आप उसके करीब पहुँचते हैं तब आप सोचने लगते हैं कि अब मैं ऐसा कर लेता हूँ या ये प्लान कर लेता हूँ, बट उसके लिए कुछ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि अगर उस रास्ते पर जाना आपको दिखाई दे रहा है लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, कोई आपको लेकर नहीं जाएगा। तो वो एफर्ट्स करते रहिए, सीखते रहिए कंसिस्टेंटली, जो आपको मिलता है आप उससे गाइडेंस लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, और मैंने तो कई बार अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो मुझसे जूनियर्स हैं या जो मुझसे छोटे हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सीखने के लिए तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, अपनों से, बड़ों से, अपनों के बराबर वालों से, और अपने नीचे वालों से भी जो आपसे छोटे हैं, तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप लर्निंग करते रहेंगे। अपना विजन क्लियर रखिए आपको क्या करना है, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि नहीं मुझे 5 साल बाद बाहर ही जाना है, तो एफर्ट करिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और आज की डेट में तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके एल्यूमिनाई नेटवर्क है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और आपको ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी, बट आपको ऑब्वियसली उसके लिए नॉलेज और स्किल्स, वो सब चीज़ें चाहिए होंगी।
14: नहीं नहीं, हम प्रवीण सर से भी, और सर का नाम बोल रहा हूँ, आमन सर से भी बात करेंगे, लेकिन जैसे रविकांत ने कहा था कि आप क्रिकेट कमेंट्री बहुत बढ़िया करते हो और गाने भी गाते हो, तो थोड़ा सा इसमें एक फ्लेवर डाल दीजिएगा, एक तो गाने का या फिर क्रिकेट कमेंट्री का, जो आपके दोस्त कहेंगे। वो
6: एक्चुअली वो फ्लेवर डालने के लिए ना, मतलब वो कुछ एक ऐसी लैंग्वेज भी है जो कि हर किसी को समझ में नहीं आती है, जो हरियाणवी लैंग्वेज है, तो उसका फ्लेवर दोनों का डालते हैं तभी मज़ा आता है उसमें। तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कमेंट्री, जिस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया में लाइव टेलीकास्ट नया नया आया था, तो हम लोगों को बहुत क्रेज़ हुआ था कि ये कितना ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं, तो हमें इसका सीखना चाहिए। मैं नकल करना शुरू किया उनकी। तो बेंसन एंड हेजिस कप एक हुआ था जिसमें रवि शास्त्री को टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो उनको ऑडी कार मिली थी, तब से वो अट्रैक्शन आया था। और यन चैपल वहाँ पे अभी उन्होंने माइक लिया है रिची बेनॉट से, तो मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है, कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सो थैंक्स रिची, कंडीशंस परफेक्ट, दिस मेलबर्न क्राउड इज रियली परफेक्ट, इंडिया प्ले न्यूजीलैंड द सेमीफाइनल्स ऑफ द बेंसन हेजिस कप बीइंग प्लेड हियर टुनाइट, परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट आउटफील्ड, एंड द न्यूज इज दैट इंडियन कैप्टन केपल डेविस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल, एंड केपल डेविस फॉर द फर्स्ट टाइम टू न्यूजीलैंड कैप्टन जॉन राइट, नाइस रिप्ली पेट क्वाटली इन द कवर स्टेट टू रवि शास्त्री, शास्त्री पिक्स इट अप एंड रिटर्न्स टू केपल डेविस, केपल डेविस फॉर द सेकंड टाइम एट अ ब्यूटीफुल यॉर्कर, एंड जॉन राइट्स मिडल स्टंप इज नॉक डाउन द ग्रैंड, बट अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर इंडिया, न्यूजीलैंड स्ट्रगलिंग नॉट फॉर वन, एंड फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ कमेंट्री इट्स ओवर टू Tony Greig. Well, thank you, Ian. What a fine performance. What a brilliant performance. Kapil Dev is a brilliant kicker. He's been falling all the way. And Krishna Machari, Srikanth. Three consecutive sixes of Roger Harper in the last match. And these two have been the heroes of the day. And further description of commentary, it's over to Ben Laurie. Well, thank you, Tony Greig. Well, Pletcher and Sharman. Well, Ravi Shastri. These two have been the heroes of the day. So, yeah, the Australian style of cricket. Ab India mein ek gaon hai, Haryana. में वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें थोड़ी वैरायटी कैसे आती है, कमेंट्री उनके स्टाइल में कैसे होती है। वहाँ पे मिस्टर कमेंटेटर जो हैं उनका नाम है मिस्टर मोलर, और हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं तावरसाल सिंह जी, और गांव लाखन माजरा और गांव कलावड़ के बीच में मैच हो रहा है, तो ओवर टू मिस्टर मोलर। तो गांव लाखन माजरा मोलर बोलने लग रहे हैं, और यू मैच गांव लाखन माजरा और गांव कलाड़ा के बीच छोड़ लग रहा है भाई। सबसे पहले मोटे बिट्टी मास्टर ने अपनी जेब में तो खुटी चोर निकाल दिया और टॉस करने लग गया भाई, और टॉस जीत गया भाई लाखन माजरा। लाखन माजरा पहले बैटिंग करेगा, लाखन हरिजी की तरफ से आ रहे हैं भाई भरतू और कालू दर्जी का छोरा, या पैरों के पलस्तर बांधे और हाथा में कपड़े धोने की मोगरी ठाए आने लग रहे हैं भाई, और भाई मैदान का मुआयना कर ले, मैदान में 6 खूटे गढ़ रहे हैं, 3 न्यूंगने और 3 न्यूंगने, और इन खूटे के पीछे जो छोरा बैठा है ना वो स्त्रियाँ बैठा है जना गाय भरता हो, और भाई नायिका चला नायिका गेंद करेगा पहले, और भाई पजामे गेंद में रगड़ने लग रहा है खाजली कुतिया की ढाल, और नायिका चला भाई आंख बीच के दांत बीच का, उसने बॉल फेंक के मारी सारा भाई गणेश जोर का शॉट मार दिया भाई, इतनी देर में विकेट के पीछे खड़े छोरे के पास गेंद आई, छोरे 2 चक्कर काट के तो 2 रन बिना किसी नुकसान के, और भाई नायिका फिर चला आंख बीच के दांत बीच का, उसने बॉल फेंक के मारी सारे भाई छक्का, अरे भाई धाड़ी आंख लगवा ले छक्का ना से चौका से, अरे भाई क्यों झगड़ा करे है बीच बिचाड़ा कर लेना, तेरी न मेरी ये पंजा से 7 रन बिना किसी नुकसान के, और भाई ये जो शॉट था इस पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर तौर साल सिंह जी के एक्सपर्ट कमेंट्स, अरे भाई यो के क्रिकेट, क्रिकेट तो हमारे जमाने में होया करते, एक बार मैंने 5 सैकड़े मार दिए, 2 घंटे में आउट ही ना होया, तो सरकार मैंने विदेश भेजने लगी इंग्लैंड, पर तेरी ताई ने सारा नाश मार दिया, कहने लगी कि डांगरा का दाना पानी कौन करेगा भाई, पशुओं का भी ख्याल रखना था तो इंडिया में ही रह गए भाई, और अब खिलाड़ियों की लासी पीने का टाइम हो गया भाई, मैदान का मुआयना कर ले, मैच फिर शुरू होने लग गया, नीलू सत्तू बाने नानू और बेरण के भाई चाले और नायका चाले भाई, और आंख मीच के दांत बीच के बॉल फेंक के मारी सारे फूट गया भाई, अरे भाई भरतू का खोपड़ा फूट गया भाई, अरे मैदान में 3-4 लुगाई आने लग रही हैं, जिनमें एक भरतू की लुगाई भी सर वो जूती लेके नायका के पीछे भाजने लग रही है भाई, और नायका आगे जूती पीछे भाई फेंक के मार दी जूती, और नायका बैठ गया भाई मोटे पिट्टी मास्टर के भाज गई भाई, अरे भाई भाज लो अड़ते तो जूत भाज गया भाई, मैच समाप्त।
14: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मैंने तो ऐसा पहली बार सुना, लेकिन वो जो पहले आपने मिमिक किया था वो इयान चापल का, और वो तो बहुत बढ़िया लगा सही। तो प्रवीण सर के पास आप जाना चाहूँगा कि प्रवीण सर आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या करते हो, जैसे मैंने सवाल संदीप सर से भी किया था वैसे आप इसके अंदर सब स्टूडेंट आने वाले स्टूडेंट को भी क्या क्या गाइडेंस करना चाहोगे, और साथ में आपकी जो 38th ईयर की जर्नी वो भी हमें थोड़ा सा एक आप बोल दीजिएगा।
7: स्टार्टेड मतलब मैंने अपनी जर्नी 92 में मुझे ज़बरदस्ती किसी कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया गया, मैंने इसलिए कि मैं काम नहीं करना चाहता था, एक साल आई वांट टू एंजॉय, मतलब कि 4 साल की बहुत तपस्या कर ली हमने उस्मानाबाद में, आई डोंट वांट टू वर्क, तो घर वालों ने ज़बरदस्ती तू जाके देख ले भाई ठीक लगे, तो स्टार्टेड जैसे संदीप ने कहा उस समय मेरी 2800 रुपये पे सैलरी लगी थी, आई वो स्टार्टेड विद हनीवेल, हनीवेल इज US एंड जापान बेस्ड कंपनी, फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट, फिर चेरी एक अलग कंपनी आई, फिर सैमसंग आई वर्क फॉर 6 ईयर, 2009 आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस विद माई एक्सपीरियंस इन टू LED बिजनेस, LED जितनी आज आप देख रहे हैं उस समय ये लाइटें नहीं हुआ करती थी, ये इकोसिस्टम लाए हम, और पीपल वर थिंकिंग ओनली ऑफ लाइट अमिटिंग डायोड जो इंडिकेशन में लगते थे, तो ये हमने इको स्ट्रीट लाइट ये सब डिज़ाइनिंग किया हमने और इंडस्ट्री को सिखाया, बट मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस सेमीकंडक्टर में था, द क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की नीचे आने लगी तो हम सेमीकंडक्टर में, बिकॉज हम उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करते थे जिस पे टेक्निकल एस्पेक्ट हो, इस बिजनेस में वो लोग आ गए जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, तो हम आई स्टार्टेड विद माय जॉब अर्निंग, तो मेरे पास फंड्स एक लिमिटेड थे, तो ग्रेजुअली जर्नी स्टार्ट एंड फिर हम सेमीकंडक्टर में आए, आज वी आर डूइंग, टुडे वी आर ए 50 करोड़ कंपनी एंड वी हैव 40 पीपल वर्किंग विद अस, so we are into more into designing and semiconductor training, but जैसे इन सब ने बोला मैं ये कहूँगा कि important learning तो हमेशा कभी stop नहीं होती, it should not stop, but learning is not the end, implementation should be there, हम लोग जो मैंने जर्नी में देखा बहुत लोगों को इतना ज्ञान है, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, मतलब उनको मैं घंटों बैठा दूं तो वो किसी भी सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर सकते, तो हमारे जहाँ जो बच्चे और जो कनेक्ट नहीं हो पाते, और मैं जैसे चाइना और मैं मेरा भी छोटा मोटा एक्सपोजर है ज़्यादा नहीं, बट मैंने जो देखा इंडस्ट्री चाइना इंडस्ट्री में द डिसकनेक्ट इज कि वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट, जितनी भी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्ट ऑफ देयर जैसे कंपनीज हैं उनको हर साल प्रोजेक्ट देना ही देना है, वॉट एवर द मुझे पता नहीं उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे देती है या क्या देती है, तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे करता है विद देयर प्रोफेसर्स दे लर्न मच बेटर, हमारे यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं जब हम निकले, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी की बात क्यों कहूँ, जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि ये कंपोनेंट का काम मतलब दिखता कैसे है, काम तो पता था, आई नो द सिंबल्स डिजाइनिंग, कि इस प्रोडक्ट को मैं कैपेसिटर बोलूं, इसको ट्रांजिस्टर बोलूं, इसको मतलब कैपेसिटर तो थोड़ा बहुत आइडिया, मतलब कैपेसिटर 5 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, पॉलीमर कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर, सो मेनी कैपेसिटर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द, मतलब जो इस फील्ड में नहीं है आज भी हमारे में से बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को, तो कनेक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर द इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस कि उनको कनेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स लेके आए इंडस्ट्री से और कनेक्ट करें, बस थैंक यू सो मच।
14: प्रवीण सर, जैसे आपने कहा कि आप लगभग एक 40 लोगों की टीम जो है उसको लीड करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो आज के स्टूडेंट है उनके तरफ से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उनके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से आप उनको चूज करोगे आपके कंपनी में काम करने के लिए?
7: आज की डेट में जो मैं IIT और NIT की बात है, आज की डेट में हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये कितने टाइम में सीख पाएगा। आज की डेट में हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि एक साल के अंदर ये हमें कुछ रिटर्न दे पाएगा। देर इज़ नो ORI ऑन फ्रॉम द न्यू इंजीनियर, हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री।
14: कितने कम वक्त में वो सीख सकता है?
7: व्हाट इज द सिंसियरिटी लेवल ही हैज टू लर्न द थिंग्स, लर्न एंड इम्प्लीमेंट। मैंने उसको बता दिया बट उसने उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो यू नो वो लर्निंग क्या रही।
14: तो अमन सर, आप क्या करते हो ये बोलिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन किए थे बस उसी के मैं इसे आंसर चाहूँगा आपका भी।
11: वाई इंजीनियर्स, एक्चुअली हमारे स्टेट में, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एक ही मोटिव था कि हम लोग इंजीनियर बन के, टैग था कि इंजीनियर बनने से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हम, ये था हमारा बोटी। तो इसलिए हम लोग सारे भीड़ चाल होती ना, एक बंदा गया उसके पीछे दूसरे बंदे चले गए, हमारा भी ऐसी था सिस्टम।

0: दैट 2 ईयर्स 10 मंथ्स मैं वहाँ रहा जॉब की, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। तो इंडिया वापस आने का मेरी पहली जॉब थी पटनी कंप्यूटर्स एज ए कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर। तो मेरी सैलरी थी 3300 क्योंकि मेरे साथ एक टैग लगा होता, मेरे एक जापान का टैग लगा होता फुजित्सु कंपनी का, उसके रिगार्डिंग मेरा इतनी जॉब मिल गई। चलता रहा, उसके बाद 5 और 6 ईयर काम किया, फिर मैंने एचसीएल इंफोर्स सिस्टम ज्वाइन की एज ए इंजीनियर, फिर मैंने वो छोड़ दी। उसके बाद मैं बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस बंद कर दिया। अभी मैं एक कंपनी के साथ, नोएडा की कंपनी रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज, उसमें एक डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं थ्रू जेम पोर्टल के थ्रू टेंडरिंग करके वीडिंग करके हम उससे पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी उनके सप्लाई ऑर्डर होते हैं हम उसको करते हैं।
1: जैसे आप नोएडा कंपनी में अभी आप ज्वाइनिंग किए हो, तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस वक्त फिजिकली क्लासेस अटेंड किया करते थे, लेबोरेटरी में जाया करते थे, लाइब्रेरी में जाया करते थे, पढ़ाई का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है अब, तो उसके हिसाब से आजकल के स्टूडेंट में, आज की जो जनरेशन है उनके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, क्योंकि इतना पेशेंट भी नहीं है, उनको बहुत जल्दी सक्सेस भी चाहिए, बहुत जल्दी बाहर भी जाना है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्ट्रगल कितना गहरा रहता है और कितना हमको उसके अंदर जाना चाहिए, ये मैं पूछना।
0: स्ट्रगल तो बहुत किया था क्योंकि उस समय बुक्स पे डिपेंडेंट थे, लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स लेते थे। आज की डेट में बिल्कुल स्नैरियो चेंज हो गया है, सबके पास मोबाइल्स आ गए हैं, मोबाइल्स पे इंट्रैक्शन करते हैं वो। लाइब्रेरी में कोई भी स्टूडेंट अभी जाता नहीं आज की डेट में, सिर्फ मोबाइल से ही वो लोग सारे रीड करते हैं। तो हमारे ज़माने में उस समय नहीं था। जो सोशल मीडिया में मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी रविकांत के थ्रू, मिस्टर रविकांत के थ्रू, मेरे विनेद बारद्वाज से, ये 2000 कितने की बात है, 18th की बात होगी, 2018 जो मेरे आपसे पहले इंटरेक्शन हुई थी, मैंने फर्स्ट इंटरेक्शन मेरी सोशल मीडिया के थ्रू विनेद बारद्वाज से। तो मैं दिल्ली में रहूँ, मैं वही स्टूडेंट से ये है कि आप मेहनत करो है। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का मेरा एक वो है कि ड्रीम्स सपने लो, सपने वो नहीं तो जो लोग देखते हैं, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। तो ड्रीम लेना चाहिए, स्टडी करो, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज की कोई एज नहीं होती है, यू कैन लर्न।
2: सर ए अंबाला के पास शाहबाद करके टाउन में रहते हैं, दिल्ली में भी इसका होम टाउन है। तो इनका खुद का एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, सो साइबर सिक्योरिटी कंपनी का एक फाउंडर या को फाउंडर है और उसी गवर्नमेंट रिलेटेड सम अदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आई थिंक उनके होम टाउन शाहबाद में भी एक स्कूल है जहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड बेसिकली मल्टीटास्किंग भी करते हैं, सो मल्टीटास्किंग भी करते हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। सो अभी मन्नू इज वन पर्सन हु वॉन्ट्स टू रिमेन अलूफ, थोड़ा इंट्रैक्शन में थोड़ा कम होना चाहते, फोटोग्राफ लेगा तो हालात खराब होगी और उसमें से स्पॉटलाइट से बाहर आना चाहते हैं। ये नेगेटिव नहीं है बट इनका एक शायद
3: दूर है थोड़ा,
2: हाँ, लेकिन बेसिकली इनका एक व्यू पॉइंट है कि मैं स्पॉटलाइट में क्यों आऊँ, ये साइलेंट स्पेक्टेटर है लेकिन आसमान में चलते रहते हैं।
3: जी जी जी,
2: ये मेरा जब भी मैं इनसे मिलता हूँ दिल्ली में, सर जब भी मैं दिल्ली में चलता हूँ मैं इतना समझता हूँ कि एक तो पर्सनली मुझे एंटरटेन करते हैं कहीं भी, एक अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं भी, वॉटर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं इतना समझता हूँ कि देखिए कुछ सक्सेसफुल पीपल जैसे बिल गेट्स सब है, दे डू थिंग्स साइलेंटली, सो आई सी हिम एज वन अमोंग देम बेसिकली। सो साइलेंटली ही डजंट वॉन्ट टू कम इन टू द स्पॉटलाइट सेइंग आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी, द कंपनी स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ, मैन बिहाइंड द सीन इज मन्नू कालरा। दिस ए मेरा व्यू पॉइंट है, बातें कम करते हैं लेकिन वो ग्लोबल नॉलेज अच्छा है इनके पास, सो ये मेरा व्यू पॉइंट है। अभी आई डोंट नो हाउ मच मुझे क्रिटिसाइज करेगा लेकिन ए, मुझे लगा यही बोलना सही है। व्हाट डू यू से?
4: सर आई से नथिंग।
2: ओके,
1: तो मन्नू जी जो है वैसे मैं चाहूँगा उनका 1-to-1 इंटरव्यू करूँ ताकि जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं उनसे बात करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
2: एक एग्जांपल था जब हम 80s में जब इंजीनियरिंग के लिए सर्च करें, क्योंकि सब लोग 12th स्टैंडर्ड और सब ग्रेजुएट हो गए, सबके एस्पिरेशंस थे कि टॉप कॉलेजेस में जाए, बिट्स पिलानी, IIT, REC, दोस्तों तीनों का ब्रांड नेम्स थे उस समय। प्राइवेट कॉलेजेस तो थे बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि ज़्यादा लोग की जानकारी हो। मैं चेन्नई से, उस समय चेन्नई में मेरा 12th स्टैंडर्ड हो गया बेसिकली, मैं IIT

0: पढ़ा लेकिन फ्लंक किया क्योंकि उसका स्पेशल कोचिंग लिया। बिट्स पिलानी 3% से मेरा मार्क्स कम हो गए कट ऑफ में, सो फ्रस्ट्रेशन हो गया। वहाँ एक पंजाबी कॉलेज था चेन्नई में कॉल गुरु नानक कॉलेज, उसमें मुझे BSc एडमिशन मिला फिजिक्स में। एक दिन गया कैंपस में, पता नहीं कहीं से एक स्मॉल अपना चेयरमैन पदम सिंह पाटिल उस्मानाबाद करके एक जगह इतना बढ़िया बूस्ट किया, एक स्मॉल कैप्शन ऑफ एडवर्टाइज पूरा इंडिया स्प्रेड कर लिया कि वी डू नॉट टेक कैपिटेशन और डोनेशन फीस, सेलेक्टेड टू मेरिट और वी कम विथ फीस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। मेरे फादर ने देखा था ये पेपर, मेरे बिना नॉलेज उन्होंने अप्लाई किया था, और बाद में आई थिंक 1 week's टाइम उनको टेलीग्राम आया सन सेलेक्ट, क्योंकि हमने जेरोक्स कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो सेलेक्टेड टू मेरिट प्लीज़ कम विथ फीस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। अभी ही वॉज सरप्राइज बिकॉज उस समय गेटिंग एन इंजीनियरिंग सीट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, किसी ने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेशन। तो मेरे पापा भी मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैं एक डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज में एक कॉलेज में पढ़ रहा जो BSc ज्वाइन किया था, रवि तुमको एक इंजीनियरिंग सीट मिल गया, क्योंकि वहाँ चेन्नई में कैपिटेशन फी 80,000 rupees उस समय, मेरे पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यू कुड नॉट एफोर्ड। मैंने बोला आप डोंट वेस्ट मनी ऑन मी, तो और इधर बोला कम विथ फीस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फीस था अराउंड 8,500 समथिंग लाइक दैट। तो हाँ इसमें क्या है, मेरा पापा का एक सेक्रेटरी उसका भाई इस कॉलेज में मेरा सीनियर था, तो उसने बोला सर विच प्लेस सर, उस्मानाबाद, माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग देर। तो मैं पापा बोले चलो मिल लेते हैं उनसे, उनका नाम था सैमुअल रॉबर्ट ज्ञानमुतु, चेन्नई से था, 86 बैच का था, तो सैमुअल रॉबर्ट ज्ञानमुतु, तो उस शाम को उससे मिले थे हम। तो मैंने उसको पूछा ए सर, मैंने इसको पूछा व्हाट इज़ दिस कैंपस, क्या कैंपस के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। वो बोला दिस कैंपस इज स्प्रेड इन 210 acres। तब मैंने एक्चुअली बिट्स पिलानी का ब्रोशर देखा तो 180 acres लिखा, मैंने सोचा तो बिट्स पिलानी से बहुत बढ़िया कैंपस। पापा डैडी लेट्स गो, आई थिंक दिस इज बिगर देन बिट्स, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने खुद बोला। और बाद में नेक्स्ट डे सोलापुर का ट्रेन पकड़ लिया या आगे, एक्चुअली ST बस स्टैंड में हमने ड्राइवर और कंडक्टर को बोला उस्मानाबाद इन सिटी से थोड़ा आगे हमको रुकवा दो, तो या हाईवे में रुकवा दिया। हम नीचे देखा तो हम सोचा कहीं बोर्ड और कैंपस और एंट्रेंस होगा, कुछ भी नहीं दिखाया, खाली हरियाली, बारिश और एक कैटल जा रहे थे वो आदमी लेके जा। मैंने बोला भैया इधर एक इंजीनियरिंग कॉलेज किधर है, उसने वो बिल्डिंग दिखाया वो कॉलेज है। मैंने बोला वो कॉलेज है, मुझे तो ऐसे नहीं लगा बेसिकली, मतलब एक साइड मौसम देख के बड़ा खुश हो गया लेकिन कैंपस देख के मैं सोचा इसको कॉलेज कैसे बोलते। तो उस समय सैम भी इधर आया था, आपने बोला 210 acres, हाँ दिस एंटायर जंगल कॉलेज का ही कैंपस है, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड अ कॉलेज, उसने बोला। तो ये अच्छी बात है, बट जब मैं कैंपस में एंटर किया देखा हमारे मेरे जैसे सब लोग फ्रेशर्स एडमिशन्स हो रही थी और सब लोग अपना एनरोलमेंट कर रहे थे, तो एक न्यू एटमोसफेयर, न्यू एनवायरमेंट हो गया। मेरे पापा बोले तुम 4 साल पढ़ाई करोगे, मैं बोला यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको मजबूर नहीं करना चाहते थे, मैं फॉर वॉट एवर रीजन्स बेस्ट नोन, सो फाइनेंशियली वॉट एवर में भी, तो मैंने बोला ओके ठीक है जैसा आप बोलते हैं। ओल्ड हॉस्टल में एडमिशन हो गया मेरा, और उसी दिन से मेरा न्यू सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो गया। फर्स्ट टाइम मैं मेरे नेबर्स जम्मू थे, पंजाब थे, हरियाणा थे, साउथ में थे, सब जगह, तो एक इट्स अ न्यू बिगिनिंग था बेसिकली। लेकिन हमने यही सोचा 4 साल यहाँ कैसे रहेंगे जब तक हम यहाँ रहे थे, बट किसी हालत में 4 साल या 5 साल हम डिग्री ख़त्म करके बेसिकली गए। जब हम यहाँ रहते थे हम यहाँ से कैसे निकलेंगे सोचे, बट हम यहाँ से जाने के बाद हम हमेशा सोचते थे 4 साल इधर बीते हमें वापस आना है। मैं अभी डिग्री होने के बाद भी आई थिंक दिस इज माई 3rd or 4th विजिट टू द कैंपस। सो द ग्रेटनेस अबाउट दिस प्लेस इज कि पदम सिंह पाटिल बूस्टेड दिस प्लेस विच वॉज अननोन टू मेनी ऑफ अस, प्लेस कॉल्ड उस्मानाबाद which makes us to think about this even today after 4 decades, you know, यही बात है।
1: आमन सर कुछ तो बात करना चाहो।
2: सर जब हम एक इसके ऐड आती थी कॉलेज इंजीनियर उस्मानाबाद की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हाँ उसी ऐड को देखे कल मैं यस्टरडे यहाँ पर 5:30 को पहुँच गया, क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन जो 36 years के बाद आ रहा था हमारे ग्रुप से, आज के ग्रुप में। तो मैंने जैसे पहुँचा होटल में अपना सामान रखा, वो मैंने एक ऑटो हायर किया, कि जहाँ हम लोग रहते थे उसको देख लें। तो सारा घूम लिया पर मेरे को कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ मैं कहाँ पे हूँ, क्या चीज़ें, एवरीथिंग चेंज। अच्छा लगा, एक्सप्लोर किया।
1: तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट इस पे जाना चाहूँगा, जैसे कि हमने बहुत सारी बातचीत की है कि आप क्या काम करते हो, आपने कैसे कैसे आपकी जर्नी ये की, लेकिन उस टाइम जैसे आप एंकरिंग ज़्यादा किया करते थे प्रोग्राम में बहुत सारे, तो आप मूवी कौन से देखा करते थे, जैसे वहाँ पे आप गर्ल्स भी ज़्यादा नहीं थी कॉलेज में, लेकिन फिर आपने कैसे सर्वाइव किया तो कैसे सर्वाइव किया, तो सबके तरफ से आप ही बोल दीजिएगा। और ये सब बाकी कैसे लोग मतलब एंजॉय किया करते थे, मूवीज़ कैसे देखा किया करते थे, आजकल तो कैसे कंप्यूटर मोबाइल में भी देखते हैं, लेकिन उस वक्त कैसे मूवी देखने जाया करते थे, और आपको खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या किया करते थे। और जैसे आप सब दोस्त यहाँ पे एक साथ मिल गए तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा पहला गाना चल गया कि उस ज़माने की याद दिला दी आपको, कि ऐसा कौन सा, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो हमका हमारे दिमाग में एक बिल्कुल गाना आ जाता है उस वक्त का। अगर मैं मेरे स्कूल के पीरियड में जाऊंगा 1990 के जमाने में तो मुझे वो गाने याद आ जाएंगे। तो वैसे आपको कौन सा गाना यहाँ पे आने के बाद दिमाग में आ गया, आपके जर्नी को भी वो डिफाइन कर सके, तो इस तरीके से कुछ तो बोलिए विनय जी।
3: हमारे टाइम में एक मूवी आई थी तो उसमें जो गाना था, मतलब रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग गाया करते थे, तो वो गाना मैं थोड़ा सा गा के बताता हूँ आपको।
4: सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
1: तर ॲडवोकेट मनीष वाघमारे जी, आपण ह्या सर्व आत्ताच्या इंटरव्ह्यूला, खरं तर मला हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो 1-to-1 करता आला असता तर खूप मला अजून जर्नी घेता आली असती यांची सगळ्यांचीच, पण एनी वे आता कारण 38 वर्षानंतर तुम्ही पहिल्यांदा आप सभी यहाँ पे आहे 36-38 इयर के बाद, आगे न जाने कब मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे कभी इधर तो हम 1-to-1 फिर से एक बार सब एक्सपीरियंस हम करेंगे। लेकिन ॲडवोकेट मनीष वाघमारे जे आहे ते यांच्या सर्वांच्या सोबत इथं राहिलेले आहेत त्यावेळेसच्या, तर त्यावेळेसच्या तुम्ही थोड्याशा आठवणी पण सांगा आणि ह्या सर्व जर्नीला कन्क्लूड करा।
5: रिस्पेक्टेड डॉक्टर पदमसिंह पाटील साहेब ने जो कॉलेज यहाँ पे चालू किया तो उसके वजह से उस्मानाबाद का बहुत ही डेवलपमेंट हो गया, और वो टाइम पे जब बाहर से ज़्यादा आउटसाइडर स्टूडेंट थे तो यहाँ पे माहौल ऐसा था कि भाई सब एक अपने फैमिली मेंबर जैसे हम काम करते थे, एज अ लोकल बोल के थोड़ा सा हमारा डिमांड था कि भाई आप लोकल है तो थोड़ा सा ये भी था, लेकिन उसका हमने कभी मिसयूज़ नहीं करके लिया। और जो यहाँ पे डेवलपमेंट उस्मान का हो गया वो टाइम उस्मान था तो ये उस्मान के लिए अच्छा है। और दूसरी बात कि आज जो मौका मिला यहाँ पे आके कॉलेज में आके बात करने का कि भाई मैं बहुत इमोशनल हो गया कि भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि भाई यहाँ पे जो पहले माहौल था कॉलेज का कि ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, वो तो कुछ जो वीक पॉइंट ऑफ कॉलेज वो तो अंडर डेवलप उस्मानाबाद था वो टाइम, तो अभी तो बहुत ही डेवलप हो गया। और ऐसे ही स्टूडेंट जो कॉलेज एलुमनी यहाँ पे कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, जो कि कॉलेज के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है। ये बोलो।
1: थैंक यू सर्वांचा।

0: तो आज के प्रोग्राम में हमने इन सभी का इंटरव्यू सुना। मिस्टर विनय भारद्वाज जो प्रिंसिपल इंजीनियर है NXP सेमीकंडक्टर्स नेदरलैंड, इनके साथ है मन्नू कालरा जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है और फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी में काम किया करते हैं, 1980T बैच के हैं, CSE बैच के हैं। उनके साथ है मिस्टर वी रविकांत जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड अलायंस पार्टनर है ज़ायोरा इनोवेशंस बेंगलुरु के, ये भी 1988 के CSE बैच के हैं। इनके साथ है मिस्टर संदीप गुप्ता जो डायरेक्टर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजर है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के, वो दिल्ली से है और USA ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं 1988 CSE बैच के। इनके साथ है मिस्टर प्रवीण महाजन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मैनेजर की ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो 1988 CSE बैच के हैं। मिस्टर संदीप लाहुटी जी है जो चीफ सेल्स ऑफिसर है जुलू डिफेंस के बैच 1988 CSE के, और इनके साथ है मिस्टर अमन सांगरा जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज नोएडा नेहरू पैलेस बैच 1988 ETC के।
1: आपल्या भावना आणि कल्पना व्यक्त करतात सुमधुर गीत, त्याचबरोबर विशेष माहिती, मनोरंजन, महिला, शेती आणि दिनविशेष दररोज खास आपल्यासाठी। मनोरंजन आणि माहितीचं दर्पण रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज़।

0: अदा खूब है।
1: मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ।

0: क्या मजाक लगा रखा है, चलना है कि नहीं आपको? आप आती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूं। ये मुसीबत में फंसा दिया। आखिर आप चलती हैं कि नहीं? देखो, पहाड़ उतरना आसान काम नहीं, पांव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या है?
1: मुझे माफ कर दीजिए।
0: माफ किया, चलो
1: ऐसे नहीं, जोर से कहिए।
0: अच्छा बाबा, माफ किया, अब चलो उठो।
1: ऐसे नहीं, पहले प्यार से हाथ पकड़।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हैदराबाद मुक्ति संग्राम। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील धगधगता कालखंड म्हणजे हैदराबाद मुक्ति संग्राम। आणि या मुक्ति संग्रामातील 17 सप्टेंबर 1948 पर्यंतच्या कालावधीतील मराठवाड्यातील अनगिनत स्वातंत्र्य सेनानी, स्वातंत्र्य वीरांगणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, आपलं संपूर्ण अस्तित्व पणाला लावलं। तेव्हा कुठे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर 13 महिन्यांनी हैदराबाद मुक्त होऊन भारतात विलीन झाला, तो दिवस म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948। आज आपण हैदराबाद मुक्ति संग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत। या धगधगत्या संग्रामात आहुती दिलेल्या सर्व स्वातंत्र्य सेनानींना रेडिओ 13च्या वतीने कोटी कोटी प्रणाम। आपल्या बलिदानाचं स्फुरण अनेकांसाठी असेल देशभक्तीचा स्त्रोत आणि देशरक्षणासाठी ठेवेल कार्यप्रवण। हैदराबाद मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाच्या आपल्या सर्वांना मनस्वी शुभेच्छा। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ 13.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।
1: आपली पसंत, आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा आपला रेडिओ 13। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ 13.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।
2: नमस्कार श्रोता हूँ, आज 13 की प्रेरणा इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू। इसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं मिस्टर विनय भारद्वाज, जो प्रिंसिपल इंजीनियर है NXP सेमीकंडक्टर्स नेदरलैंड। इनके साथ है मन्नू कालरा, जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है और फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी में काम किया करते हैं। 1980T बैच के हैं, CSE बैच के हैं। उनके साथ है मिस्टर वी रविकांत, जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड अलायंस पार्टनर है जायोरा इनोवेशंस बेंगलुरु के, ये भी 1988 के CSE बैच के हैं। इनके साथ है मिस्टर संदीप गुप्ता, जो डायरेक्टर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजर है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के। वो दिल्ली से है और USA ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं 1988 CSE बैच के। इनके साथ है मिस्टर प्रवीण महाजन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मैनेजर की ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के, जो 1988 CSE बैच के हैं। मिस्टर संदीप लाहुटी जी है, जो चीफ सेल्स ऑफिसर है जुलू डिफेंस के, बैच 1988 CSE के। और इनके साथ है मिस्टर अमन सांगरा, जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज नोएडा नेहरू पैलेस, बैच 1988 ETC के। तो ये सभी है और ये बेसिकली ये दिल्ली जम्मू से बिलोंग करते हैं। तो आज 13 की प्रेरणा इस प्रोग्राम में हम इनका सबका इंटरव्यू सुनेंगे। नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ 13.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। मित्रांनो, आपण नेहमी 13ची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी 13 अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि त्यानंतर आता आयुष्यामध्ये अशा एका वळणावर असतात, आयुष्याच्या अशा एका टप्प्यावर असतात की ज्या ठिकाणी त्यांचं जे हे यश असतं, त्यांचा जो हा प्रवास असतो तो आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतो। आणि त्याच पद्धतीनं आज आपण या ठिकाणी 1988 म्हणजे खूप वर्ष झालेली आहेत, जवळपास 38 वर्ष झालेली आहेत। तर 38 वर्षापूर्वीची ही जी बॅच आहे ती आज आपल्या या ठिकाणी आलेली आहे आणि रेडिओ 13ला त्यांनी व्हिजिट केलेली आहे। जवळपास आता माझ्यासमोर 7-8-10 स्टुडंट 1988 बॅचचे बसलेले आहेत, खूप चांगल्या चांगल्या क्षेत्रामध्ये ते कार्यरत आहेत आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी आपलं स्वतःचं तर नाव कमावलेलंच आहे, पण त्यासोबत 13 अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचं सुद्धा नाव जे आहे ते खूप मोठं केलेलं आहे। तर अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा आपण जीवन प्रवास जो आहे तो आपण जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम रविकांत यांचा आपण पूर्ण 1 तासाचा पॉडकास्ट ऐकलेलाच होता, पण रविकांत हे सर्वांचं इंट्रोडक्शन करून देतील आणि त्याच्यानंतर मग आपण एकेकांची जर्नी समजून घेऊयात। रविकांत जी, आप सबका इंट्रोडक्शन पहिले करवा की दीजिएगा।
3: तो मेरे बगल में बैठे मिस्टर मन्नू कालरा जी, हम साथ में पढ़े थे 1988 बैच के, आज ये अपना एक साइबर सिक्योरिटी का कंपनी चला रहे दिल्ली में। आगे अमन सांगरा है जो हमारे साथ जम्मू से आया है एंड सेटल्ड इन दिल्ली, बट उनका भी CCTV कैमरा और अदर प्रोकोर बिजनेसेस है नोएडा में भी। मिस्टर पंकज गोयल आई थिंक गल्फ में काम किया, ओमान में, लास्ट ईयर नोएडा आ गया। और हेल्थ केयर कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर है बेसिकली। मिस्टर संदीप लाहोटी जी जो डिफेंस लाइन में था और अभी खुद का अपना एक स्टार्टअप हो रहा है। परवीन महाजन एलईडी का बिजनेस, उनका एक खुद का कंपनी है कोर प्रोडक्ट्स करके, एंड डेफिनेटली इज वेल एस्टैब्लिश एंड अपना बिजनेस एक्सपेंड कर ग्रो हो रहे। मिस्टर विनय भारद्वाज जी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस लेके आ रहे। कैडेंस एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था, अभी आई थिंक ही इज वन ऑफ द सेमीकंडक्टर कंपनीज। मिस्टर संदीप गुप्ता जी अलोबा टेक्नोलॉजीज नोएडा में डायरेक्टर है और आई एम फॉर्चुनेट मैं भी उनके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, कुछ कुछ साथ में काम करता हूँ, सो वी आर टुगेदर। मैं वैसे पिछले बार मिला था, अभी भी मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन था रविकांत, और मैं भी फ्रीलांस कंसल्टिंग करता हूँ 3-4 कंपनियों से। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, हमारे सारे दिल्ली से आए हम सब, और 33 ईयर्स के बाद हम बहुत एक्साइटेड है कैंपस को देख के। और हमारे साथ मैं तो पहले भी आ चुका हूँ तो मैं थोड़ा चेंजेस ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से सब अपने अपने राय बताएंगे कि उनको क्या लग रहा है, मतलब जो जब वे थे यहाँ 4 साल में उनका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद लाइफ जर्नी क्या हुआ है, एंड डेफिनेटली आज वो इधर कैंपस आने के बाद उनको क्या महसूस हो रहा है। तो मैं पहले संदीप को दे
2: दूं। जी संदीप से। जी संदीप सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन करवा के दिया है आप, जैसे कि दिल्ली नोएडा यानी सब नॉर्थ से आए हैं सब आप यहाँ पे 1988 के बाद, शायद आपने 1988 में एडमिशन लिया था पहली बार, आप लगभग उसको 38 ईयर बीत रहे, 38 साल का समय काफ़ी होता है, बहुत काफ़ी होता है, एक दो जनरेशन इसके अंदर निकल के जा सकती है अगर हम 10 ईयर का भी अगर एक देखा जाए तो। तो सबसे पहले आप 38 साल बाद आप सभी के सभी लोग पहली बार आ रहे हो या इसके पहले आए थे?
4: मैं पहली बार आ रहा हूँ 34 ईयर्स के बाद, 1992 में पास आउट किए थे, सो 1992 के बाद आज मैं पहली बार आया हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम शोलापुर से यहाँ उस्मानाबाद धाराशिव आने में हमें सिर्फ कैब में 1 आवर 15 मिनट्स लगे, राइट, जो कि उस टाइम में 2 घंटे से ज़्यादा लगता था। और हम याद कर रहे हैं अभी भी वो एसटी बसेस, बिल्कुल एसटी बस होती थी, एसटी बस भी एक सोर्स ऑफ था। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन जो आपने बात किया, हम लोग रहते थे बैंक कॉलोनी में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, फर्स्ट ईयर हम हॉस्टल में ही रहते थे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम बैंक कॉलोनी रहते थे। सो कॉलेज से बैंक कॉलोनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, देयर इज कॉलेज बस जिस जो एक पर्टिकुलर टाइम था। सो जैसे आपको पता है कॉलेज लाइफ में कि हम उस वेट तक एंड टाइम तक वेट नहीं करते थे, सो तब हम यहाँ इस रोडवेज पे ट्रक्स चलते थे काफ़ी ज़्यादा, उस समय बहुत ज़्यादा ट्रक थे क्योंकि हाईवे था और ये फ्लाईओवर वगैरह नहीं था, कॉलेज के आगे से ट्रक निकलते थे और हम नॉर्थ के ट्रक देखते थे और उसे हाथ देते थे और वो ट्रक रुक जाते थे, हम उन ट्रक पे बैठ के कॉलेज से यहाँ कॉलेज से बैंक कॉलोनी तक जाते थे। और सुबह भी कई बार अगर कॉलेज की बस मिस हो जाए, लेट हो जाए, तो हम उन ट्रक के थ्रू बैठ के वहाँ से यहाँ आते थे। तो वो सब एक्सपीरियंस हमारा अपने टाइम का काफ़ी हमें, जब हम यहाँ आए और ये सब डेवलपमेंट देखा तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। रास्ते में हमने विंड मिल्स देखी आपका पूरा जो है, सो एक अच्छा डेवलपमेंट हमें लगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। कॉलेज के अंदर भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, उस समय जब हम थे तो कॉलेज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कॉलेज हमें याद है एक मेन बिल्डिंग से लैब तक जाने के लिए देयर इज़ अ डीप खाई होती थी, खाई के बीच से हम जाते थे। अब वो पूरा रोड बन गया है, पूरा सब कुछ, इतना अच्छा डेवलपमेंट है, तो देख के बहुत अच्छा लगा हमें इन सब चीज़ों को।
2: मैं आपसे फिर से एक बार एक राउंड लेके आऊँगा, मैं पहले तो विनय भारद्वाज जी। तो विनय भारद्वाज जी, जैसे कि अभी संदीप सर ने कहा कि 1988 का आपका एडमिशन था, जैसे आपने फर्स्ट जर्नी आया तो आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो चेंज दिखाई दिया, लेकिन मैं वो जानकारी जानना चाहूँगा कि जब आप पहली बार यहाँ पे लैंड किए थे एडमिशन लेने के लिए 1988 में, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी और आज जब आप इतने सालों से आ रहे हो तो आपकी आज की फीलिंग कैसी है, बोलिए।
5: मेरी फीलिंग एक्चुअली ज़्यादा कुछ चेंज हुई नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया था एडमिशन के लिए तो उस समय मौसम बहुत ही शानदार था, मई का महीना और बारिश और चारों तरफ ग्रीनरी, तो ऐसी फीलिंग आई थी कि बस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है। और मैं बिल्कुल अकेला आया था एडमिशन कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को भी साथ में नहीं लाया था, तो मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया था और उसके बाद 2 महीने बाद फिर मौसम चेंज हो गया। लेकिन कितने भी मौसम ख़राब भी आए, बहुत हीट भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे यूनिक चीज़ जो पहले भी थी और आज भी है, हम लोगों की आपस में जो 88 बैच की बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग इतनी अमेजिंग है कि मतलब लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए ये सब लोग साथ खड़े, ये एक मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। और मैं लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस मैंने किए, लेकिन सब लोग ये मेरे साथ खड़े हुए थे, और मैं दोबारा से मतलब एक रीबर्थ कह सकता हूँ कि दोबारा से जन्म हुआ और फिर से मैं अपनी कॉरपोरेट जर्नी में आया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ दिस डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अलाइव एंड किकिंग हूँ।
2: तो प्रवीण महाजन जी, जैसे कि अभी विनय सर ने भी कहा कि 1988 में जब यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त का माहौल था, लेकिन 38 ईयर्स के बाद जब आप यहाँ पे पहली बार लैंड करते हो, देखते हो, तो दिल के अंदर क्या हो रहा था ये पहले बोलिए। आप ट्रांस में उस चले गए वो 38 ईयर पहले, या क्या क्या आपकी फीलिंग क्या थी पहली यहाँ पे जब आ गए आज के दिन में?
6: एक्चुअली उस टाइम के और आज के टाइम में सबसे बड़ी वी मतलब द डेवलपमेंट वी सी, वी फील दिस इज़ आवर सेकेंड होम। हम इतने साल यहाँ पे रहे, हमारी लोगों से एक दूसरे से क्लोजनेस, और विच वी स्टिल कंटिन्यू लाइक विनय टोल्ड। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो हमने यहाँ पे आन की वो थी हमारी दोस्ती, जो हमने जो आज भी कंटिन्यू करती है। और बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। वर्स्ट पार्ट मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे संदीप और मैं आए, हम भी अकेले आए, देर इज़ अ संदूक था हमारे पास एंड नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट अस, कोई यहाँ पे कुछ नहीं था, बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया एंड वी हैव टू कम से कम 1.5 किलोमीटर हमें वो बॉक्स उठा के लेके जाना पड़ा, एंड उसका वजन कम से कम 30 किलो होगा, लोहे का बॉक्स था एंड अदर बैग्स। और उसके देर वॉज ओनली 2 रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। तो जो हम दिल्ली से आए थे तो शायद हमें आदत नहीं थी, तो जब वो कैरोसिन के स्टोव पे बन के आया ना ऑमलेट फर्स्ट टाइम, तो इट वाज स्मेलिंग लाइक कि ये कैरोसिन में बन के आया है। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सिल्क एक्सपीरियंस, सो आई नेवर, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ,
7: यादें बहुत जरूरी है सर।
6: बट आज तो मैं कहूँगा कि जो कल्चर है या सब कुछ है, मतलब आप तो आप पूरा हार्मोनाइज हो गया है। मतलब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आज मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी डेवलपमेंट हो गई, लोग पहले मराठी मतलब हिंदी समझना नहीं चाहते थे, सो वेरी गुड, नाउ दे आर वेरी ओपन। और एक और लगा कि मतलब यहाँ की आज जैसे मैंने क्लास ली तो जितनी मतलब गर्ल्स को मुझे देख के खुशी हुई कि भाई इतने लड़कियां एफर्ट डाल रही हैं इंजीनियरिंग में, कि हमारे टाइम तो वेरी फ्यू, और उनको वाकई बहुत मुश्किल था इंजीनियरिंग करना, इट्स नॉट इजी। जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ से ट्रक पे आना, बस देर कन्वेंस ही नहीं था यहाँ पे। समटाइम्स आई रिमेम्बर कुछ लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चल के वापस गए हैं, शालीमार में था, 10-10, 12-12 किलोमीटर दे हैव टू वॉक टू रीच दोस। तो इट वॉज अ टाइम, बट हमने हंसी खुशी निकाला द गुड पार्ट, चाहे मजाक करके, चाहे उसको गाली दे के, चाहे जैसे भी, बट वी हैड अ वेरी गुड टाइम।
2: सर आपका
8: ने कहा कि
2: सेकंड संदीप सर, संदीप सर ने सर
8: संदीप लाहोटी, अभी प्रवीण ने कहा महाजन ने कि लड़कियां नहीं थी, बहुत कम थी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं हमने कितने डीमोटिवेटिंग एनवायरमेंट में किया पढ़े हैं।
2: लेकिन उस वक्त तो लेडीज हॉस्टल होगा ही
8: नहीं, वहां पर भी जाना अलाउड नहीं था।
2: तो मैं सर फिर से एक बार आपके पास आ जाऊंगा। आपका नाम सर?
9: पंकज गोयल।
2: अच्छा पंकज जी, जैसे कि प्रवीण सर ने कहा, संदीप सर ने भी कहा कि जैसे कि वो उनकी यादें बोल रहे, तो जैसे हर एक कोई अकेला आया था यहाँ पे, तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप हो गई, फिर बाद में आपके एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कैसे होगा ये बोलिए।
9: सर जब हम यहाँ आए थे, फॉर्चुनेटली जब मैं आया था तो संदीप और मैं दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, और कहीं कॉमन सोर्स के थ्रू हमारे फादर्स कनेक्ट हो गए थे, तो एटलीस्ट हम लोग उस समय कनेक्ट हुए थे एक बार एडमिशन के लिए। मैं आया था, संदीप तो नहीं आए थे, तो उस समय उनसे जान पहचान हो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ आए तो हॉस्टल में रुके, तो पहले मैं जैसे महाजन बता रहे थे हॉस्टल हमारा 10-12 किलोमीटर था, तो मैं दूर उस हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ कुछ लोग रूममेट्स थे आसपास और हमारे कुलीग्स थे, तो उनसे जान पहचान हुई, फ्रेंडशिप हुई। ये यहाँ पर थे तो इनसे जान पहचान थी, तो यहाँ पर बाकी सबसे जान पहचान बढ़ती चली गई। तो धीरे धीरे कॉलेज अटेंड किया, हॉस्टल में रहे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ और वहीं से जान पहचान और दोस्ती शुरू हो गई।
6: अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना, जैसे इन्होंने कहा संदीप ने, कोई आगे पीछे कोई नहीं था, हम एक दूसरे की देखभाल करते थे। देर वॉज नो, ना कोई आ सकता था, हमें फोन करने के लिए 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। देर इज नो फोन, अगर घर से फोन करवाना है तो वो हम लेटर पे फिक्स करते थे टाइम कि इतने बजे इस जगह पे हम आपका फोन अटेंड करेंगे।
9: हाँ, वही था। यहाँ पर क्या था कि कहीं भी सुख दुख है, सब कुछ है, आपस में ही बांटना है, तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो हुई थी, तो वो अभी तक है, क्योंकि घर से एक बार आ गए तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ एक कनेक्शन होता था कभी हफ्ते 10 दिन में एक फ़ोन कर लिया, और फ़ोन भी सब घर पे उस समय होते नहीं थे, मोबाइल्स तो थे ही नहीं, लैंडलाइन भी नहीं होती थी, तो कभी कभी फ़ोन होता था, और तो इसलिए आपस में ही एक दूसरे के सुख दुख में सब एक साथ थे और वही साथ चलता रहा।
2: सर जम्मू से है, मुझे जम्मू से इसलिए कहा कि आपका नाम सर
10: अमन सर।
2: तो अमन जी, ये मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे विनय सर ने कहा था कि यहाँ की बहुत सारी ग्रीनरी है, ये है, अभी थोड़ा सा माहौल आपको अलग लग रहा होगा, आप तो जम्मू से आ गए जहाँ पे तो स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो वहाँ से आप आए थे, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आप रेगिस्तान में यहाँ पे आए?
10: ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि मेरी पेरेंट्स उस समय मेरे साथ ही आए थे, तो ग्रीनरी थी वहाँ पे, अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए कि इतनी ग्रीनरी है, कि तुम अच्छी जगह पहुँच गए हो, तो बहुत खुश हुए थे। फिर हम एक आते ही मेरे पेरेंट्स साथ में एक होटल में रहे थे हम लोग, तो उनके जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि जब हम खाना खाते थे किसी होटल में जाके ना, तो भाई घर की याद आती, घर की रोटी की याद आती थी कि हम खा रहे हैं, और आँखों में आंसू आते थे। तो ठीक है, आस्ते आस्ते दोस्ती बढ़ती गई, होता गया। मेरी पहली था नगोरी निवास में, मेरा था स्टे था जो हॉस्टल मिला था मेरे नगोरी निवास में, उसके बाद फर्स्ट ईयर नगोरी निवास था, उसके बाद मेरा संभाजी नगर जो रामनगर के नाम से है, वहाँ पर हम लोग रहना शुरू कर दिया था। तो अच्छा लगा कि साथ में दोस्ती बढ़ती गई, होती गई। बाकी रही फ़ोन कॉल की बात, फ़ोन कॉल तो होते नहीं है, अगर लेटर होता था, अगर हमें कुछ पैसा घर से मंगवाना होता था, हम करते थे टेलीग्राम, तो हम लिखते थे एंड मनी सेंड मनी, तो क्योंकि उसमें हैंड मनी सेंड मनी,
2: अच्छा,
10: तो चार्जेस
11: पैसे भेजो,
10: पैसे भेजो। अच्छा। क्योंकि टेलीग्राम के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे
2: जी।
10: तो घर में पहुंचता था वो मैसेज आ गया, तो फिर वो डीडी हमें भेजते थे, उस समय पेमेंट हमें मिल जाती थी। अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे उस समय।
2: तो मैं अभी कालरा सर के पास आना चाहूँगा, आप तो थोड़ा सा अलग सा वाइब आ रहा है आपको देख के, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बीच में आप एक ऐसा कोई तो एक पर्सन थे जो कि वो चिंगारी डालना और फिर सेकते रहना, ऐसा कुछ है आपके अंदर?
12: पता नहीं यार, अब याद नहीं है ऐसी बातें।
2: तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बोलिए
12: यार, एक्सपीरियंस इन लोगों ने शेयर कर दिया, इन्होंने बता दिया कि
2: आपका बताइए ना, आप इनके
12: अरे कोई अलग नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस कोई इनसे अलग नहीं है। ये है कि शायद सबसे ज्यादा दूर कॉलेज से मैं ही रहता था।
2: अच्छा, अच्छा।
12: जो शेरखाने पेट्रोल पंप होता था पहले आगे, बस उसके पास मैं वहां रहता था।
2: अच्छा।
12: और कई बार ऐसा हुआ है कि चाहे पानी पड़ा हो सड़क पे, पानी जाम हो, जैसे भी हो, पैदल चल के पहले बस स्टैंड तक और फिर बस स्टैंड से कॉलेज ट्रक पकड़ गए या कैसे भी वही आया। तो अब जर्नी जैसी थी वैसी थी। ये उस टाइम तो दिन गिनते थे कि यार अच्छा फर्स्ट ईयर निकल गया, अब सेकंड ईयर निकल गया, 2 साल बचे हैं, थर्ड ईयर निकल गया, 1 साल बचा है, फाइनल ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, 4 महीने यार हंसी खुशी बिता लो। और फाइनल ईयर में तो आते आते हालत ये हो गई थी कि एग्जाम से पहले पिक्चर हॉल ज़्यादा जाते थे और बुक्स कम देखते थे। और उसके बाद जब फाइनल ईयर क्लियर किया तो ये था कि यार कुछ बनेंगे तो वापस आएंगे, अब वो वापस आने का मौका मिला ही नहीं कभी दोबारा।
2: अच्छा, लेकिन बन तो गए हो ना आप, लाइफ की जर्नी तो यहाँ तक आई।
12: लाइफ की जर्नी में आदमी शादी होती है तो शौहर बन जाता है, उसके बाद बच्चे होते हैं तो बाप बन जाता है, और फिर शादी के बाद तो फिर वो बैचलर्स को मैं यही कहता हूँ यार, हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग, यू मस्ट गेट मैरिड।
2: तो मैं आऊँगा वापस आपसे।
8: अमन ने कहा, दो बातें अमन के मैंने नोट की, ऑब्जर्वेशन। अमन ने कहा कि जब मम्मी डैडी आए छोड़ने, ग्रीनरी देख के खुश हुए, उसमें तो हमारे भैया फादर खुश हुए, मदर रो रही थी। एक जना खुश था, एक जना रो रहा था। उनका बेटा दूर जा रहा था, वो खुश थे कि बेटा चलो दूर जा रहा है। दो एक खुश, दोनों इसी वजह से, वो उससे दुखी थे कि बेटा जा रहा है, वो भी इस वजह से खुश थे कि बेटा जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने कहा कि एंड मनी सेंड मनी, हमारे घर से आता था स्पेंडिंग टू मच मनी सो नो मनी।
11: अच्छा,
8: बस उसमें मैंने फर्दर ऐड कर दिया, बाकी आप
10: कुछ लोग घर में फोन करते थे कि दैट इज स्मोकिंग फंड भी होता था।
11: अच्छा,
10: स्मोकिंग फंड।
11: अच्छा,
10: उसके पैसे भेजो हमें।
11: अच्छा,
10: वो भी था उस समय उस स्टेट में। स्मोकिंग
2: स्मोकिंग फंड, वो क्या होता था स्मोकिंग फंड?
8: सुट्टा फंड।
11: अच्छा, वो ग्राउंड को पता था ऐसा कुछ?
8: वो
10: पता नहीं था, बस नो स्मोकिंग फंड, नॉट स्मोकिंग, नो स्मोकिंग फंड भी है कॉलेज में, वो देना पड़ता है।
2: तर आता आपल्या समोर ह्याच बॅचचे आपल्याच धाराशिवचे ॲडव्होकेट मनीष वाघमारे जे आहेत। तर मनीष जी, तुम्ही आता ॲडव्होकेट आहेत म्हणजे वकिली करता, इंजिनिअरिंग करून वकिली करणं, आणि ह्या सर्व लोकांसोबत तुमचा रेपो कसा? कारण आपले महाराष्ट्रातले, पुन्हा त्यानंतर नॉर्थमधले, उत्तर प्रदेश किंवा इतर स्टेटमधले आले, म्हणले की मराठवाड्यातलं आपलं असं असतं की थोडंसं न्यूनगंड असतो, की इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स येतो मनामध्ये, की अरे ह्यांच्यासोबत कसं ॲडजस्ट व्हायचं। तर तुमचा अनुभव कसा होता ते सांगा, एक लोकल स्टुडंट म्हणून, का तुम्ही यांच्यावर राज्य करायचं हे पण सांगा।
13: राज्य करायचा हा विषय नाही आहे, त्यांना जेवढं कॉपरेट, हा उनको जितना कॉपरेट करने का था भाई, जितना कर सकते थे उतना उनको कॉपरेट कर दिया, क्योंकि वो इतने दूर से यहाँ पे आए, अपने मम्मी डैडी को, पूरा फैमिली को छोड़ के आए, तो अपना भी एक लोकल बोल के कोई अपना भी फर्ज है कि भाई इनको कुछ जितना कॉपरेट करे उतना कर सके।
2: इंजिनियरिंग नंतर वकिली तुमचा असा काय विषय
13: नाही? इंजिनियरिंग नंतर थोडंसं सॅच्युरेशन पिरियड असल्यामुळे, आणि मिसेस पण ॲडव्होकेट असल्यामुळे मी ह्या फील्डमध्ये उळालो, आणि माझी सामाजिक संस्था आहे माता अहिल्या देवी होळकर संस्था, मला पहिल्यापासून आवड आहे की सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करायचं। तर आता आमचं पुढचं टार्गेट आहे की आपले जे कॉलेजचे स्टुडंट आहेत, ॲल्युमिनी असोसिएशन फॉर्म करायचा आमचा विचार आहे, जेणेकरून जे नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांना ह्या जुन्या विद्यार्थ्याचं, त्यांच्या अनुभवाचं, ज्ञानाचा फायदा ह्या नवीन विद्यार्थ्यांना हवा।
2: तो मैं संदीप जी, एक सेकंड राउंड में ऐसा पूछना चाहूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि मैंने आप जैसे एल्युमिनी का बहुत सारा इंटरव्यू किया हुआ था जम्मू से है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये इंटरव्यू लेना यानी आपकी जर्नी तो लेना ही है, लेकिन साथ में आपने जो स्ट्रगल किया, साथ में आपने जो एक दुनिया देखी हुई है, और अभी के जो स्टूडेंट है जो ये इंटरव्यू सुनते हैं, तो उनको भी पता रहना चाहिए कि स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्सपोजर की वजह से उसमें थोड़ा सा कम आ गया, और जो बॉन्डिंग भी दिखाई देती है आपकी सब फ्रेंडशिप में, तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा तो आजकल के स्टूडेंट में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मोबाइल हैंड में रहने की वजह से उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है, और जो लाइवनेस रहता है वो कम हो गया है। तो मैं ये दोनों तीनों सवाल एक साथ ही पूछना चाहूँगा, ताकि आप उसका आंसर कर सके। तो आपकी जर्नी कैसे रही, आज आप क्या काम करते हो, वो काम में आपको कितना सक्सेस मिला हुआ है, और साथ में ऐसा अगर कुछ करना है जर्नी में, आगे चलना है, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये फ्रेंडशिप का ये जो बॉन्ड है, जो कि जो आपके जनरेशन में है, हमारे जनरेशन में भी हमने देखा हुआ है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना, उनके अंदर वो बॉन्ड नहीं है, माता पिता के लिए हो, दोस्तों के साथ भी हो, वो कम दिखाई देता है थोड़ा सा। तो ये जो अंदर का जो एक है, कहते हैं ना वो, ये अंदर की एक रिश्तेदारी, आज भी आप जितने 38 ईयर के बाद भी आप जितने एक दूसरे के साथ खुल के मिल रहे हो, तो उसके हिसाब से एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है कि आप लाइफ में अभी क्या कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, ये भी समझना चाहेंगे, और मैंने जो सवाल पूछे उसके बारे में भी।
4: सो अभी मैं जो हूँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सो आई एम अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजर इन दैट अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और उन्हीं का एक और डिवीजन है आशा अकेडमी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए है, इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। सो इस जर्नी तक आने के लिए 34+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टोटल। तो स्टार्ट से नहीं होता, स्टार्ट में हमारे टाइम पे कोई कैंपस नहीं होता था, देयर इज़ नो कैंपस प्लेसमेंट, तो पास आउट होने के बाद खुद ही जॉब देखना होता था। उस समय कैंपस प्लेसमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, राइट? एंड कंप्यूटर साइंस उस समय एक नई ब्रांच थी। सो पास आउट होने के बाद, जैसे मैं जम्मू से हूँ तो हम जम्मू वापस गए, शुरुआत मैंने एक छोटे से पॉलिटेक्निक कॉलेज से की। सो अबाउट 3-4 मंथ्स उस कॉलेज में मैंने टीचिंग किया, उसके बाद मेरे को दिल्ली में स्पेसिफिकली फरीदाबाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली विच इज़ रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री, सो वहाँ पे मैं आया, राइट. सो हमने जो जर्नी स्टार्ट किया, अगर मेरे को अभी भी याद है, हमें मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 1750 रुपीज़ थी.
14: अच्छा.
4: और उसके बाद वो जो जम्मू में थी, और उसके बाद 2250 था जो मेरे को फरीदाबाद में जो फर्स्ट सैलरी थी, 2250 रुपीज़ थे जिससे हमने स्टार्ट किया. आज ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छा, सब चीज़ें अच्छी हैं. तो मेरा सबके लिए यही है कि स्टार्ट आपको करना है, कहीं से भी स्टार्ट करिए. डू नॉट लुक कि आज क्या मिल रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली आगे जाएंगे. आप किसी भी कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को अगर आप अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे, अगर आप एफर्ट्स डाल के काम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर एरिया में. जो हमारी बाउंडिंग और आपने सोशल मीडिया का बात किया, डेफिनेटली आई एग्री कि सोशल मीडिया के आने से वो जो पर्सनल बॉन्डिंग टच है वो थोड़ा सा कम हो गया है. सो उसके लिए यही है कि जैसे अभी भी हम जैसे है, अभी भी मंथ में नहीं, टू मंथ्स में, थ्री मंथ्स में हम डेली में ही गेट टुगेदर करते हैं जहां हम सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ में डेली हम सब नहीं मिल सकते. सो ठीक है, फ़ोन पे बात हो गया या व्हाट्सएप पे बात हो गया, लेकिन हम मैनेज करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कहीं कुछ रख लें जहां पे हम सब दोबारा मिल जाएं. तो आपको कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा जहाँ फिजिकल मिलना पड़ेगा, राइट. अब आज की जनरेशन में जो है कि वो फिजिकल टच कम होता जा रहा है, राइट. तो फिजिकल टच को किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले फैमिली से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे हमारे टाइम में जो अब भी क्या है कि कम से कम डिनर हम लोग फैमिली साथ ही करते हैं, राइट. तो उस कंसेप्ट से अगर स्टार्ट करें कि फैमिली में सब लोग डिनर साथ में करें, और उस टाइम पे नो मोबाइल कंसेप्ट रखें कि डिनर के टाइम पे मोबाइल साइड पे रख के डिनर कर रहे हैं, तो वहाँ से अब अपने फैमिली में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि जब आप इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं और फ़ोन डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन आपस में होगी कि आज का दिन कैसा रहा, क्या है, तो उसी से ही चीज़ें निकल के आती हैं. तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर हम लेके चलें, और आज की जनरेशन के लिए ये कहना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं. काफ़ी लोगों का ये कहना है कि AI के आने से क्या होगा. सो हम सबका यही मानना है कि एक AI के आने से जॉब की पोजीशनिंग चेंज हो सकती है, स्किल सेट चेंज हो सकता है, लेकिन जॉब खत्म नहीं होंगी. इंजीनियर्स की जॉब आज भी है, कल भी रहेगी, फ्यूचर में भी रहेगी. इंजीनियर्स की जॉब नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि AI को जो ड्राइव करेगा वो इंजीनियर्स ही करेंगे, राइट. रोबोटिक्स को जो ड्राइव करेगा वो इंजीनियर्स ही करेंगे. तो जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है, स्किल सेट चेंज हो सकता है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. सो यही मेरा है.
14: तो जैसे कि आपके लाइफ की जर्नी, जैसे कहा कि जॉब खत्म नहीं होंगे, सिर्फ हमको ओपन माइंडेड रहना है, उसके तरफ उस तरीके से देखना है. तो जैसे दूसरी एक बात ऐसी है कि आपके लाइफ के गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या है कि जो सक्सेस पाने के लिए जरूरी है, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या कहना चाहोगे?
4: कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स.
14: अच्छा.
4: जो भी आप काम करें, कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर. अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप कम टेक्निकल स्किल्स के साथ भी अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू उस टेक्निकल स्किल्स को ओवरकम कर सकते हैं. तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़रूरी है आज की डेट में. एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो भी कभी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके लेवल पे एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि अगले को लगे कि हाँ, जो ये बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं. तो ये दो स्किल्स मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है.
14: बहुत बढ़िया. देखिए, ये जो वर्ड्स रहते हैं ये हमारे लिए जरूर रहते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि कैसा है कि एक लाइफ की जर्नी पूरी कंप्लीट करने के बाद जो सामने आता है ना, तो ये जरूरी रहता है. इसलिए तो हम इंटरव्यू जब करते हैं, ज्यादा पॉडकास्ट करते हैं, तो इसीलिए करते हैं.
8: सी, अभी जब लेक्चर सेशन हो रहा था तो दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स कि इंजीनियर मींस आप बन के क्यों निकल रहे हो. इट इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ 9 to 5 जॉब, राइट. वो तो कोई भी 12वीं पास और BSc पास भी करता है. नेशन फर्स्ट, वर्क फॉर द नेशन, यू नो, वर्क फॉर द सोसाइटी. थिंक ऑफ यू नो कि हाउ कैन यू एड्रेस द पेन ऑफ द कॉमन एरियाज, राइट. यू विल बी सक्सेसफुल बिकॉज इंजीनियर विल बी कमिंग आउट विद न्यू इनोवेशंस वंस ही आइडेंटिफाइज द पेन एरिया एंड द यू नो द व्हाट द कॉमन मैन वांट्स. So then probably you will be a successful engineer.
14: लेकिन आप क्या करते हो आपके पर्सनल लाइफ में? आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब क्या है, ये भी बोलिए.
8: मैं शुरू से डिफेंस सेक्टर में रहा हूँ. डिफेंस के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हो गए, साइबर प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रोन प्रोडक्ट्स हो गए, वो डिफेंस में मेरा काम है.
14: तो जैसे आप डिफेंस में हो, जैसे कि हमने भी VP सुब्रमण्यन सर का इंटरव्यू किया, तो एयरफोर्स में आई थिंक ग्रुप कैप्टन है वो, जैसे कि मराठवाड़ा तबका उस्मानाबाद है, आपका धाराशिव है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट है जो काफ़ी विलेज से आते हैं, क्योंकि आप तो तब नॉर्थ से या पूरे साउथ से भी बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र आते थे, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से यहाँ उस्मानाबाद धाराशिव डिस्ट्रिक्ट होगा, लातूर डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ नियर बाई के ज़्यादा स्टूडेंट है। तो जैसे आप डिफेंस में काम करते हो सर, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, उनको क्या किस तरीके से अपनी स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए।
8: आई डोंट थिंक एनी एक्स्ट्रा यू नो स्किल्स आर रिक्वायर्ड। द ओनली थिंग इज इट इज योर एक्यूमेंट, राइट? यू आर एन इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर है, ही नोज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट? सो द ओनली थिंग इज यू नीड टू वर्क अराउंड योर स्ट्रेंथ्स, फॉरगेट अबाउट योर वीकनेसेस, ट्राई टू ओवरकम दोज वीकनेसेस, आई वुड से। और यू नो यू गेट योर ओन आइडियाज़ यार, जब आप इंजीनियर, व्हाट आर इंजीनियर्स? इंजीनियर्स आर पर्सन हैविंग न्यू आइडियाज़, सो देर इज़ नो एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड टू गिव यू आइडियाज़। इंजीनियर अपने आइडियाज़ खुद बनाता है, दैट इज़ वाई ही इज़ एन इंजीनियर, दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।
14: तर मित्रांनो बघा, आता संदीप सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की आपल्याला स्वतःचं कौशल्य ओळखणं खूप गरजेचं आहे, तो विनय जी आपसे मैं बात करना चाहूंगा की जैसे संदीप सरने जे कहा, ये संदीप सरने दोनों ने भी कहा, तो आपका क्या कहना है कि आपका प्रोफाइल क्या है और आज के स्टूडेंट को जो 38 ईयर का बहुत सारा वक्त इसमें गया है, तो काफ़ी चेंजेस आ गए, सिलेबस में चेंजेस आ गए होंगे, पढ़ाई के फील्ड में चेंजेस आ गए होंगे, जैसे कि लेक्चरर आप खुद प्रैक्टिकली किया करते थे लाइब्रेरी में और लेबोरेटरी में जाके भी बैठा करते थे, लेकिन आजकल कैसा हाथ में स्मार्टफोन आने की वजह से फिजिकली क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट कम दिखाई देते हैं, तो आप इस पूरे जर्नी को, आपके जर्नी के और आपके प्रोफाइल को भी इसको कैसा मैच करना चाहेंगे?
5: मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि पहले जो चीज़ें थी, आज की जो सुविधाएं हैं वो अलग हैं, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा, लेकिन अपना एक गोल जीवन में करना क्या चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने जिस फील्ड में सोचा था, ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे जाके उसी फील्ड में काम करूँगा, तो जहाँ सीखने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ले लेना चाहिए और अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी खामियाँ भी हैं, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आपका डेटा लीक हो सकता है, आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो एक तरह से आपका को पायलट है, मेन पायलट तो आप ही हैं, जैसे आप उसको ड्राइव करेंगे वैसे वो आपको रिजल्ट दे देगा, तो इसलिए पता होना चाहिए कि उससे रिजल्ट निकलवाना कैसे है। तो ये हम तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर 3-4 साल के बाद चेंज हो रही है, तो हम अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। और अभी किसी स्टूडेंट ने क्लास इंटरेक्शन में भी मेरे से पूछा था कि क्या आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जो हमें नहीं करनी चाहिए आगे जाके, तो मैंने बोला कि मिस्टेक्स करना बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक्स करना चाहिए, और सेम मिस्टेक अगर बार बार हो रही है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, हर मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, तो मेरा ये मानना है।
14: तो आप क्या करते हो?
5: मैं अभी मिस्टेक्स करता हूँ और इंडस्ट्री बदलती रहती है। मैं अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हूँ, एक कंपनी है NXP सेमीकंडक्टर्स नोएडा में, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। और अभी इससे पहले मैं टेलीकॉम में भी मैंने काम किया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में भी काम किया, और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ को मैंने सीखा।
14: तो और एक दूसरी बात ऐसे है कि जैसे आप नॉर्थ से आ गए, दिल्ली से आ गए, कोई जम्मू से आ गए यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको होमसिकनेस बहुत है, तो यहाँ से बाहर जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि जितना ग्लोबली चेंज हो रहा है तो हमको चाहिए कि हम हमारे इस चौकट से बाहर निकल सके?
5: जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अकेले ही आया था अपना एडमिशन कराने के लिए, तो मेरे अंदर भी होमसिकनेस तो थी, लेकिन साथ जो मिला, इतने अच्छे लोगों का साथ मिला और इनक्रेजमेंट मिला, मुझे पता था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर कुछ टैलेंट हैं कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल एक्टिविटीज़ में कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, उसमें मुझे इंटरेस्ट आता था, मेरा पैशन था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ वो भी करूं, और फिर प्रोफेसर्स का कुछ सपोर्ट मिला, उनको पता चला कि ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि एक एनुअल फंक्शन 4.5 घंटे का होता था, उसमें मुझे बोला कि यू विल बी द एंकर ऑफ द शो, वो मेरा काम मेन लोगों को हंसाने का था, तो वो जब मैंने वो किया तो स्टेज प्रेजेंस की वजह से सब लोग मुझे जानने लगे कॉलेज में, और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ती चली गई लोगों से, तो आज भी मेरे से 2 साल जूनियर, मेरे से 2 साल सीनियर, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं।
14: रवि कांत जी,
3: हाँ जी, विनय हमारे साथ थे, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट भी थे, जनरल सेक्रेटरी, और क्रिकेट कॉमेंट्री बढ़िया करते हैं, अच्छा। आप उसका क्रिकेट कॉमेडी सुनना ही चाहिए आज पॉडकास्ट में।
15: अच्छा।
3: आई थिंक उसका व्यूज भी बहुत आ जाएंगे। देन और एंकर का प्रोग्राम्स के लिए, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, एंड आई थिंक ऑलराउंडर गाना गाते हैं।
15: अच्छा।
3: लवली सॉन्ग्स। अच्छा। आज भी आप सोशल मीडिया सोशल मीडिया में भी देखिए, स्मूले और दूसरा एप्स में ना, इनके काफी बढ़िया ड्यूएट सॉन्ग्स भी आती है।
15: अच्छा अच्छा।
3: सो दिस इज वन थिंग आई नो मोर अबाउट विनोद।
15: अच्छा अच्छा सर,
9: मैं ऐड करना चाहूँगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या यहाँ लोकल में रहते हैं क्या ओपन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, आज की दुनिया या दुनिया हमेशा ही ग्लोबल रही है, तो या तो आप ग्लोबल आप अपने पास यहीं रहेंगे तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बाहर का देश में दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा ना लोकल होना चाहिए ना ग्लोबल होना चाहिए, बेसिकली आपको ग्लोकल होना चाहिए, जो आप ग्लोबली भी देखें क्या हो रहा है, लोकली भी देखें क्या हो रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस लें, और फिर आप अपने को क्यों लिमिट करते हैं कि मेरा यही जगह है। ईश्वर ने बनाया है, सब कुछ आपका है, पूरा जहाँ आपका है, आप जाइए अलग अलग जगह देखिए, अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करिए, अलग अलग एक्सपीरियंस लीजिए, बट हाँ अपनी रूट्स मत भूलिए। जब भी आप कुछ सीखें कुछ हो तो अपने वापस आकर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं कोशिश कीजिए और समाज को कुछ वापस दिया जाए।
14: साथ में ही आप ये बोल दीजिए कि आप क्या करते हो, और जैसे अब्रॉड में कौन आप थे क्या अब्रॉड में? हाँ, तो जो अब्रॉड में ज़्यादा यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स पड़ते हैं, जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ ईयर, तो पांचवे ईयर से सीधा हम कहीं तो बाहर अमेरिका स्विट्जरलैंड इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ हम बर्फबारी देखेंगे सब कुछ देखेंगे, ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स आते रहते। तो अब्रॉड जाना आपके ज़माने में कितना ईजी था या हार्ड था, आज के ज़माने में कितना ईजी या हार्ड है ये भी बोल दीजिएगा।
9: सर देखिए, मेरा ऑब्वियसली काफ़ी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मुझे अब्रॉड जाना है। जब मैं करके निकला था तो मैंने इंडिया में ही जॉब किया था, 92 से 2000 तक थे, तो जो भी कुछ सीखा उसके बाद वो काम आया। जब हम 2000 में मैंने जॉब चेंज किया तो मैंने HCL से विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में ज्वाइन किया था, और वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला कि आपको डोमेस्टिक बिजनेस से ग्लोबल बिजनेस में जाना है। तब मेरा जर्नी शुरू हुई ग्लोबलाइजेशन की, तो मेरा मोस्टली पहले इनिशियली वेस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड, वहाँ मेरा एक्सपोजर था। जो मेरा एक्सपोजर रहा वो US यूरोप वगैरह रहा, बट मेरा कभी ये नहीं रहा कि मुझे बाहर ही रहना है। तो मैं गया, US भी रहा था, मैं UK में भी रहा कुछ टाइम, बट हमेशा मैं वापस आ गया इंडिया, और बीच में उसके बाद फिर मैं मिडिल ईस्ट भी गया, वहाँ भी कुछ साल रहा, बट हमेशा मेरे को यह रहा कि नहीं मुझे वापस आना है। तो जहाँ भी एक्सपोजर मिला मैंने वहाँ काम किया, अपने को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मुझे इस जगह पर रहना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, ये काम करना है। जस्ट जो मिल रहा है, जो विंड के साथ चल रहा है, जस्ट फ्लो विद द विंड, एंड उसके बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अलग अलग टेक्निकली आप सीखते हो एज वेल एज पर्सनली सीखते हो, अलग अलग कल्चर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और ये समझ में आया कि हर कल्चर के लिए पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड्स हैं, और हर एक की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, या कहीं और कुछ हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। इवन आप देखेंगे कि यहाँ हम बैठे हैं धाराशिव में, यहाँ से अगर 400 किलोमीटर दूर चले जाएं महाराष्ट्र के अंदर ही, तो कुछ चीज़ें कल्चरली चेंज हो जाती हैं, बट वो वहाँ की एनवायरनमेंट और कंडीशंस के हिसाब से होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ सही है या गलत है, हर जगह सब कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से अडॉप्ट की जाती हैं। तो मैं ये तो यही कहूँगा कि आज भी जब आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने को ना तो रेस्ट्रिक्ट करिए, ना कभी आप ये सोचिए कि कुछ आपको जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स ऑब्वियसली आप काम करो उसके ऊपर, बट आपको ये सोचो कि नहीं मिला तो नहीं, कुछ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होता, आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो जैसे मुझे रास्ते मिलते चले गए, आप सोचें या ना सोचें, जब आप उसके करीब पहुँचते हैं तब आप सोचने लगते हैं कि अब मैं ऐसा कर लेता हूँ या ये प्लान कर लेता हूँ, बट उसके लिए कुछ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि अगर उस रास्ते पे जाना आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा, कोई आपको लेकर नहीं जाएगा। तो वो एफर्ट्स करते रहिए, सीखते रहिए कंसिस्टेंटली, जो आपको मिलता है आप उससे गाइडेंस लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, और मैंने तो कई बार अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो मुझसे जूनियर्स हैं या जो मुझसे छोटे हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सीखने के लिए तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, अपनों से, बड़ों से, अपनों के बराबर वालों से, और अपने नीचे वालों से भी जो आपसे छोटे हैं, तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप लर्निंग करते रहेंगे, अपना विजन क्लियर रखिए आपको क्या करना है, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि नहीं मुझे 5 साल बाद बाहर ही जाना है, तो एफर्ट करिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और आज की डेट में तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके एल्यूमिनी नेटवर्क है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और आपको ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी, बट आपको ऑब्वियसली उसके लिए नॉलेज और स्किल्स, वो सब चीज़ें चाहिए होंगी।
14: नहीं नहीं, हम प्रवीण सर से भी और सर का नाम भूल रहा हूँ, अमन अमन सर से भी बात करेंगे, लेकिन जैसे रविकांत ने कहा था कि आप क्रिकेट कमेंट्री बहुत बढ़िया करते हो और गाने भी गाते हो, तो थोड़ा सा इसमें एक फ्लेवर डाल दीजिएगा, एक तो गाने का या फिर क्रिकेट कमेंट्री का, जो आपके दोस्त कहेंगे। वो
5: एक्चुअली वो फ्लेवर डालने के लिए ना, मतलब वो कुछ एक ऐसी लैंग्वेज भी है जो कि हर किसी को समझ में नहीं आती है, जो हरियाणवी लैंग्वेज है, तो उसका फ्लेवर दोनों का डालते हैं तभी मज़ा आता है उसमें। तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कमेंट्री, जिस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया में लाइव टेलीकास्ट नया नया आया था, तो हम लोगों को बहुत क्रेज़ हुआ था कि ये कितना ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं, तो हमें इसका सीखना चाहिए। मैं नकल करना शुरू किया उनकी। तो बेंसन एंड हेजिस कप एक हुआ था जिसमें रवि शास्त्री को टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो उनको ऑडी कार मिली थी, तब से वो अट्रैक्शन आया था। और यन चैपल वहाँ पे अभी उन्होंने माइक लिया है रिची बेनॉट से, तो मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है, कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सो थैंक्स रिची, कंडीशंस परफेक्ट, दिस मेलबर्न क्राउड इज रियली परफेक्ट, इंडिया प्ले न्यूजीलैंड द सेमीफाइनल्स ऑफ द बेंसन हेजिस कप बीइंग प्लेड हियर टुनाइट, परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट आउटफील्ड, एंड द न्यूज़ इज दैट इंडियन कैप्टन केपल डेविस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल, एंड केपल डेविस फॉर द फर्स्ट टाइम टू न्यूजीलैंड कैप्टन जॉन राइट, नाइसली प्लेड क्वाइटली इन द कवर स्टेट टू रवि शास्त्री, शास्त्री पिक्स इट अप एंड रिटर्न्स टू केपल डेविस, केपल डेविस फॉर द सेकंड टाइम, एंड अ ब्यूटीफुल यॉर्कर इन जॉन राइट्स मिडल स्टंप इज नॉक्ड डाउन द ग्राउंड, बट अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर इंडिया, न्यूजीलैंड स्ट्रगलिंग नॉट फॉर वन, एंड फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ कमेंट्री इट्स ओवर Tony Greig. Well, thank you, Ian. What a fine performance. What a brilliant performance. Kapil Dev is a brilliant kicker. He's been falling all the way. And Krishnamachari Srikanth, three consecutive sixes of Roger Harper in the last match. And these two have been the heroes of the day. And further description of commentary, it's over to Bell Laurie. Well, thank you, Tony Greig. Well, Pratchett and Sharma, well, Ravi Shastri, these two have been the heroes of the day. So, yeah, Australian style of cricket. Ab India mein ek gaon hai, Haryana. में वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें थोड़ी वैरायटी कैसे आती है, कमेंट्री उनकी स्टाइल में कैसे होती है। वहाँ पे मिस्टर कमेंटेटर जो हैं उनका नाम है मिस्टर मोलर, और हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं तावरसाल सिंह जी, और गांव लाखन माजरा और गांव कलावड़ के बीच में मैच हो रहा है, तो ओवर टू मिस्टर मोलर। तो गाँव लाखन माजरा मोलर बोलने लग रहे हैं, मैच गाँव लाखन माजरा और गाँव कलावड़ के बीच होने लग रहा है। भाई सबसे पहले मोटे बिट्टी मास्टर ने अपनी जेब में तो खुटी चोर निकाल दिया और टॉस करने लग गया भाई, और टॉस जीत गया भाई लाखन माजरा। लाखन माजरा पहले बैटिंग करेगा, लाखन हरिजय की तरफ से आ रहे हैं भाई भरतू और कालू दर्जी का छोरा, या पैर के पलस्तर बांधे और हाथा में कपड़े धोने की मोगरी ठाए आने लग रहे हैं भाई, और भाई मैदान का मुआयना कर ले, मैदान में 6 खूटे गड़ रहे हैं, 3 न्यूंगे ने और 3 न्यूंगे ने, और इन खूटे के पीछे जो छोरा बैठा है ना वो स्त्रियाँ बैठा जाना गाय भरता हो, और भाई नायिका चला नायिका गेंद करेगा पहले, और भाई पजामे में गेंद में रगड़ने लग रहा है खाजी कुतिया की ढाल, और नायिका चल रहा भाई आंख बीच के दांत बीच का, उसने बॉल फेंक के मारी सारा भाई गणेश जोर का शॉट मार दिया भाई, इतनी देर में विकेट के पीछे खड़े छोरे के पास गेंद आई, छोरे 2 चक्कर काट के तो 2 रन बिना किसी नुकसान के, और भाई नायिका फिर चले आंख बीच के दांत बीच का, उसने बॉल फेंक के मारी सारे भाई छक्का, अरे भाई धानी आंख लगवा ले छक्का ना से चौका से, अरे भाई क्यों झगड़ा करे है बीच बिचाड़ा कर लेना तेरी ना मेरी, ये 57 रन बिना किसी नुकसान के, और भाई ये जो शॉट था इस पर हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर तावरसाल सिंह जी के एक्सपर्ट कमेंट्स, अरे भाई यो के क्रिकेट, क्रिकेट तो हमारे जमाने में होया करते, एक बार मैंने 5 सैकड़े मार दिए 2 घंटे में आउट ही ना होया, तो सरकार मैंने विदेश भेजन लगी इंग्लैंड, पर तेरी ताई ने सरनाश मार दिया, कहने लगी कि डांगरा का दाना पानी कौन करेगा भाई, पशुओं का भी ख्याल रखना था तो इंडिया में ही रह गए भाई, और अब खिलाड़ियों के लासी पीने का टाइम हो गया भाई, मैदान का मुआयना कर ले, मैच फिर शुरू होने लग गया, नीलू सत्तू बाने नानू और बेरण के भाई चाले और नायिका चाले भाई, और आंख मीच के दांत बीच के बॉल फेंक के मारी सारे फूट गया भाई, अरे भाई भरतू का खोपड़ा फूट गया भाई, अरे मैदान में 3-4 लुगाई आने लग रही हैं जिनमें एक भरतू की लुगाई भी सर वो जूती लेके नायिका के पीछे भाजने लग रही है भाई, और नायिका के जूती पीछे भाई फेंक के मार दी जूती और नायिका बैठ गया भाई मोटे पिट्टी मास्टर के भाज गई भाई, अरे भाई भाज लो अड़ते हो तो जूत भाज गया भाई मैच समाप्त।
14: क्या बात है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मैंने तो ऐसा पहली बार सुना, लेकिन वो जो पहले आपने मिमिक किया था वो यान चापल का, और वो तो बहुत बढ़िया लगा सही। तो प्रवीण सर के पास आप जाना चाहूंगा कि प्रवीण सर आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या करते हो? जैसे मैंने सवाल संदीप सर से भी किया था, वैसे आप इसके अंदर सब स्टूडेंट, आने वाले स्टूडेंट्स को भी क्या क्या गाइडेंस करना चाहोगे, और साथ में आपकी जो 38 ईयर की जर्नी वो भी हमें थोड़ा सा एक आप बोल दीजिएगा।
6: स्टार्टेड मतलब मैंने अपनी जर्नी 92 में मुझे ज़बरदस्ती किसी कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया गया। मैंने इसलिए कि मैं काम नहीं करना चाहता था एक साल, आई वांट टू एंजॉय, मतलब चार साल की बहुत तपस्या कर ली हमने उस्मानाबाद में, आई डोंट वांट टू वर्क। तो घर वालों ने ज़बरदस्ती तू जाके देख ले भाई, ठीक लगे तो स्टार्टेड। जैसे संदीप ने कहा उस समय मेरी 2800 रुपये पे सैलरी लगी थी। आई स्टार्टेड विद हनीवेल इज़ यू एस एंड जापान बेस्ड कंपनी। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट, फिर चेरी एक अलग कंपनी आई, फिर सैमसंग आई वर्क फॉर 6 ईयर। 2009 आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस विद माई एक्सपीरियंस इन टू LED बिजनेस। LED जितनी आज आप देख रहे हैं उस समय ये लाइटें नहीं हुआ करती थी, ये इकोसिस्टम लाए हम, और पीपल वर थिंकिंग ओनली ऑफ लाइट अमिटिंग डायोड जो इंडिकेशन में लगते थे, तो ये हमने इको स्ट्रीट लाइट ये सब डिज़ाइनिंग किया हमने और इंडस्ट्री को सिखाया। बट मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस सेमीकंडक्टर में था, द क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की नीचे आने लगी तो हम सेमीकंडक्टर में, बिकॉज हम उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करते थे जिस पे टेक्निकल एस्पेक्ट हो। इस बिजनेस में वो लोग आ गए जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी। तो हम आई स्टार्टेड विद माई जॉब अर्निंग, तो मेरे पास फंड्स एक लिमिटेड थे, तो ग्रेजुअली जर्नी स्टार्ट एंड फिर हम सेमीकंडक्टर में आए। आज वी आर डूइंग, टुडे वी आर ए 50 करोड़ कंपनी एंड वी हैव 40 पीपल वर्किंग विद अस। सो वी आर मोर इनटू डिज़ाइनिंग एंड सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग। बट जैसे इन सब ने बोला, मैं ये कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट लर्निंग तो हमेशा कभी स्टॉप नहीं होती, इट शुड नॉट स्टॉप, बट लर्निंग इज़ नॉट द एंड, इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर। हम लोग जो मैंने जर्नी में देखा, बहुत लोगों को इतना ज्ञान है, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, मतलब उनको मैं घंटों बैठा दूँ तो वो किसी भी सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर सकते। तो हमारे जहाँ जो बच्चे और जो कनेक्ट नहीं हो पाते, और मैं जैसे चाइना और मेरा भी छोटा मोटा एक्सपोजर है, ज़्यादा नहीं, बट मैंने जो देखा इंडस्ट्री, चाइना इंडस्ट्री में द डिसकनेक्ट इज कि वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट, जितनी भी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देयर जैसे कंपनीज हैं, उनको हर साल प्रोजेक्ट देना ही देना है, वॉट एवर द, मुझे पता नहीं उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे देती है या क्या देती है। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे करता है विद देयर प्रोफेसर्स, दे लर्न मच बेटर। हमारे यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं, जब हम निकले, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी की बात क्यों कहूँ, जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि ये कंपोनेंट का काम मतलब दिखता कैसे है। काम तो पता था, आई नो द सिंबल्स डिजाइनिंग, कि इस प्रोडक्ट को मैं कैपेसिटर बोलूं, इसको ट्रांजिस्टर बोलूं, इसको मतलब कैपेसिटर तो थोड़ा बहुत आइडिया, मतलब कैपेसिटर 5 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पॉलीमर कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर, सो मेनी कैपेसिटर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई। मोस्ट ऑफ द मतलब जो इस फील्ड में नहीं है, आज भी हमारे में से बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को, तो कनेक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर द इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस कि उनको कनेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स लेके आए इंडस्ट्री से और कनेक्ट करें। बस थैंक यू सो मच।
14: प्रवीण सर, जैसे आपने कहा कि आप लगभग एक 40 लोगों की टीम जो है उसको लीड करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो आज के स्टूडेंट है उनके तरफ से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उनके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से आप उनको चूज करोगे आपके कंपनी में काम करने के लिए?
6: आज की डेट में जो मैं आईआईटी और इन की बात है, आज की डेट में हमारी यही एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये कितने टाइम में सीख पाएगा। आज की डेट में हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि एक साल के अंदर ये हमें कुछ रिटर्न दे पाएगा। देर इज नो ORI ऑन फ्रॉम द न्यू इंजीनियर, हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री।
15: कितने कम वक्त में वो सीख सकता
6: है, व्हाट इज द सिंसियरिटी लेवल ही हैज टू लर्न द थिंग्स, लर्न एंड इम्प्लीमेंट। मैंने उसको बता दिया बट उसने उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो you know, वो लर्निंग क्या रही।
14: तो अमन सर आप क्या करते हो ये बोलिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन किए थे बस उसी के मैं इसे आंसर चाहूँगा आपका भी।
10: वाई इंजीनियर्स एक्चुअली हमारे स्टेट में, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एक ही मोटिव था कि हम लोग इंजीनियर बन के, टैग था कि इंजीनियर बनने से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हम ये था हमारा मोटिव। तो इसलिए हम लोग सारे भीड़ चाल होती ना, एक बंदा गया उसके पीछे दूसरे बंदे चले गए, हमारा भी ऐसी था सिस्टम। मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए यहाँ पे इंजीनियर करने के लिए, हम भी उसके पीछे आ गए क्योंकि इंजीनियर बने का टैग लगेगा और हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इंजीनियर करके आ गए, गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं। एक बार इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू ने पूछा कि क्यों करना चाहते हो, तो मैंने उसका आंसर दिया, कह रहा वक्त से पहले किस्मत से किसी को कुछ नहीं मिला। मैं उससे एप्लीकेबल हो गया, अप्लाई ठीक है ओके। फिर 1994 को मेरे कुछ मल्टीप्लाई रिलेशन में एक थे, वो एक जापानीज कंपनी से मेरा इंटरेक्शन हो गया जी। तो 94 में उन्हें जापान की फुजित्सु कंपनी थी, उसके थ्रू मैं जापान चला गया। दैट 2 years 10 months मैं वहाँ रहा जॉब की, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। तो इंडिया वापस आने का मेरी पहली जॉब थी पटनी कंप्यूटर्स एज ए कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर। तो मेरी सैलरी थी 3300 क्योंकि मेरे साथ एक टैग लगा होता, मेरे एक जापान का टैग लगा होता फुजित्सु कंपनी का, उसके रिगार्डिंग मेरा इतनी जॉब मिल गई, चलता रहा। उसके बाद 5 or 6 years काम किया, फिर मैंने एसएल इंफोर्स सिस्टम ज्वाइन की एज ए इंजीनियर, फिर मैंने वो छोड़ दी। उसके बाद मैं बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस बंद कर दिया। अभी मैं एक कंपनी के साथ, नोएडा की कंपनी रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज, उसमें एक डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं थ्रू जेम पोर्टल के थ्रू टेंडरिंग करके वीडिंग करके हम उससे पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी उनके सप्लाई ऑर्डर होते हैं हम उसको करते हैं।
14: जैसे आप नोएडा कंपनी में अभी आप ज्वाइनिंग किए हो, तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस वक्त फिजिकली क्लासेस अटेंड किया करते थे, लेबोरेटरी में जाया करते थे, लाइब्रेरी में जाया करते थे, पढ़ाई का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है अब, तो उसके हिसाब से आजकल के स्टूडेंट में, आज की जो जनरेशन है उनके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, क्योंकि उतना पेशेंट भी नहीं है, उनको बहुत जल्दी सक्सेस भी चाहिए, बहुत जल्दी बाहर भी जाना है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्ट्रगल कितना गहरा रहता है और कितना हमको उसके अंदर जाना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता।
10: स्ट्रगल तो बहुत किया था क्योंकि उस समय बुक्स पे डिपेंडेंट थे, लाइब्रेरी जाते थे बुक्स लेते थे। आज की डेट में बिल्कुल स्नैरियो चेंज हो गया है, सबके पास मोबाइल्स आ गया है, मोबाइल्स पे इंटरेक्शन करते हैं वो। लाइब्रेरी में कोई भी स्टूडेंट अभी जाता नहीं आज की डेट में, सिर्फ मोबाइल से ही वो लोग सारे रीड करते हैं। तो हमारे ज़माने में उस समय नहीं था। जो सोशल मीडिया में मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी रविकांत के थ्रू, मिस्टर रविकांत के थ्रू, मेरे विनय भारद्वाज से, ये 2000 कितने की बात है, 18th की बात होगी, 2018 जो मेरे आपसे पहले इंटरेक्शन हुई थी, मैंने फर्स्ट इंटरेक्शन मेरी सोशल मीडिया के थ्रू विनय भारद्वाज से। तो मैं दिल्ली में रहूँ, मैं भाई स्टूडेंट से ये है कि आप मेहनत करो है। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का मेरा एक वो है कि ड्रीम्स सपने लो, सपने वो नहीं तो जो लोग देखते हैं, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते जी, तो ड्रीम लेना चाहिए, स्टडी करो, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज की कोई एज नहीं होती है, यू कैन लर्न।
16: सर ए अंबाला के पास शाहबाद करके टाउन में रहते हैं, दिल्ली में भी इसका होम टाउन है, तो इनका खुद का एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। सो साइबर सिक्योरिटी कंपनी का एक फाउंडर या को फाउंडर है और उसी गवर्नमेंट रिलेटेड सम अदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आई थिंक उनके होम टाउन शाहबाद में भी एक स्कूल है जहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड बेसिकली मल्टीटास्किंग भी करते हैं, सो मल्टीटास्किंग भी करते हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। सो अभी मन्नू इज़ वन पर्सन हु वॉन्ट्स टू रिमेन अलूफ, थोड़ा इंटरेक्शन में थोड़ा कम होना चाहते हैं,

0: दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं इतना समझता हूँ कि देखिए कुछ सक्सेसफुल पीपल जैसे बिल गेट्स ये सब है, दे डू थिंग्स साइलेंटली, सो आई सी हिम एज वन अमॉन्ग देम बेसिकली. सो साइलेंटली ही डजंट वॉन्ट टू कम इन टू द स्पॉटलाइट सेइंग आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी. द कंपनी स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ व्हेन बिहाइंड द सीन इज मनु कालरा. दिस ए मेरा व्यू पॉइंट है. बातें कम करते लेकिन ग्लोबल नॉलेज अच्छा है इनके पास. सो ये मेरा व्यू पॉइंट है. अभी आई डोंट नो हाउ मच ऑफ मुझे क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन ए मुझे लगा यही बोलना सही है. व्हाट डू यू से
1: सर? आई से नथिंग.
0: ओके,
2: तो मन्नू जी जो है वैसे मैं चाहूँगा उनका वन टू वन इंटरव्यू करूँ, ताकि जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं उनसे बात करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है.
0: वन एक एग्जांपल था जब हम 80s में जब इंजीनियरिंग के लिए सर्च करे, क्योंकि सब लोग 12th स्टैंडर्ड और सब ग्रेजुएट हो गए, सबके एस्पिरेशन थे कि टॉप कॉलेजेस में जाए. बिट्स पिलानी, IIT, REC, दो तीनों का ब्रांड नेम्स थे उस समय. प्राइवेट कॉलेजेस तो थे बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि ज़्यादा लोग की जानकारी हो. मैं चेन्नई से, उस समय चेन्नई में मेरा 12th स्टैंडर्ड हो गया बेसिकली. मैं IIT पढ़ा लेकिन फ्लंक किया क्योंकि उसका स्पेशल कोचिंग लिया. बिट्स पिलानी 3% से मेरा मार्क्स कम हो गया कट ऑफ में. सो फ्रस्ट्रेशन हो गया. वहाँ एक पंजाबी कॉलेज था चेन्नई में कॉल गुरु नानक कॉलेज, उसमें मुझे BSc एडमिशन मिला फिजिक्स में. एक दिन गया कैंपस में, पता नहीं कहीं से एक स्मॉल अपना चेयरमैन पदम सिंह पाटिल उस्मानाबाद करके एक जगह इतना बढ़िया बूस्ट किया, एक स्मॉल कैप्शन ऑफ एडवर्टाइज पूरा इंडिया स्प्रेड कर दिया कि वी डू नॉट टेक कैपिटेशन और डोनेशन फीस, सेलेक्टेड टू मेरिट और वी कम विथ फीस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स. मेरे फादर ने देखा था ये पेपर, मेरे बिना नॉलेज उन्होंने अप्लाई किया था. और बाद में आई थिंक 1 week टाइम उनको टेलीग्राम आया सन सेलेक्ट, क्योंकि हमने जेरोक्स कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो सेलेक्टेड टू मेरिट प्लीज़ कम विथ फीस एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स. अभी ही वॉज सरप्राइज बिकॉज उस समय गेटिंग एन इंजीनियरिंग सीट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. किसी ने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेशन. तो मेरे पापा भी मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैं एक डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज में एक कॉलेज में पढ़ रहा जो BSc ज्वाइन किया था, रवि तुमको एक इंजीनियरिंग सीट मिल गया. क्योंकि वहाँ चेन्नई में कैपिटेशन फी 80,000 rupees उस समय, मेरे पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यू कुड नॉट एफोर्ड. मैंने बोला आप डोंट वेस्ट मनी ऑन मी. तो और इधर बोला कम विथ फीस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फीस था अराउंड 8,500 समथिंग लाइक दैट. तो हाँ इसमें क्या है, मेरा पापा का एक सेक्रेटरी, उसका भाई इस कॉलेज में मेरा सीनियर था, तो उसने बोला सर विच प्लेस सर, उस्मानाबाद, माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग देयर. तो मैं पापा बोले चलो मिल लेते हैं उनसे. उनका नाम था सैमुअल रॉबर्ट ज्ञानमुतु, चेन्नई से था, 86 बैच का था. तो सैमुअल रॉबर्ट ज्ञानमुतु, तो उस शाम को उससे मिले थे हम. तो मैंने उसको पूछा सर, मैंने इसको पूछा व्हाट इज़ दिस कैंपस, क्या कैंपस के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए. वो बोला दिस कैंपस स्प्रेड इन 210 acres. तब मैंने एक्चुअली बिट्स पिलानी का ब्रोशर देखा तो 180 acres लिखा. मैंने सोचा तो बिट्स पिलानी से बहुत बढ़िया कैंपस. पापा डैडी लेट्स गो, आई थिंक दिस इज बिगर देन बिट्स, आई एम वेरी हैप्पी. मैंने खुद बोला. और बाद में नेक्स्ट डे सोलापुर का ट्रेन पकड़ लिया या आगे, एक्चुअली ST बस स्टैंड में हमने ड्राइवर और कंडक्टर को बोला उस्मानाबाद इन्हीं को सिटी से थोड़ा आगे हमको रुकवा दो. तो या हाईवे में रुकवा दिया. हम नीचे देखा तो हम सोचे कहीं बोर्ड और कैंपस और एंट्रेंस होकर, कुछ भी नहीं दिखा, खाली हरियाली, बारिश और एक कैटल जा रहे थे वो आदमी लेके जा. मैंने बोला भैया इधर एक इंजीनियरिंग कॉलेज किधर है, उसने वो बिल्डिंग देखा वो कॉलेज है. मैंने बोला वो कॉलेज है, मुझे तो ऐसे नहीं लगा बेसिकली. मतलब एक साइड मौसम देख के बड़ा खुश हो गया, लेकिन कैंपस देख के मैं सोचा इसको कॉलेज कैसे बोलते हैं. तो उस समय सैम भी इधर आया था, आपने बोला 210 acres, हाँ दिस एंटायर जंगल कॉलेज का ही कैंपस है, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड अ कॉलेज, उसने बोला. तो ये अच्छी बात है. बट जब मैं कैंपस में एंटर किया, देखा हमारे मेरे जैसे सब लोग फ्रेशर्स एडमिशन्स हो रही थी और सब लोग अपना एनरोलमेंट कर रहे थे, तो एक न्यू एटमोसफेयर, न्यू एनवायरमेंट हो गया. मेरे पापा बोले तुम 4 साल पढ़ाई करोगे, मैं बोला यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको मजबूर नहीं करना चाहते थे मैं फॉर वॉट एवर रीजन्स बेस्ट नॉन. सो फाइनेंशियली वॉट एवर इट मे बी, तो मैंने बोला ओके ठीक,

0: जैसा आप बोलते हैं, ओल्ड हॉस्टल में एडमिशन हो गया मेरा, और उसी दिन से मेरा न्यू सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो गया। फर्स्ट टाइम में मेरे नेबर्स जम्मू थे, पंजाब थे, हरियाणा थे, साउथ में थे, सब जगह। तो एक इट्स अ न्यू बिगिनिंग था बेसिकली। लेकिन हमने यही सोचा चार साल यहाँ कैसे रहेंगे जब तक हम यहाँ रहते, बट किसी हालत में चार साल या पाँच साल हम डिग्री ख़त्म करके बेसिकली गए। जब हम यहाँ रहते थे हम यहाँ से कैसे निकलेंगे सोचे, बट हम यहाँ से जाने के बाद हम हमेशा सोचते थे चार साल इधर बीते हमें वापस आना है। मैं अभी डिग्री होने के बाद भी आई थिंक दिस इज माई थर्ड और फोर्थ विजिट टू द कैंपस। सो द ग्रेटनेस अबाउट दिस प्लेस इज कि पदम सिंह पाटिल बूस्टेड दिस प्लेस विच वॉज अननोन टू मेनी ऑफ अस, प्लेस कॉल्ड उस्मानाबाद, विच मेक्स अस टू थिंक अबाउट दिस इवन टूडे आफ्टर फोर डिकेड्स, यू नो। यही बात है।
1: आमन सर कुछ तो बात करना
2: चाहिए। सर जब हम एक इसके ऐड आती थी कॉलेज इंजीनियर उस्मानाबाद की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसी ऐड को देखे कल मैं यस्टरडे यहाँ पर 5:30 को पहुँच गया, क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन जो 36 ईयर्स के बाद आ रहा था हमारे ग्रुप से, आज के ग्रुप में। तो मैंने जैसे पहुंचा होटल में हमारा सामान रखा, वो मैंने एक ऑटो हायर किया कि जहां हम लोग रहते थे उसको देख लें। तो सारा घूम लिया, पर मेरे को ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ मैं कहां पे हूं, क्या चीज़ है, एवरी थिंग चेंज। अच्छा लगा, एक्सप्लोर किया।
1: तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट इस पे जाना चाहूँगा, जैसे कि हमने बहुत सारी बातचीत की है कि आप क्या काम करते हो, आपने कैसे कैसे आपकी जर्नी ये की, लेकिन उस टाइम जैसे आप एंकरिंग ज़्यादा किया करते थे प्रोग्राम में बहुत सारे, तो आप मूवी कौन से देखा करते थे, जैसे वहाँ पे आप गर्ल्स भी ज़्यादा नहीं थी कॉलेज में, लेकिन फिर आपने कैसे सर्वाइव किया तो कैसे सर्वाइव किया, तो सबके तरफ से आप ही बोल दीजिएगा, और ये सब बाकी कैसे लोग मतलब एंजॉय किया करते थे, मूवीज़ कैसे देखा किया करते थे, आजकल तो कैसे कंप्यूटर मोबाइल में भी देखते हैं, लेकिन उस वक्त कैसे मूवी देखने जाया करते थे, और आपको खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या किया करते थे। और जैसे आप सब दोस्त यहाँ पे एक साथ मिल गए, तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा पहला गाना चल गया कि उस ज़माने की याद दिला दी आपको, कि ऐसा कौन सा, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो हम हमारे दिमाग में एक बिल्कुल गाना आ जाता है उस वक्त का। अगर मैं मेरे स्कूल के पीरियड में जाऊंगा 1990 के जमाने में, तो मुझे वो गाने याद आ जाएंगे। तो वैसे आपको कौन सा गाना यहाँ पे आने के बाद दिमाग में आ गया, आपके जर्नी को भी वो डिफाइन कर सके, तो इस तरीके से कुछ तो बोलिए विनय जी।
3: हमारे टाइम में एक मूवी आई थी, तो उसमें जो गाना था रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग गाया करते थे, तो वो गाना मैं थोड़ा सा गा के बताता हूँ आपको।
4: सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
1: तर ॲडवोकेट मनीष वाघमारे जी, आपण ह्या सर्व आत्ताच्या इंटरव्ह्यूला, खरं तर मला हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो 1-to-1 करता आला असता तर खूप मला अजून जर्नी घेता आली असती यांची सगळ्यांचीच, पण एनी वे आता कारण 38 वर्षानंतर तुम्ही पहिल्यांदा आप सभी यहाँ पे आहे 36-38 इयर के बाद, आगे न जाने कब मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे कभी इधर तो हम 1-to-1 फिर से एक बार सब एक्सपीरियंस हम करेंगे। लेकिन ॲडवोकेट मनीष वाघमारे जे आहेत ते यांच्या सर्वांच्या सोबत इथं राहिलेले आहेत त्यावेळेसच्या, तर त्यावेळेसच्या तुम्ही थोड्याशा आठवणी पण सांगा आणि ह्या सर्व जर्नीला कन्क्लूड करा।
5: रिस्पेक्टेड डॉक्टर पदमसिंह पाटील साहेब ने जो कॉलेज यहाँ पे चालू किया, तो उसके वजह से उस्मानाबाद का बहुत ही डेवलपमेंट हो गया, और वो टाइम पे जो बाहर से ज़्यादा आउटसाइडर स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे माहौल ऐसा था कि भाई सब एक अपने फैमिली मेंबर जैसे हम काम करते थे, हम एज अ लोकल बोल के थोड़ा सा हमारा डिमांड था कि भाई आप लोकल है, तो थोड़ा सा ये भी था, लेकिन उसका हमने कभी मिसयूज़ नहीं करके लिया। और जो यहाँ पे डेवलपमेंट उस्मानाबाद का हो गया वो टाइम उस्मानाबाद था, तो ये उस्मानाबाद के लिए अच्छा है। और दूसरी बात कि आज जो मौका मिला यहाँ पे आके कॉलेज में आके बात करने का, कि भाई मैं बहुत इमोशनल हो गया कि भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कि भाई यहाँ पे जो पहले माहौल था कॉलेज का कि ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, वो तो कुछ जो वीक पॉइंट ऑफ कॉलेज वो तो अंडर डेवलप उस्मानाबाद था वो टाइम, तो अभी तो बहुत ही डेवलप हो गया। और ऐसे ही स्टूडेंट जो कॉलेज एलुमिनी यहाँ पे कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, जो कि कॉलेज के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है। यही बोल।
1: थैंक यू सरवन सर।

तो आज के प्रोग्राम में हमने इन सभी का इंटरव्यू सुना। मिस्टर विनय भारद्वाज जो प्रिंसिपल इंजीनियर है NXP सेमीकंडक्टर्स नेदरलैंड, इनके साथ है मन्नू कालरा जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है और फ्रीलांसर साइबर सिक्योरिटी में काम किया करते हैं, 1980T बैच के हैं, CSE बैच के हैं। उनके साथ है मिस्टर वी रविकांत जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड अलायंस पार्टनर है ज़ायोरा इनोवेशंस बेंगलुरु के, ये भी 1988 के CSE बैच के हैं। इनके साथ है मिस्टर संदीप गुप्ता जो डायरेक्टर एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजर है अलोभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के, वो दिल्ली से है और USA ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं 1988 CSE बैच के। इनके साथ है मिस्टर प्रवीण महाजन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मैनेजर की ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के, जो 1988 CSE बैच के हैं। मिस्टर संदीप लाहुटी जी है जो चीफ सेल्स ऑफिसर है जुलू डिफेंस के, बैच 1988 CSE के। और इनके साथ है मिस्टर अमन सांगरा जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड सर्विसेज नोएडा नेहरू पैलेस, बैच 1988 ETC के।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा।